प्राणवृत्ति ले लेना, भाष्यार्थ लेके नहीं बैठना है। बनिया केवल वैश्य को बनिया कहते हैं ऐसा नहीं समझ लेना। बनिया वृत्ति वाले ने सुन ली, ब्राह्मण भी बनिया वृत्ति वाला हो सकता है, बनिया वृत्ति वाले ने सुन ली तो दस कल 10,000 मिलेगा पंडित को। ऐसा करते हैं, आज ही पंडित से समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट तुरंत। तो जैसे वो पंडित जी पाठ करके प्रार्थना करके जाने लगे तो बनिया जाकर कहा, पंडित जी देखो एक समझौता करते हैं। बोले क्या? आपको बेटी की शादी करनी है ना? बोले हां। ऐसा करते हैं, आज मैं आपको 5,000 दे देता हूं, आज मैं आपको 5,000 दे देता हूं, शर्त यह है कि कल जो दक्षिणा मिलेगी वो सब मुझे देना। पंडित ने विचार किया कि यहां रोज एक पैसा भी नहीं मिल रहा है, अचानक 5,000 के एग्रीमेंट आ रहा है, क्यों छोड़े? बोले ठीक है 5,000 दे दो। तो बनिया ने फट से 5,000 दे दी, क्योंकि एक ही दिन में डबल हो जावे एक रात में, इससे बढ़कर और बिजनेस क्या हो सकता है बोलो है? एक रात में डबल हो रहा है कि नहीं, उसने ये सोच ली। तो 5,000 दे दिया, पंडित जी चले गए 5,000 लेकर, जाके पंडिताइन को दिया, ले 5,000 है, अब बेटी की शादी होनी हो जाएगी, तैयारी करो। उसको पता नहीं था कि कल 10,000 मिलेगा। तो दूसरे दिन पंडित तो गया प्रार्थना करने बैठ गया, बनिया भी पहुंच गया। तो अब मिलेगा तब मिलेगा, इसको दक्षिणा 10,000, अब मिलेगा तब मिलेगा, अब मिलेगा तब मिलेगा है। 12 बज गया, 1 बज गया, कोई भी दक्षिणा लेकर नहीं आ रहा है वहां। और कल कहा था भगवान ने 10,000 दक्षिणा मिलेगी तुमको, ये क्या बात है। पंडित तो अपने नियम अनुसार पुष्प पाठ प्रार्थना सब कुछ की घर के चलने लगे। बेटा तुमने कहा था कि कल जो चढ़ेगा सब मुझे देना, तुम घाटे में चले गए, एक भी पैसा नहीं आया देख लो। बेचारा पंडित के सामने मुख छोटा करके कहा कि हां देखो क्या करें, ये तो ऐसे ही होता है बिजनेस में, ऐसा ही होता है महाराज, नीचे ऊपर होता ही है। पंडित के सामने तो उसने ठीक कर दिया। जब पंडित गए तो उसको गुस्सा आया, हनुमान जी को मारा एक थप्पड़ कि हनुमान भगवान होकर झूठ बोलते हो, मेरा 5,000 बेकार चला गया, भगवान होकर भी झूठ बोलते हो, मारा एक थप्पड़ तो वह हाथ वही चिपक गया। अब हाथ छोड़ाने चाहता है, छोड़ता ही नहीं, जोर लगा रहा है, और गुस्सा हो गया, मेरा 5,000 तो गया और ऊपर मेरा हाथ भी पकड़ लिया, फिर लात मारा तो वो भी चिपक गया, लात भी चिपक गई। अब तो छूटने का नाम नहीं ले रहा है, रो रहा है। उधर बच्चे लोग विचार करने लगे, आज पिताजी गए कहां, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे, अभी तक दुकान नहीं पहुंचे, हमेशा हमसे पहले जाकर दुकान खोलते थे, अभी तक दुकान ही नहीं खुली है, कहां गए? हनुमान मंदिर जाते थे दर्शन करने, क्या हुआ? तो बच्चे लोग आए, क्योंकि चाबी तो उसी के झोले में था, किसके? पिता के। बच्चे लोग आए तो हनुमान से आलिंगन करके चिपक के बैठा था उसका बाप, कहे के पिताजी ये कौन सी भक्ति है, ऐसा भी कोई भक्ति होता है तो भगवान को चिपक के छाती से लगा के खड़े हो गए, इतना समय हो गया, दुकान खोलना था, चाबी लेकर बैठ गए, चलिए। बेचारा बाप रोने लगा, अरे बेटा मैंने पकड़ रखा हनुमान को, यही मूर्ख पकड़ रहा है मुझे, छोड़ नहीं रहा है, है? तो बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की, हनुमान जी से प्रार्थना, हे भगवान ये क्यों ऐसा किया, क्या अपराध हो गया मेरे पिताजी से, है क्षमा करना महाराज, जो करना है, 1.25 किलो लड्डू कहो तो लड्डू ला के चढ़ाता हूं, हम चढ़ाते हैं, आप जो कहो वो करेंगे, आप हमारे पिताजी को छोड़ दीजिए महाराज। बच्चों ने जब प्रार्थना की तो हनुमान ने कहा कि बेटा मैंने मेरे भक्त पंडित को 10,000 देने की बात कही है, 5,000 कल तेरे बाप ने दिया है,
अब 5,000 पंडित को देख के आओ तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, समझे कि नहीं। उसकी बेटी की शादी करनी है हाँ, तब वो बच्चे गए दौड़ कर उस पंडित को 5,000 दिया तो तब जाकर ये कौन छूटा, बनिया छूटा हो हाँ, छूट गया तब जाकर छूटा। तब विश्वास हुआ कि ओहो योगक्षेम वहां में हम, भगवान तो थप्पड़ मार के भी लेते हैं हाँ, उनको बहुत चिंता है भाई कैसे व्यवस्था करनी है, किधर से व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्था वो करते हैं। लेकिन हम, वो बनिया तो कहेगा कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे लगता है उसने भी कभी किसी को थप्पड़ मारकर लिया था, समझे कि नहीं, मुझे लगता है क्योंकि व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था है, कभी उसने किसी के थप्पड़ मारकर लिया था तो आज थप्पड़ मारकर देना पड़ रहा है, थप्पड़ खाकर देना पड़ रहा है। तो ये काम परमात्मा की है, ये बात योगक्षेमम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग, प्राप्त वस्तु की रक्षा क्षेम, योगक्षेम बाहम्यम, यही तो कहा है, वही तो शंकराचार्य जी ने कहा। बटुर्वागे ही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वाय कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदि यम हृत् पद्मम् यदि भवत अधीनम् पशुपते त्वदीयस्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वहसि। भक्त को ये बात पूरी तरह निष्ठा के साथ जीवन में अपनानी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें तो हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मन परमात्मा के चरण में लगे रहे, यही प्रार्थना उत्तम प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ప్రపంచ సర్వ విషయ స్వాతంత్ర్యేన బ్రహ్మణః సర్వకర్తృత్వ సిద్ధిః.
1: స్పష్టం, సర్వ విషయకం స్వాతంత్ర్యం అస్తి ఇత్యుక్తే సర్వత్ర కర్తృత్వం అస్తి ఇత్యర్థః.
0: స్వాభావిక
1: సాధారణ కర్త ఈశ్వరః అని చూడండి, లేదా సర్వత్ర సాధారణ కర్తృత్వం వర్తతే, అసాధారణ కర్తారః అన్యే భవంతి, అయం తు సాధారణ కర్త. ఇంత సాధారణ కర్తృత్వం ఇత్యుక్తే బాలానాం ఏవం భ్రమ భవతి, తర్క సంగ్రహం పడికంబోద సాధారణ కారణం ఒక ఒక అది ఒక సెకండ్ క్లాస్ కారణం మరి అప్పటి ఇల్లదు అది ఏదో ఒక కారణత్వం ఒక సెకండ్ లెవెల్ అప్పటి కదా ఇది సర్వం ప్రతి కారణం ఇత్యుక్తే ఇన్ను మహాత్మ్యం జాస్తి తానే ఇది అసాధారణ అది సాధారణ కారణం ఇది అప్పటి
2: ప్రేరితారం ఇది ప్రకారం
1: ప్రేరిత ప్రేరితారు ప్రేరితారః
0: స్వాభావిక శక్తి స్వాభావిక శక్తిమత్వం అలుప్త శక్తిత్వం.
1: స్వాభావిక శక్తిమత్వం అలుప్త శక్తిత్వం, నమకు అప్పప్ప శక్తి పోయిడు తిరిపి ఆర్జనం పడణం ఇల్లయా. శరీరే శక్తి కదాచిత్ రోగాదినా నశ్యతి పునః అనేతవ్యం అన్య అనేక స్పష్టం తర్హి అస్య తు తథా న భవతి తస్య స్వాభావికీ శక్తి. స్వాభావిక శక్తిత్వం అలుప్త శక్తిత్వం సర్వదా భవతి తస్య లోపో నాస్తి. స్వాభావికీ ఇన్నొరు కారణత్తినాలు వందదు కడయాదు వందదా ఇంద పోవం స్వతహేవ అస్తి. ఇంద ఆధేయ శక్తి తెలియ ఆధేయ శక్తి అది దీపికే ఆధేయ శక్తి నా పదార్థాంతరం ఇది తర విచారం కరోతి. ఆధేయ శక్తి స్వాభావిక శక్తి ఆధేయ శక్తి రెండ శక్తి పిరికరా పొదువా ఇవ తార్కిక శక్తి ఒత్తుకరదు ఇల్లయా. శక్తి ఉన్న పదార్థాంతరం న్యాయబోధనీ ఆరంభతలే వరద శక్తి నాంగీక్రియతే మీమాంసకాః అంగీకరువంతి ఏదైనా అంగీకరువంతి తస్య ఖండనం కురువంతి తత్ర ద్వేధ తత్ర స్వాభావిక శక్తేరేవ తత్ వన్నౌ దాహానుకూలాయ శక్తి సా స్వాభావిక శక్తి. రెండు విధమా శక్తి ఒత్తుంటారు మీమాంసకారు, ఒన్ను వంద స్వాభావిక శక్తి ఇన్నొన్న ఆధేయ శక్తి. సహజ శక్తి ఆధేయ శక్తి ఇది నామకరణం కురువంతి. శక్తి ద్వేధ సహజ శక్తి ఆధేయ శక్తి ఇది ఇది రెండు జన్యందా. పరంతు కిం భవతి వన్నౌ యా శక్తి సా సహజ శక్తి వన్యోడ చేరందే వరకూడే శక్తి ఇల్లయా. వేరేదో ఒక కారణత్తినాలు తిరిపి కొండు వంద చేరతది వన్నౌ యా శక్తి స్వభావత వర్తతే అత సహజ శక్తి ఇత్యుచ్యతే. ఆధేయ శక్తి నాల్ కారణేన బుద్ధిపూర్వకం ఉత్పాదిత శక్తి ఇత్యాదికం భవతి తత్ర సామర్థ్యం ఉత్పాద్యతే ఉత్పాద్యమానం సామర్థ్యం స్వాభావిక ఆధేయ శక్తి ఆధీయమానా శక్తి ఆధీయతే ఇత్యుక్తే కొండు వరదని అర్థం. తద్ అదృష్టమపి ఆధేయ శక్తి ఇత్యనేన మీమాంసకైః వ్యవహ్రియతే. వ్రీహ్యాదు ప్రోక్షణైన అదృష్టం జాయతే వ్రీహ్యాదు ప్రోక్షణైన అదృష్టం జాయతే ఇయం ఇదం అదృష్టం పూర్వం నాస్తి నాసీత్ తర్హి ప్రోక్షణైన ఉత్పన్నం అదృష్టం తద్ ఆధే అదొరు శక్తి అదొకరు ఒక సామర్థ్యం కడకరదు అంత ప్రోక్షణైన జాయమానం అదృష్టం వర్తతే చేదేవ తస్య అగ్రే ఉపయోగ అన్యథా తస్య. ఇప్పుడు ఇంత సంస్కారంగా చూడదు ఇల్లయా ఎత్తనయో సంస్కారంగా బహువిధ సంస్కార క్రియంతే ప్రథమత ఎంత కర్మ పండుగ ఇందాలు అంతంత ద్రవ్యంగా సంస్కారంగా ఎలా ఇప్పుడు ఇదెల్లాం తేన కశ్చన శక్తి విశేష ఉత్పాది అదృష్టరూప ఇదం సర్వం ఆధేయ శక్తి మీమాంసకైన ఉచ్యతే. తది రెండు విధమైన శక్తి ద్వయమపి ఉత్పాద్యమానమేవ సహజ శక్తి అర్కటం ఆధేయ శక్తి అర్కటం తది ఇదానీ వన్నౌ సహజ శక్తి ఇత్యుచ్యతే. పరంతు తదపి ఉత్పత్తితే ఖలు వన్యరుత్పత్తితే వన్యరేవ ఉత్పత్తిరస్తి అస్మాకం ఇదానీ అస్మాకమపి ఆత్మని అనేకే సంస్కారాః క్రియంతే తేన శక్తయః ఉత్పత్తి సా సర్వాపి ఆధేయ శక్తి. కర్మానుష్ఠానైన ఆత్మని అదృష్టం జాయతే ఇత్యుక్తే ఆధేయ శక్తి సా అంత అదృష్టతుకు ఆధేయ శక్తి మీమాంసకాలు పేరు వచ్చిరుగా. షోడశ సంస్కారాః క్రియంతే తేన ఆత్మా సంస్క్రియతే ఇది ఇది ఎప్పుడు వందదన్నా ఆధేయ శక్తి ఇది వంద వందిరుకూడే శక్తి వంద తిరిగి పోయడం ఇదం సర్వం మేము ప్రసంగాది ఉక్తం తావదే వయం అనేకే విషయా అవగంతవ్యా ఇది కృత్వా అత్ర అపేక్షా నాస్తి అస్య. పరమాత్మనః యా శక్తి ఆధేయ శక్తి నాస్తి స్వాభావికీ శక్తి
0: జ్ఞాన బల క్రియ
1: తత్ర స్వాభావికీ శక్తి ఇది వక్తుం శక్యతే దోషం నాస్తి परन्तु स्वाभाविकी शक्तिः अपि जन्या भवति वह्नेः कुतः वह्निरेव स्वाभाविकी नास्ति खलु वह्नेर्जन्यत्वात् वह्नेर्शक्तिरपि जन्या भवति यद्यपि सः स्वाभाविकी परन्तु जन्या भवति कुतः वह्नेः जन्यत्वात् अत्र तु परमात्मनः शक्तिः स्वाभाविकी परन्तु न जन्या कुतः परमात्मनः अजन्यत्वात् परमात्मनः अजत्वात् तत् शक्तिरपि अजा अग्रे ज्ञानबलक्रिया च स्वाभाविकं ज्ञानं स्वाभाविकं बलं स्वाभाविकी क्रिया वर्तते सर्वम् इच्छा ज्ञानं कृतिः सर्वं स्वाभाविकमस्ति
0: इत्यादि चिदचित् प्रपञ्चरूप शक्तिविशिष्टत्वं स्वाभाविकमेव ब्रह्मणः
1: चिदचित् प्रपञ्चरूप शक्तिविशिष्टत्वं इन् द विशिष्टत्वं तद्विशिष्टत्वमपि स्वाभाविकमेव ब्रह्मणः
0: कदाचिदपि न निर्विशेषत्वम् इत्यनेन
1: अनेन किं सूचितम् अद्वैतमतम् उत्तुकृतलै निर्विशेषत्वं कदापि नेष्यते अस्माभिः इति सिद्धम् चिदचित् प्रपञ्चविशिष्टत्वमेव परमात्मनः स्वरूपम् इति स्वीक्रियते
0: अपरिच्छिन्नशक्तिविशिष्टम्
1: तत्र एकं क्षणं चिदचित् प्रपञ्चरूपशक्ति इति चल्रार् इल्लया ప్రపంచ అనుకూల శక్తి శ్రణం శక్తే పరిణామ పరిణామ పరిణామినో అభేదం ఆలోచ్య వ్యవహార చిదచిత్ ప్రపంచ శక్తి తత్కథం భో ప్రపంచ శక్తే కార్యం ఖలు అతీ ప్రపంచ అనుకూల శక్తి లేఖనీయమాసీత్ అస్మాకం శంకా భవతి సత్యం పరంతు లిఖితుం శక్యతే పరిణామ పరిణామినో అభేదం ఆలోచ్య తిఖితం ఇది మంతవ్యం परिणामः सर्वोऽपि प्रपञ्चः इति अस्ति
0: सा शक्तिः चिदेव शक्तिः चित्
1: शक्तिः चिद्रूपा इत्यपि अस्ति
0: परन्तु
1: तत्र अचिदात्मकत्वम् आदाय परिणामः वक्तव्यः तद्विषये किञ्चित् शास्त्रविचारः अग्रे भविष्यति कथं परिणामः इत्यादिकं न उपपादितम् एतावता तत् पश्यामः अग्रे आगमिष्यति
0: अपरिच्छिन्न शक्तिविशिष्टत्वम् अनन्तशक्ति
1: அது ரெண்டும் ரெண்டும் சேர்த்து சொல்லணும் போல இருக்கு இந்த அச்சிதம்சோபி கஷ்டம் அபேட்சதே தத்ர
0: மாயா
1: பரிணாமார்த்தம் மாயாயா அத்வைத ரீத்தியா தூ அஸ்மாகம் ஜடரூபாய மாயாயாக சர்வதா சைதன்யம் நேஷ்யதே மாயாயாக ஜடசக்தி ரேவசா பரமாத்மனா சக்தி இத்துச்சதே பரந்து ஜடாத்மிகா ஏவ ஆகரேஷு சர்வம் எல்லாமே தெரியுது அது நம்மளே அது அந்தந்த தரிசனத்துக்கு எது சரியா இருக்குமோ அப்படி அது செட்டிங் பண்ணணும் அது இந்த லலிதா சகஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம் பாரு சிச்சக்தி சேதனா ரூபா ஜடசக்தி ஜடாத்மிகா ரெண்டுமே சேர்த்து போட்டிருக்க சிச்சக்தின்னு இருக்கு ஜடசக்தின்னு இருக்கு என்ன பண்றது சிச்சக்தி சேதனா ரூபா ஜடசக்தி ஜடாத்மிகா திரட்டவியம் பசியாம
0: அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்துவம் அனந்த சக்தித்துவம்
1: அத இப்ப ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் இந்த சக்தியே ஒரு ஸ்திரீ ரூபமாக வர்ணனம் பண்ணி உபாசனைக்காக அப்படி பண்றது அது இருக்கட்டும் ஒரு தேவியாக வர்ணனம் பண்றது அதுன வேற என்ன இதெல்லாம் அவ்வளவுதான் இந்த ஒரு சக்தியே ஒரு ஸ்திரீ ரூபேண பிரகல்பிய ஆராதனார்த்தம் வர்ணியது ஸ்தோத்ரேஷு அதான் விவிதம் வர்ணனம் பவதி அகே அகே பட்டாமி அது சமாபனியம் இது அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்துவம் அபரிச்சின்ன இயம் சக்தி அதுக்கு பரிச்சேதம் கிடையாது பரிச்சேதம்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது ஒண்ணுமே கிடையாது இதனாலயும் பரிச்சின்னம் இல்ல அத்தக அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்துவம் அனந்த சக்தி மற்றும் அனந்த சக்தி அனந்தம்னா அனந்தம்னா அசங்கியாகம் இத்தியர்த்தே பிரயோகம் அஸ்தி அனந்த சப்தசிய எவ்வளவு சொல்ல முடியாது அப்ப அனந்தம் இது பத பிரயோகம் அஸ்தி பரந்து அத்த தஸ்மின் அர்த்தேன அந்தோ நாம பரிச்சேத ந வித்யதே அந்த யஸ்ய சஹ அனந்த அபரிச்சின்னம் इत्यर्थे सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यत्रापि तथैव अन्यथा अन्यथा अनेकानि ब्रह्माणि इति खलु उक्तं स्यात् अनन्ता अनन्तत्वं नाम असङ्ख्याकत्वम् इत्यर्थश्चेत् एकं ब्रह्म इति त्यक्तं स्यात् अतः तथा सः अर्थः तत्र नास्ति
0: परन्तु अत्र तु शक्तिरेव वक्तुं शक्यते
1: शक्तिरपि विचित्रा शक्तिः
0: विविधा इति अत्र तु
3: शक्तिर्विविधैव श्रूयते
1: शक्तिविषये वक्तुं शक्यते परन्तु अनेकत्वमपि वक्तुं शक्यते
3: तत्र उपकार्य
1: उपाधि पदान्तरेण उक्तं खलु तत्रापि व्याख्यानं तथा नापेक्षते येन अत्र विचित्रशब्देन तत्र अनेकत्वम् अनेकत्वं यदि विवक्षितं तदानीमपि विचित्र इति उक्तं खलु
3: तत्र कार्यभेदात् तदनुकूलशक्तिः औपाधिकभेदः च यदि एकत्वम् अपेक्षते
1: एकत्वम् अपेक्षते चेदपि औपाधिकभेदः इति वक्तव्यं भवति
3: कार्यभेदात्
1: कार्यभेदेन एवं प्रवर्तनभेदेन तदपि वक्तुं शक्यते द्वैधापि अस्ति निरूपणं पश्यामः
0: अनन्ताभिरेव शक्तिभिः जगतः जनकं शासकं च ब्रह्म भवति
1: अनन्ताभिरेव शक्तिभिः अपरिच्छिन्नाभिरेव शक्तिभिः जगतः जनकं शासकं च ब्रह्म भवति सृष्टिकर्तृ परिपालनकर्तृ च भवति शासकं परिपालनकर्तृ शासकं शासकः इल शासकं ब्रह्मा नपुंसकलिङ्गम् अनार
0: तथा हि श्रूयते एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः य इमान् लोकः
1: तस्थुः इति छान्दसप्रयोगं तस्थौ इति वर्णं तस्थुः इति छान्दसं रूपं
0: य इमान् लोकः
1: तस्थुः तप्पुल बहुवचनं पदं शरीयता इरुक्कान अंग शरीया वराद तस्थौ
0: एक
1: इति एकवचनं तस्थुः
0: तस्थौ
1: इति बहुवचनं ఏక రుద్రో ఏకవచనం తస్థు
0: ఇమాన్ లోకా నీషత ఈశినీభిః యస్ సర్వాన్ లోకా నీషత ఈశనీభిర్ జననీభిః పరమశక్తిభిః ఇత్యర్థి
1: అత్ర కించిత్ ఇతోపి అస్తి తురీయమిమం లోకం ఈశతే ఈశనీయుః జననీయుః అదొందు కడయాద अत्र कथं वर्तते इदं कुत्रत्यं वाक्यम् इति मयापि न ज्ञायते मया न दृष्टम् एतावता
0: पुष्पं स्था
1: एवं वा
3: अथर्वशिरः
1: उपनिषदस्ति वा तत्र मया न पठितः तत्र दृष्टव्यं तत्र स्यात् अथर्वशिराः इति उपनिषदस्ति अदिल नरे एडुतिर्क इदिल तत् द्रष्टव्यम् एकवारं तत्र स्यात् ईशनीयुः जननीयुः तुरीयमिमं लोकम् ईशते ईशनीयुः जननीयुः ईशनीयुः इति सुबन्तपदम् अद् तिङन्तमिल्ल ईशनीयुः अस्ति इत्येव भवति पदम् अत्र एतैः व्याख्यानं कृतमस्ति व्याख्याकारैः आचार्यैः इमं लोकं शुद्धं शुद्धमिश्र अशुद्धार्थरूपं लोकत्रयं तुरीयम् उक्तलोकत्रयापेक्षया चतुर्थं लोकत्रयम् इत्यस्यापि किञ्चित् व्याख्यानं कृतम् इमं लोकं शुद्धमिश्र अशुद्ध अध्वरूपं लोकत्रयं शुद्धवं मिश्रवम् अशुद्धौ मार्गकुडि लोकत्रयम् तत् तत् तदपेक्षया अन्यत् तुरीयम् उक्तलोकत्रयापेक्षया चतुर्थम् अध्वनाम् अध्वपते श्रेष्ठस्य अध्वनः पारमशीये पारमशीयेति सर्वाधिकारिप्रेप्सनीयत्वेन श्रुतिसिद्धम् अध्वनाम् मध्ये अतिश्रेष्ठस्य शुद्धाध्वनः अप्युपरि स्थितम् परमाकाशरूपम् परमपदम् च इति अस्तु ईशते ईष्टे ईशनीयुः इति पदम् गृहीतमस्ति एतैः ईशनीयुः ईशनानुकूल इच्छाशक्तिमान् जननीयुः जननानुकूल इच्छाशक्तिमान् ईशनम् ऐश्वर्यम् जननम् जनैतृत्वम् इत्यादि व्याख्यानम् कृतमस्ति तर्हि तत् पदम् वर्तते इत्येव ज्ञायते अस्तु शक्तिकामिकर्तुं श्रुति एतत्कर्तुं
0: अनन्तशक्तिमत्वात् ब्रह्मणः अपरिच्छिन्न प्रपञ्च समवायिकारणत्वं सिद्ध्यति
1: समवायिकारणम् इति तु उपादानकारणम् इत्यर्थे प्रयुक्तं प्रपञ्चं प्रति उपादानकारणत्वं सिद्ध्यति कुतः शक्तिद्वारा स्वरूपेण तु परिणामं न कर्तुं शक्यते नेष्यते
3: निष्कालम् इति
1: श्रुतिविरोधात् अतः शक्तिद्वारा परिणाम इति वक्तव्यं तदुक्तम् अनन्तशक्तिमत्वात् ब्रह्मणः अपरिच्छिन्न प्रपञ्च समवायिकारणत्वम् అపరిచ్ఛిన్నమాన ప్రపంచం ప్రపంచం బహు విస్తృతం వ్యాప్త వర్తతే అద్ అద్ తత్ ప్రతి సమవాయి కారణత్వం ఉపాదాన కారణత్వం పరమాత్మన సిద్ధి
0: బ్రహ్మణ నిమిత్త కారణత్వం
3: స్వసమవాయి సమవేతత్వ సంబంధాయ దోషం స్వశబ్దేన బ్రహ్మ తత్ సమవాయి శక్తి తత్ సమవేతత్వ
1: సమవాయిని కథం శక్తి భవతి సమవేత ఖలు తరీ భోదీయ భాషయా ఉచ్యతే చేత్ తథా సమవేత ఇది ఖలు వక్తవ్యం అస్తు తత్ర సమవేతం సమవాయి ఇత్యాది శబ్దాః వస్తుగత్యా కదా ప్రయోక్తవ్య సమవాయ సంబంధతే వచ్చింది నమ్మ వేల పండ్రదా ఎడుకడం సమవాయ సంబంధతే ఒత్తుకృదిల్ల తర్హి
3: శక్తి తర్హి బ్రహ్మణి విశిష్టత్వం కథం కేన సంబంధ
1: తాదాత్మ్య సంబంధేన ఇది వదంతి తాదాత్మ్య సంబంధేన ఇది ఉచ్యతే తత్ సమవాయ తాదాత్మ్యయోః కో భేదః ఇది అనంతరం వదామి
0: ఇదానికి నిమిత్త కారణం నాస్తి బ్రహ్మ
1: நிமித்த காரணம் இல்ல, உபாதான காரணம்
3: தான்
1: சத்தியம். நிமித்த காரணம் மட்டும் இல்ல, நிமித்த காரணம் கேவலம் நிமித்த காரணம் தான். கர்த்தத்துவன நிமித்த காரணம், உபாதானத்துவம் ஜாஸ்தி, சக்தி துவாரா உபாதான காரணம் சா, சக்தி மத்துவேன உபாதான காரணம்.
3: அத்தியந்தாபேதம் சொல்ல முடியாது.
1: அத சக்திசக்தி மதோகம் அபேதா இது நையாயிகை தத்ர சமவாய சம்பந்தஸ்ய ஸ்தலானி யானி உச்சந்தே தத்ர சர்வத்ராபி தாதாத்மியம் குணகுணினோ தாதாத்மியம் கிரியா கிரியாவதோ விசேஷ பதார்த்தத்தை ஒத்துக்கிறது. இல்ல நையாயிகால் சமவாயத்துக்கு எந்த ஸ்தானம் கொடுத்திருக்காரோ அந்த இடத்துல தாதாத்மியம் வரும்னு சொல்றேன். அதர்த்தம் உத்தம்
4: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address. And the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Om Ramsaratena Parishinjami Dhisayam Parishinjami Satyamdaktena Parishinjami Dhisrata Adyaradarsam Pravaritya Satyam
4: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radio. The 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
7: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. ஓம் நம சிவாய.
8: துவே ढूंढते ढूंढते महर्षि कपिल के आश्रम में जाते हैं. वहां एक खंभे से बंधे हुए अश्व को देखकर इन्हें बहुत क्रोध आता है और महर्षि के आश्रम में उत्पात शुरू कर देते हैं. इधर महर्षि समाधि में बैठे हुए हैं. उत्पात से उनकी समाधि भंग हो जाती है. उन्हें बड़ा क्रोध आता है. उनके क्रोधाग्नि से मरा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं। इधर दूत ने महाराज सगर को समाचार सुनाया कि महर्षि कपिल के आश्रम में आपका यज्ञीय अश्व बना हुआ है और महर्षि के कोप से 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए हैं। सगर के दूसरे पुत्र अंशुमान जाते हैं, जाकर महर्षि की प्रार्थना करते हैं, क्षमायाचना करते हैं कि हमारे भाइयों से भूल हो गई, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। महर्षि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुम यज्ञ अश्व को ले जाओ और अपने यज्ञ को संपन्न करो। अंशुमान ने पूछा कि जो हमारे भाई जलकर राख हो गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? महर्षि कहते हैं कि ब्रह्म साप से दग्ध हुए लोगों का उद्धार केवल गंगा ही कर सकती है। तुम भगवती गंगा की तपस्या करो, गंगा प्रसन्न होकर जब धरती पर आएगी तभी तुम्हारे भाइयों का उद्धार होगा। अंशुमान अश्व को ले जाते हैं, यज्ञ कर्म संपन्न करते हैं, तदनंतर तपस्या करने लग जाते हैं। तीन पीढ़ी तपस्या की इसके बाद गंगा का अवतरण होता है। जैसे हम कोई जैसे किसी के दादा दुकान खोले, उसके बाद पिता फैक्ट्री खोलता है और जो पुत्र होता है उस फैक्ट्री के द्वारा संसार में विस्तार करता है। इसी प्रकार से महाराज अंशुमान तपस्या करते करते शरीर पूरा हो गया। उनके पुत्र महाराज दिलीप ने तपस्या की। दिलीप के सुपुत्र जब महाराज भगीरथी ने तपस्या करी तब जाकर भगवती गंगा प्रसन्न होकर दर्शन दिया। गंगा ने कहा तुम वरदान मांग लो। गंगा के कहने से ये पुनः प्रार्थना की कि मां मैं अपने भाइयों को उद्धार के लिए तुम्हें धरती पर आमंत्रित करता हूं। भगवती गंगा ने कहा मैं तो पृथ्वी पर चलने को राजी हूं, परंतु हमारे वेग को कौन रोकेगा, हमारे प्रवाह को कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी से मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा करने के बाद इन्हें मालूम पड़ा कि भगवान शंकर ही केवल गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। दोबारा पुनः हिमालय जाते हैं, वहां एक शिव की पिंडी बना करके भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं। भगवान शिव महाराज भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं वरम ब्रूहि, वरम ऋणीस्व। महाराज भगीरथी हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान शंकर दिव्य मुद्रा में बरधस्त होकर दर्शन दे रहे हैं। महाराज भगीरथी ने कहा कि भगवती गंगा ने कहा है मैं पृथ्वी लोक पर आने के लिए राजी हूं, परंतु हमारे वेग को कौन संभालेगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवती गंगा के वेग को संभालने के लिए पधारिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। इधर प्रसन्न होकर भगीरथी आते हैं। जैसे ही ब्रह्मांड को भेदन करती हुई गंगा जी धरती पर पधारती है, उसी गंगा जी का चित्रण इस 17वें श्लोक में किया गया है कि जो गंगा आकाश को व्याप्त करके रखी है उस गंगा की शोभा कैसी है। तो जिस प्रकार से जल में सूर्य चंद्र तारा प्रतिबिंबित होते हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है, इस तरह से तारागण के समुदाय से उनके प्रतिफलन से भगवती गंगा की शोभा उज्जवल फेन के समान बहुत ही सुंदर लग रही है। वही गंगा जब भगवान के सिर में आती है तो वह गंगा जी मानो चमकती हुई एक सुनहरा लकीर के समान भगवान शंकर की जटा में समा जाती है, जटा में भगवान शंकर उसको लपेट लेते हैं। भगवान शंकर में के जटा में जब गिरती है तो प्रीखत लघुदृष्ट शिरसिते बहुत छोटी सी तारा के समान वह टिमटिमाने लगती है। वही गंगा के द्वारा जिस सागर को कुपित होकर अगस्त ऋषि ने पी लिया था, जो सागर खाली हो गया था, उस गंगा के प्रवास से पूरा सागर भर जाता है और उस समुद्र के द्वारा ये जगत दीपाकार रूप में परिणत हो जाता है। तव दिव्य उपुह धृत महिमम, आपके महिमा के विषय में क्या कहना, आपकी बड़ी दिव्य महिमा है। यह तो एक ऐतिहासिक पौराणिक तथ्य है। इधर हम विचार करें कि जो ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा का जब अवतरण हुआ, ज्ञान गंगा का अवतरण श्रुति के अनुसार ज्ञानम इच्छित शंकरात्, भगवान शंकर से ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। ये सगर जीव ही सगर है, गरेण सहित सगर, गर बोलते हैं जहर को, वासनाओं का जो जहर है जिससे मनुष्य पीड़ित रहता है, यह विद्या कामना वासना ही तो जहर है। इसके साथ यह जीवात्मा पैदा होता है, ये 60,000 पुत्र ये हमारे मन की अनंत वृत्तियां हैं, इन अनंत वृत्तियों से मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं योग चित वृत्ति निरोधः, सारे वृत्तियों को के निरोध से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। जो अनादिकाल से जीव और ब्रह्म के बीच में वासनाओं का खाई बना हुआ है, उस खाई को यह वेदांत जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान पाटने का काम करता है। यह जीव ही सगर है, मन के अनंत वृत्तियां ही 60,000 पुत्र हैं। और जब मनुष्य ऋषि महर्षियों का आश्रय लेता है, सदगुरु का वही कपिल महर्षि है, उनसे प्रेरित होकर के भगवान शंकर से दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। श्रेष्ठाचार्य जी कहते हैं, श्रेष्ठाचार्य जी महाराज का यह कथन है, तत्मस्यादिवाक्योत्थम सम्यक जन मात्रतः अविद्या सहकारेण नासीद अस्ति भविष्यति। तत्मस्यादि से उत्त जो ज्ञान है वह ज्ञान अविद्या को समाप्त करके स्वरूप को प्रकाशित करता है। यह जो ज्ञान है इसी ज्ञान के द्वारा जीव परम शांति को उपलब्ध होता है, दूसरा कोई भी साधन नहीं है जो परम शांति को उपलब्ध करा सके। आगे विचार करते हैं दूसरे श्लोक के ऊपर, रथ क्षोणीयंता सतधृतिरगिन्द्रो धनुरथो रथांके चंद्रार्को रथ चरण पाणी सर इति दिधावस्ते कोयम् त्रिपुण त्रिणमाडम्बर विधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिय पृथक छोणी यंता। अब यहां पर ज्ञान गंगा के महिमा को बतला रहे हैं। ज्ञान होने पर क्या होता है? इधर एक बड़ा भारी त्रिपुरासुर है, भोगी और योगी दोनों ही तपस्या करते हैं। भोगी की तपस्या का लक्ष्य होता है शक्ति संचय करके भोग करना, साम्राज्य को बढ़ाना, और योगी तपस्या करता है, वह तपस्या से ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है। जैसे किसी के पास बहुत धन हो, यदि वह सत्संगी है, विवेकी है, ज्ञानी है, तो उस धन का सदुपयोग करता है, सुंदर धर्मशाला बनवाता है, स्कूल बनवाता है, मठ मंदिर संतों के सेवा में लगाता है, और वह उस धन के द्वारा देवाचरण करके परम गति को प्राप्त करता है। और वही धन किसी अविवेकी के पास, ना समझ के पास है, तो वह अय्याशी पूर्वक जीवन बिताता है और भोगे रोग भयम, अनेक प्रकार के रोगों में उसके धन खर्च होते हैं, केस मुकदमे में खर्च होते हैं, जुआ शराब में खर्च होता है, क्लेश में, कलह में, लड़ाई झगड़े में खर्च करता है। कोई दान के लिए आए तो एक कौड़ी नहीं दे पाता है, परंतु ये काले कोट वाले को जो मथाज के दूत है, इनको जो है हमेशा वह अपने धन को उसी में खर्च करता है, अर्थात दुरुपयोग में अपने धन को लगा देता है। एक ही धन है, ज्ञानी सदुपयोग करता है, धन से परमार्थ को सिद्ध करता है, परमार्थ के साधन में लगाता है, और जो अज्ञानी है उसे धन के द्वारा अय्याशी पूर्वक जीवन बिताता है। स्वयं वेदव्यास भगवान कहते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहे न। धन ही नहीं, अपने आयु का ज्ञानी सदुपयोग करता है तो अज्ञानी दुरुपयोग करता है, निद्रिया कलहे न। आप लोग भगवान कृपा से इससे मुक्त हैं। 4 बजे उठ जाते हैं, उठकर जल्दी स्नान करके नित्य कर्म करके 7 बजे प्रेमपुरी पधार जाते हैं। अन्यथा विवेक न होता तो आप 8 बजे तक सोते और 9 बजे तैयार होके सीधा ऑफिस में दौड़ते। जैसे एक मुमुक्षु तपस्या करता है वैसे एक व्यापारी भी करता है। जो व्यापारी तपस्या करता है उस व्यापारी की तपस्या का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक धन कमाना। व्यापार ही बड़ा भारी कष्ट होता है, पर वो जो कष्ट तपोमय है उसके द्वारा मात्र धन संचय करता, धन भी भोग के लिए, न वह उससे दान करता है, न दिन भी गरीब की सेवा करता है, तो दोनों में इतना ही फर्क है। इधर यहां पर भी एक बड़ा भारी जो असुर है जिसका नाम है त्रिपुरासुर, त्रिपुरासुर तपस्या करता है और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है। उसके वरदान का एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य वह यह है कि मुझे तीनों लोकों पर शासन करना है, परंतु वह तपस्या करके जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो प्रसन्न कर लेने के बाद ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तू वरदान मांग, तो ब्रह्मा जी से वरदान में वह मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी किसी से मौत न हो। आसुरी प्रकृति वाले को मौत से बहुत भय लगता है, सबसे पहला उनका मांग होता है अमरता का। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, अमर बनाना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अमर तो केवल तत्व ज्ञान से हो सकते हैं, क्योंकि जो जन्मता है वह मरता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो मरेगा तो जन्मेगा, जो जन्मता है सो मरता है। इसलिए तू दूसरा वरदान मांग ले। त्रिपुरासुर विचार कर अमर के समान वरदान मांगता है कि आप कृपा से हमें ऐसा तीन महल दीजिए, विमान बनाइए, जो देवताओं से, मनुष्यों से, असुरों से अभेद्य हो और उसका भेदन भी हो, तो तीनों एक साथ हो तभी जाके भेदन हो सके। एक लौह में विमान, दूसरा चांदीमय, तीसरा स्वर्णमय, तीन विमान वरदान में मांगता है। उस विमान पर सवार होकर त्रिपुरासुर तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देता है। सारे देवता भाग खड़े हुए, कंदराओं में जाकर तपस्या करने लगे। एक छत्र ब्रह्मांड में साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता लोग भग कर कैलाश जाते हैं, भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं, महादेव त्राही माम त्राही माम। त्रिपुरासुर पूरे संसार में आतंक मचा दिया है, आप कृपा करके इसका बल कीजिए, इससे हमें निजात दिलाइए। त्रिपुरासुर सबसे पहले देवताओं की, ब्राह्मणों की पूजा बंद करा दी, यज्ञ याग बंद करा दिया और कहा कि मत्तः परतरम को अन्य, मेरे से भिन्न दूसरा कोई नहीं है, मैं ही एक सबकी आत्मा ब्रह्म ईश्वर हूं, मेरे से भिन्न दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। सबको ऐसा उपदेश करके यज्ञ याग सत्कर्म से सबको निवृत्त करा दिया। जब देवताओं ने अपनी पीड़ा महादेव को सुनाई तो महादेव देवताओं को आश्वासन देकर विदा करते हैं और स्वयं ही त्रिपुरासुर के संहार के लिए पधारते हैं। रथोणी यंता, त्रिपुरासुर के संहार के लिए, क्योंकि उसका विमान कभी भी कहीं भी जाता है, सबसे अभेद्य है, इसलिए उसके अनुरूप ही एक जो है रथ की तैयारी करते हैं। पृथ्वी को तो रथ बनाया, ब्रह्मा जी सारथी बने, सुमेरु को धनुष बनाया और रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य हुए। रथ चरण पाणी जो भगवान विष्णु है वे सर बने। इस प्रकार से त्रिपुरासुर तिनके को भगवान ने आडंबर खेल खेल में ही समाप्त किया। भगवान स्वतंत्र है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी अन्य देवताओं को, पृथ्वी को महत्व देने के लिए, ब्रह्मा जी को, विष्णु को, सूर्य चांद को महत्व देने के लिए ही इस प्रकार से लीला की। जब भगवान अट्टहास किया, उनके अट्टहास से ही तीनों पुर खलक्कत एक हो गए। जैसे एक हो गए वैसे भगवान शंकर ने तत्काल बाण का अनुसंधान किया और उसे विद्ध होकर तीनों पुर में आग लग गई, त्रिपुरासुर का नाश हुआ। यह तो एक पौराणिक तथ्य है, आई विचार करते हैं आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर। ये जीव ही त्रिपुरासुर है, ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है यही समझो तीन पूर है और इसमें जो भोग बुद्धि रखता है वही भोगाभिमान जीव त्रिपुरासुर है और इसका नाश तभी होता है जब तीनों एक सीधी लाइन में हो, मतलब मनसा वाचा कर्मणा। ये तीन पूर है, कर्मणा अपने शरीर से निष्काम कर्म करें या जो है भगवत भक्ति करें, देवाचरण करें, माता की पार्वती के समान सेवा करें, पिति देव भव पिता को साक्षात महादेव माने, आचार देव भव गुरु आचार्य को देवता समझें। इस प्रकार से शरीर के द्वारा क्रिया निष्पन्न करता है। यत यत कर्म करोम तत् तद अखिलम संभो तबाराध, और मन से भी तदनुसार ही स्मरण करता है। भगवान के नाम का उच्चारण करना, मन से चिंतन करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, जब मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाता है, तब जाकर के इस तीनों पूर्व का भगवान शंकर ज्ञान के द्वारा भेदन कर देते हैं। देहत्रय के नाश से ही हमेशा के लिए ये मुक्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक त्रिपुरासुर का रहस्य है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक बड़े भारी करोड़पति थे। उन्होंने एक बड़ा सुंदर धर्मशाला बनवाया, अन्य क्षेत्र खोले, एक विद्यालय भी खोला, उसमें ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ा करते थे। वेदाध्ययन चलता था। कोई भी दरवाजे पर आता था वह खाली हाथ नहीं लौटता था। यह सनातन धर्म है कि अतिथि आए तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अतिथि देवो भव। यदि अतिथि घर से लौट जाता है तो पापम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति। अतिथि अग्नि रूप से घर में प्रवेश करता है, अतिथि का स्वागत नहीं किया गया तो आपके सुकृत को ले जाता है और दुष्कृत को छोड़कर जाता है। इसलिए अतिथि को देवता मान करके हमेशा सेठ जी पूजा किया करते थे। कुछ काल तक चलता रहा। जैसे ही पिताजी का शरीर छूट गया सेठ जी का, कुछ काल तक बच्चों ने भी चलाया, परंतु कालांतर में बच्चों ने पुनः क्षेत्र बंद कर दिया। धर्मशाला के लिए भी कुछ उसमें भी नियम लगा दिया, रसीद काटना शुरू कर दिया कि एक कमरे का कम से कम 100 रुपया है। एक महात्मा गुजरे जो उसके पिता के गुरु लगते थे। उन्होंने पूछा कि बच्चों, तुम्हारे पिता ने इतना सुंदर विद्यालय खोला, धर्मशाला बनाया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु इस धर्मशाले में तुम लोग 100 रुपए की रसीद किस बात की काटते हो? क्या कुछ व्यापार में घाटा तो नहीं लगा? बच्चों ने कहा, महाराज जी आप बात ठीक कहते हैं, कोई हमें व्यापार में घाटा नहीं, व्यापार और पहले से बढ़ गया, पैसे भी काफी हो गए, पर ये 100 रुपया जो हम लोग लेते हैं ना, मेंटेनेंस के हैं, क्योंकि 100 रुपया नहीं लेंगे तो मेंटेनेंस कैसे होगा, ये व्यवस्था के लिए है। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पिता एक पैसा नहीं लेते थे, कोई भी आए उसे धर्मशाला में जगह देना, उसका स्वागत करना, उसके भोजन की व्यवस्था करना और सत्संग सुना करते थे। ये भोग वृत्ति का लक्षण है कि जब आदमी के अंदर भोग वृत्ति आती है तो वह अपने पिता पितामह पैतृक के संपत्ति का भी सदुपयोग नहीं करता है, बल्कि उसका भी वह दुरुपयोग करता है, उसमें से भी कुछ कमाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है। यही भोग और योग में अंतर है। इसलिए हमारे जीवन में ये जब तक त्रिपुरासुर रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। त्रिपुरासुर का अर्थ भोग वृत्ति, और भोग वृत्ति को मिटाने का एक ही रास्ता है कि हम अपने जीवन में विवेक को, ज्ञान को जगह दें। और विवेक ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए कोई न कोई अवलंबन होना चाहिए। जैसे आपको विद्युत को जानना है तो विद्युत को जानने का अवलंबन है, चाहे आप ट्यूबलाइट लाइट से जाने या पंखे से जाने या कूलर से जाने या फ्रिज से जाने, जिससे सारे यंत्र संचालित हो रहे हैं, जिससे दूर दूर तक ध्वनि जा रही है, प्रसारित हो रही, वही विद्युत है। जिससे लाइट प्रकाश कर रही वही विद्युत है, जिससे पंखे चल रहे हैं वही विद्युत शक्ति है। माध्यम अनेक हो सकते हैं परंतु पावर एक है। ऐसे चाहे भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, श्याम सुंदर की उपासना करें, या भगवान शंकर की, या भगवान विष्णु की, या भगवती दुर्गा की, किसी की भी, सुधाया पानम अमितत्व हेतु हो। सुधा का पान ही अमितत्व का हेतु है। चाहे पात्र सोने का हो, चांदी का हो, या लकड़ी का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हमें उपासना करना चाहिए, साधना करना चाहिए, चाहे किसी भी देव का हो। उपासना करने से अंतःकरण निर्मल होता है। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्म। जब पापीय कर्म उपासना से क्षीण हो जाते हैं तो अपने आप निर्मल अंतःकरण में ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। शेष बात कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
6: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
9: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Karma Shaka, Adhyayam 31.
10: Atha एकत्रिंशोऽध्यायः। ओम।

0: इति एकत्रिंशोऽध्यायः। ओम।
1: डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द फॉलोइंग इज सामवेद संहिता पूर्वार्चिकम् प्रपाटक 4 दशति 4।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: दशा चतुर्थ
1: ओम ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Anaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे और एक नायनार या संत की कहानी, जिनका नाम है अनायार। दक्षिण के तिरुचिरापल्ली के उत्तर का क्षेत्र प्राचीन काल में मलनाड कहता था। यहाँ अहिरों का एक परिवार रहता था जो गौ पालन का कार्य करते थे। अहिर वंश प्राय कृष्ण परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं, पर यह परिवार पशुपतिनाथ शिव के प्रति समर्पित था। इस परिवार में अनायार का जन्म हुआ। अनायार की रुचि वंशीवादन और शिव भक्ति में थी। उनकी बंसी सुनकर सभी को प्रसन्न होता था। गायें चराने के लिए जब अनायार चारागाहों में पहुंचते तो प्रतिदिन अपनी बंसी द्वारा शिव पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र की धुन निकालता। उसने संगीत के सप्त स्वरों में नमः शिवाय को ऐसा साधा कि वह अपनी भी शुभ भूल गया। इस अलौकिक मंत्र को जब वह भक्ति में लीन होकर बंसी के स्वर से निकालता था तो सर्वत्र संगीत रूपी अमृत की वर्षा प्रारंभ हो जाती। वंशी की स्वर माधुरी जड़ चेतन प्रकृति को भी मंत्रमुग्ध कर देती। पशु पक्षी मानव सभी हृदय तंत्र मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गायें घास चरना बोलकर अनायार के समीप आकर खड़ी हो जाती थी। बछड़े माँ के धन से दूध पीना भूलकर खींचे चले आते। उस बंसी में निकले ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से पशु पक्षी जो कि आकाश में उड़ते रहते हैं उसी स्थान पर चक्कर लगाते रहते थे। हिरण समूह कुलाचे भरना भूल कर बंसी के स्वरों में स्वयं को विस्मृत कर देते। मयूर समूह नृत्य छोड़कर शांतिचित होकर उस संगीत का पान करते। साम शेर अथवा सभी जीव पारस्परिक शत्रुता भूलकर मुठली माधुरी में विमुक्त होकर एक साथ बैठे रहते हैं। आयना की इस एकनिष्ठ सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर शिव उनके समीप आ गए और उनसे कहा, वत्स, इसी स्थिति में मेरे पास आ जाओ। प्रभु ने अनायार को रुद्र पशुपतियार नाम प्रदान किया, तो उनका दूसरा नाम रुद्र पशुपतियार हुआ। चित्तिलर ने कहा है कि जिस प्रकार बंसीवादन का विषय एवं सूक्ष्म वर्ग सभी को प्रसन्न कर देता था, उसी तरह विष्णु भक्त कैयालवाल ने कृष्ण कन्हैया को की मुरलीवादन का वर्णन किया है। कालांतर में सूरदास ने ऐसा वर्णन उत्तरी भारत हिंदी भाषा में भी की है। ये सभी भक्त एक विशेष संकेत दे रहे हैं कि पशु पक्षी से लेकर मानव तक सभी को एक समान बांधने की क्षमता केवल संगीत में है, और जो संगीत शिव या भगवान के प्रति समर्पित हो वह सारी दुनिया को एकजुट कर सकता है। संगीत एक ऐसा सशक्त साधन है जो ऐसी समझता ला सकता है। एक कोशीय जीव से लेकर सुविकसित मानव तक सभी में जो सामंजस्यपूर्ण संबंध है उसी के आधार पर संसार टिकाऊ हुआ है। अनायार जैसे भक्त अथवा शिव श्री कृष्ण जैसे ऐश्वर्य अवतार बंसी की स्वर लहरियां वायुमंडल में दसों दिशाओं में फैलाते हैं तो जीव मात्र में व्याप्त एकात्मकता को उद्घाटित कर उनमें एक सामरस्य स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो देवलोक में व्याप्त सभी देवगण अपना अपना आविर्भाव या प्रसाद ग्रहण करना भूलकर गोकुल में कृष्ण की मुरली के रस का पान करने पहुंच जाते थे। ऐसी ही स्थिति कुछ अनायार के वंशीवादन में थी, इसलिए यह एक उच्च कोटि के संत हुए।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो। the 24/7 spiritual channel from shivam.org.
3: Om Namah Shivaya.

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Anandanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: ये संकेत वहां भी ठीक इसी प्रकार से यहां भी संकेत कर रहे हैं, जो विस्पष्टार प्रति नाम उनके लिए तो जीवन में क्या होना चाहिए, तो पहले श्रवण, श्रवण के द्वारा उसके गुणधर्मों का विवेक, गुणधर्मों का विवेक होने पर हमारी इच्छा उसमें होती है, इच्छा के अनुकूल प्रयत्न करना, और प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे वो पात्रता, वो अधिकारिता हमारे में आ जाती है, वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि प्रयत्न करते हुए तुम अधिकारी बन ही जाओ। कितने लोग जीवन में और अध्ययन करते हैं लेकिन सब जो है कंपटीशन में जाते हैं तो क्या सब अधिकारी बन जाते और सबका चयन हो जाता? यही तो शास्त्र कहता बार बार, धर्मशील कोटि न मोह को एक एक हो धर्म सूत्रधारी। माने करोड़ों व्यक्तियों में, अनंत व्यक्तियों में कोई विरले ही है धर्म और श्रुति के अनुकूल चलने वाले, और उन चलने वालों में भी उस प्रकार से कर्म करने वाले, प्रयत्न करने वाले उनमें भी बहुत कम, उनमें भी छटनी हो जाती और कहने लगे उससे आगे श्रेणी चलती है। तो ऐसे प्रयत्न करने वालों में कोई एक ही सिद्धि को मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतत सिद्ध है, इस सिद्धि के लिए कोई एक निकलता। और सिद्धतामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्य, कोई एक ही प्राप्त होता है। तो ये जीवन की और सर्वत्र, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, ये नियम सर्वत्र विद्यमान, ये संकेत। इसलिए यहां कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास की श्रेणी बतलाई तो श्रद्धा कब आएगी और श्रद्धा भी कैसी, इसको लेके हम दृष्टांत एक दे रहे थे। क्या अवंतिका का राजा, इन दृष्टांतों से सरल में समझ में आ जाती। अवंतिका का राजा शिकार खेलने के लिए मेदपाट के आसपास जंगल में गया और भील को वहां सहयोगी बना लिया। भील ने उसकी सेवा की, एक महीने तक रहा, और भील ने जब जो है पूरी तत्परता के साथ, पूरी संलग्नता के साथ उसका सहयोग किया तो उस पर प्रसन्न हो गया। तो उसने क्या कहा जब चलने लगा, प्रसन्न हो गया कि भाई तू हमसे कुछ। अब जो है जब उससे कहा तो उसने क्या देखा था कि वो जो है प्रातः का बैठा हुआ और क्या कर रहा था, भगवान शिव की पूजा, और वो ही नहीं कर रहा था, करते तो सब है लेकिन करते हुए भी और जो है भूल जाते हैं, ये भूले ही तो सब काम खराब कर देती। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि इसको न करता हो। आप कहो कैसे, तो आपको एक मोटे रूप में बतलाऊं, आप पालती मार के बैठ जाओ है? अब आपके जंघाओं का जो पालती का रूप बन गया, ये क्या हो गया, मान लो एक मंदिर का चबूतरा हो गया, क्या हो गया, मंदिर का चबूतरा हो गया। ये जो आपका है वो मंदिर का पूरा जो है परकोटा बन गया, हृदय आपका गर्भग्रह हो गया, और ये उसका गुम्बद हो गया, और जटाएं हो भावा जी जैसी तो बांध लो, जूरा तो कंगूरा हो गया है ना, कंगूरा उसका बन गया। अच्छा अब जो है वो जो इस गर्भग्रह के अंदर जो बैठा है वही क्या है, शिव विग्रह। वो आत्मा जो विद्यमान है वही क्या है, शिव विग्रह। और बंद करके, चारों तरफ से बंद करके प्रत्येक प्राणी सुसुप्ति अवस्था में कहां जाता, वहीं जाता है, उसी की पूजा करता। उसको जो है वो कोई जान ही नहीं पाता, वो भी नहीं जान पाता, और उसने जो है धीरे से उसकी जब रुचि पैदा हुई और रुचि पैदा हुई तो सीमन थोड़ी हटाई और देखा कि यह जो है इसकी उपासना करता है, तो उपासना करता तो लोक से भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो। अब जब उसने देखा तो उसके हृदय में भी रुचि पैदा हो गई। रुचि ही तो पैदा हुई पहले, और कैसे हुई तो देख करके, देख करके, सुन करके। जीवन में जो है हम अनुभव करते यही देखना, और जब उसके अंदर रुचि हुई तो रुचि के अनुसार उसके अंदर भी आया कि मैं जो हूं भी पूजा आदि करूं। अब ये क्या है? था तो भीड़, तो ये कोई नियम नहीं। प्राणी, कोई भी प्राणी कहां है, कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं। कब परमात्मा की उस पर कृपा हो जाती है और कब उसके हृदय में वो इच्छा पैदा हो जाती है, ये कोई नियम नहीं। ये नहीं कि बाबा जी के हृदय में ही पैदा होगी, गुफा में बैठे हुए एकांत में बैठे उनके ही हृदय में पैदा होगी, ऐसा कोई नियम नहीं। वो नियम है एक बुद्धि की शुद्धि करने का नियम, अपहरे गृणाम संगमे नदीनाम विप्रोधिया अजायत। वो एक जो है हमारी विप्र बुद्धि तो प्राप्त होगी, लेकिन बुद्धि प्राप्त होने पर कोई ऐसा नियम नहीं कि एक व्हील है जो व्यवहार में, लोक व्यवहार में चल रहा है और उसके अंदर नहीं होगा, उसके अंदर भी हो सकता। परमात्मा की कब किस पर कृपा हो जाती है तो तभी उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में वो दृष्टि पैदा हो जाती, वो रुचि पैदा हो जाती, और व्हील के भी रुचि पैदा हो गई। और वो राजा जाने लगा, राजा कोई दूसरा नहीं, जीव ही समझ लेना। अब जब राजा जाने लगा और पंच विषयों का उपभोग करना यही शिकार करना है, और कोई शिकार करना नहीं, लेकिन किसके सहयोग से करते हो तो बुद्धि आदि के सहयोग से ही करते हो, बगैर उसके नहीं कर सकोगे। तो यही सब सारे रूपक इसीलिए बनाए गए। तो अब जो है उस व्हील से कहा कि तू कुछ मांग ले। उसने कहा मुझे तो जो है ये विग्रह दे दो। उसने थोड़ा टालना भी चाह, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और जो है उसकी रुचि जो पक्की हो गई, और जब रुचि पक्की हो गई तो राजा ने कहा चलो ठीक, इसने सेवा की है, ये उसकी प्रसन्नता थी। अब जो है प्रसाद से, प्रसन्नता से उसने उसको दे दिया। उसने उसका नियम पूछा। राजा ने सोचा ये भील जाति का है, ये नियम को निर्वाह कर सकेगा, पवित्रता रख सकेगा या नहीं रख सकेगा, इसलिए उसने सामान्यतया उसकी विधि बतला दी। जल पुष्प पत्र आदि चढ़ा देना, ये तो जंगल में मिल ही जाते, लेकिन एक नियम बतला दिया। एक न कोई न कोई जीवन में एक हमारा निश्चय होना चाहिए, नियम होना चाहिए जिस पर हम आरूढ़ रहे, और वही नियम हमको जो है गति तक पहुंचा देता। और ऐसा ही जब जो है उससे कहा कि एक नियम रखना, कहा क्या? कहा ये जो शिव है इसे प्रिय क्या है? जल भी प्रिय, ये सब तो प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय क्या है? जिसका ही उसने आवरण बना लिया है, चिता भस्म लेप सृगप रोटी परिकर है। मने जो है अपने सारे शरीर में जिसने क्या लगा रखा? का भस्म। और ये भस्म किसका प्रतीक है? भस्म प्रतीक है सारी उपाधियों को नष्ट करके जो शेष तया मूल तत्व है उसका। भई जो उपाधि थी, जो नाम रूप था, और वह जल गया, लकड़ी, लकड़ी क्या एक नाम है और उसका आकार प्रकार, उसे जला दिया तो क्या रह गया? राख रह गई, भस्म रह गई। अब लकड़ी नहीं कहोगे उसे, है ना? तो वो क्या है? राख। इसी प्रकार से सारे जगत की उपाधि जो नाम रूपात्मक है उसको जहां पर जला दिया जाता है, उसका जहां पर परित्याग कर दिया जाता है, और वो शेष जो बचता है उसका नाम है भस्म। और ऐसे शेष को धारण करने वाले कौन है? शिव, परात्पर ब्रह्म। तो अवशेष तया जो रहने वाला है, इसलिए उसे कहा जाता संगो ही अयम पुरुष। किसी भी उपाधि में उसकी आसक्ति नहीं, निरुपाधिक जो है। तो इसलिए शिव को जो है निर्गुण निराकार मानते, राम की मूर्ति होगी सगुण साकार कहोगे, लेकिन जो है शिव विग्रह को निर्गुण निराकार की उपासना माना, संकेत किया। इसलिए उपासनाओं में भी थोड़ी चर्चा आ गई, कह दो प्रकार की उपासनाएं होती, ये तो सब जानते, एक अहंग्रह उपासना और एक प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना क्या है? आलम्बन प्रधानत्वे सति उत्कृष्ट चिंतनम इति प्रतीकोपासनम। प्रतीक उपासना क्या? गंडकी नदी से आप जो है गोलमोल प्रस्तर लेके आए, लेकिन उसको सिंहासन बना करके रखा, और क्या कहते हो, सालिग्राम भगवान। लेकिन केवल इतना ही नहीं कहते, भोग भी लगाते सब कुरते हो। तो आपने उसका आश्रय लिया, एक सहारा बनाया और आलंबन बनाया उसे, और उसका आलंबन बना करके अब वहां पर वृत्ति क्या बन रही है, भाव क्या बना रहे, चिंतन क्या कर रहे हो, विचार क्या कर रहे हो, विचार कर रहे हो ये सालिग्राम है। और कौन से सालिग्राम है, का सृष्टि करने वाले, स्थिति करने वाले, लय करने वाले, सब कुछ करने में समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ऐसे ये सालिग्राम भगवान हैं, ऐसा चिंतन करते, ठीक है ना। ये तो हो गई प्रतीक उपासना, हमने एक सारा ले लिया, एक अवलंबन ले लिया, क्योंकि बगैर अवलंबन के चलना हमारे लिए कठिन है, बारहवें अध्याय में पढ़ते ही हो। तब ये तो हो गई प्रतीक उपासना, कोई भी प्रतीक, कोई भी चिन्ह, कोई भी सहारा ले लेना। आगे कहा अहंगर उपासना, अहंगर उपासना में क्या रह जाता, आलंबन त्रिस्कृत्वे सति उत्कृष्ट चिंतनम इति अहंग्रोपासनम। वहां पर आलंबन अपने आप छूट जाता है, छोड़ता है ऐसा नहीं, आलंबन क्या होता का छूट जाता है, और आलंबन जब छूट जाता है लेकिन उत्कृष्ट चिंतन छूटता नहीं। उस उत्कृष्टता का उसे बोध रहता है कि ये सारा जगत कहां से हुआ है, तो कहने लगे जिस कारण से, ये तो हुआ है मान भूतान जायन्ते, तो उसी से हुआ है, वही एक मूल तत्व है, वही एक मूल शक्ति है, और वही मेरे से भिन्न नहीं है, ऐसा चिंतन वो करता है, वही मैं हूं। और ये चिंतन करना ही क्या है, अहंग्रह उपासना। और अब किसकी चर्चा कर देंगे, थोड़ी सी इसको सुन लो दृष्टांत को। अब जब जो है उसने उसको दे दिया, तो नियम बतला दिया कि भस्म जो है जरूर चढ़ा देना। किसकी भस्म चढ़ाना, ध्यान रखना, चिता भस्म। और चिता भस्म का मतलब जानते हो, जहां पर नाम रूप उपाधि को हटा करके जो शेष बचे उसी का नाम है चिता भस्म। नाम भी नहीं रहा, रूप भी नहीं रहा, क्या रह गया, केवल जो अवशेष तया जो सत्तात्मक है वो रह गया, उसको चढ़ा देना। उसमें भी आसक्ति मत रखना, माने उसका त्याग कर देना। चढ़ा देने का मतलब क्या, त्याग कर, ध्यान रखो। अब जब इस प्रकार से जब कहा उससे, तो उसने जो है 12 वर्ष तक इस नियम को बड़े अच्छे ढंग से निभाया। और जब वर्षा हो गई, चारों तरफ जल हो गया, चिता भस्म कहीं मिली नहीं, तो बेचारा दुखी होने लगा कि एक छोटे से नियम को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए आज तो मैं शरीर का ही त्याग कर दूंगा, धिक्कार है मेरे लिए। और जब ऐसे कहने लगा, तो उसकी जो धर्म पत्नी थी आहुति, जो उसका सहयोग करने वाली थी, यासी को वृत्ति कह दो, तो उसने जो है जब उससे कहा, तो उसने जब अपनी वेदना व्यक्त की, तो उसने कहा चिंता करने की बात क्या, कहा क्या मतलब, कहा झोपड़ी है ना, कहा तो, कहा इसमें आग लगा दूंगी, अंदर सूखी है, और मैं बैठ जाऊंगी, जल जाऊंगी, चिता भस्म। कहा तू, कहा जब ये नाम रूप उपाधि जो है, सब मिथ्या ही है, और इसका जाना निश्चित ही है, और ये यदि जो है जो वस्तु हमसे छूटने वाली है, तो क्यों न इसको देकर के भगवान को हम दाता बन जाए, ये बढ़िया श्रेय हमें मिलेगा। और ये भाव तो उसने कहा तू ठीक कह दी, और वो उसमें बैठ गई और बैठ करके आग लगा दी, और आग लगा करके चिंतन क्या कर रही, जैसे ही उसमें बैठी आग जलने लगी, यहां तक उसे बोध है, और कहने लगी पुष्प

0: विचार उसका क्या है, क्या विचार करने लगी। पुष्पाणि सन्त पुष्प हैं और उन पुष्पों को मैं तुम्हारे लिए अर्पण, लेकिन पुष्प क्या है तो क्या कहने लगी। पुष्पाणि सन्त तव देव, हे देव हे भगवान, आज मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूं, लेकिन पूजा किससे कर रही हूं, अब वन्य पुष्पों से नहीं, वनस्पति औषधियों पर होने वाले पुष्पों से नहीं। कहा ये तो तुम्हारे द्वारा ये निर्मित हैं, हमारे द्वारा निर्मित पुष्पों से नहीं, क्या है का? कहा पुष्पाणि संत तव देव ममेन्द्रियाणि, हमारी आंख नासिका आदि कान ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हीं को मैं पुष्पों की जगह पर आपको अर्पित कर रही। और कहने लगे इतना ही नहीं, आगे कहा धूपो अगर बपुरिदम, और धूप बत्ती की जगह पर ये शरीर ही मैं आपको धूप की बत्ती की जगह पर आपको अर्पित कर रही। धूपो अगर बपुरिदम हृदयम प्रदीपा है दीपम दर्शयामी, और दीपक की जगह पर मैं अपने हृदय को ही आपको अर्पित कर रही। प्राण हवीस हव्य की जगह पर, आहुति की जगह पर हम अपने प्राणों की ही आहुति आपको, हम लोग भी कहते हैं प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा, लेकिन वो कहना ही कहना है। ये दृष्टि आ जाए अब संकेत किया, और कहने लगे आगे प्राणा हवीश अंत में चाहते हो अक्षतान समर्पयामि है क्या, तो चावल जो है वो क्या है, कर्णानि तवाक्षतास्त, हमारे पैर हमारे हाथ जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो हम तुम्हें अक्षत की जगह पर समर्पित कर रही हूं। और आगे कह दिया पूजा फलम व्रजत सांप्रतमेश जीवा, यह जीव जो हमारे में जीव भाव है यह इस पूजा के फल को प्राप्त हो और आपके चरणों को प्राप्त करे। ये संकेत कहते हुए उसने दिल दिया, भस्म तैयार हो गई, वह निर्विकार भाव से वह आहुक जो है पूजा करने बैठ गया। और जब पूजा करने बैठ गया तो उसके जीवन में तत्परता थी, हम कहते तो हैं संयतेन्द्रिया तत्पर, उसके जीवन में वो संलग्नता थी, पूजा करने में इतना संलग्न हो गया, इतने मन से करता था, इधर उधर उसका चिंतन नहीं होता था। और जब वो पूजा करने बैठ गया, क्रम से सारी वस्तुओं को अर्पित कर दिया, और जब पूजा में संलग्न हो गया तो उसकी वृत्ति अन्य रह नहीं गई, तो जैसे स्वभाव उसका बन गया था, रोजाना कहता था भोग का समय आया कि अरे भोग तो ले आओ, और जैसे आवाज सुनी तो वह जो है दिव्य जो है रूप में आकर के दिव्य भोग को लेकर के उसके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने देखा तो होश आया, और जैसे ही उसे होश आया कहा तू तो जल गई थी। कहा हां आपने आवाज लगाई, मैं तो जल गई थी, बैठी तो मुझे कुछ पता नहीं, बैठी उस समय पता चला, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं चला, लेकिन आपने आवाज लगाई तो भोग तैयार रखा था और वो मैं लेके। कहने लगा धन्य है प्रभु, आप छिप करके ये सारा काम कर रहे हो, कृपा करो अब आप जो है, और भगवान ने उसे दर्शन दिया, ये साक्षात्कार हुआ। तो ये साक्षात्कार कब हुआ, ये साक्षात्कार हुआ तब जब हमने अपने अंतःकरण को अपनी इंद्रियों को और उसके समर्पित कर दिया। ये सब भगवान बार बार कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, हम तो कर्ता भोक्ता बने हुए है ना, ये साक्षात्कार की स्थिति होती तो विस्पष्ट रुचि नाम, जो साक्षात्कार करना चाहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, इसका संप्रणयन कर रहे हैं। अब आपको एक बात और सुना दूं, अभी जो हम प्रतीक उपासना की बात करते पहले हम प्रतीक से चलते हैं और प्रतीक से अहंग्रह में पहुंच रुचि होती है, रुचि श्रद्धा में ले जाती है और श्रद्धा में सत्य का साक्षात्कार करा देती है, चाहे वो कैवल्य उपनिषद हो चाहे कोई उपनिषद हो और चाहे सामान्य शास्त्र जो हमारे ऋषियों ने प्रेरित किए वो हो। आप मीरा की कथा सुनते हो, मीरा की जीवनचर्या भी आप जानते हो, कहानी सब जानते हो, उसके पदों को भी गाते हो। मीरा ने पहले क्या है, बचपन में ही है किसी आचार्य से कृष्ण की मूर्ति देखी और जो है उसमें प्रेम हो गया, उसकी आराधना करने लगी और आगे चल करके और उसी का श्रवण होने लगा, तो विशेष रुचि हो गई, और विशेष जब रुचि हो गई तो रुचि कितनी हो गई, विशेष इतनी हो गई कि उसी में ही मीरा निहित हो गई और क्या कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। अब जाकर छोड़ दई कुल की कान, कहा करे है मेरो कोई। ये मीरा की भावना, जो मीरा जीवन भर कहती रही कि मोर मुकुट वाला मेरा पति है ना, जीवन भर क्या कहा कि मोर मुकुट वाला मेरा, तुलसीदास की भी किंवदंती आती। लेकिन आप विचार करो, अब गीता में बोलते हो अव्यविचारी भक्ति है। अब मीरा की भक्ति कैसी है, अब आप कहते तो हो लेकिन कैसे, आगे पद मीरा क्या बोलती, जीवन भर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा ये मित्र है या मेरा ये पति है, और जब प्राप्त होने का समय आ जाए तो नाम बदल दे, कहे कि देवदत्त मेरा पति है, और जब प्राप्त होने पति से मिलने का समय आ जाए तो कह दे कि नहीं नहीं धर्मदत्त मेरा पति है, तो उसे क्या कहोगे, विश्वास करोगे। जीवन भर जिसने कहा कि मोर मुकुट है वाला मेरा पति, और जब पति प्राप्त हुआ मिला साक्षात्कार हुआ तो क्या कहा, पायो जी पायो मैंने, क्या मतलब, विचार करने की बात, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, तो कहना चाहिए श्याम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो। कोई किसान कहे कि मैंने चना बोया था और काटने पहुंचे तो गेहूं मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं, तो ये बड़ी विलक्षण बात है। लेकिन क्या है, पहले थी भागो भक्ति प्रतीक भक्ति, लेकिन अब मीरा कहां पहुंची, और मीरा कौन है। जब मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखा तो तुलसीदास ने क्या लिखा था, तजोरे मन हरे विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग तजोरे मन, और मीरा ने वो मान करके छोड़ दिया है, और पहुंच गई वृंदावन, हो गई वैरागी एक संकेत मात्र से। लेकिन वो तुलसीदास तो पीछे रह गए, और मीरा उनसे है? गुरु तो गुड़ रह गए और चेला चक्कर हो गए। मीरा ने जो है क्या स्थिति प्राप्त की, तो यही नहीं कहा राम रतन धन पाने का मतलब क्या, मीरा के जीवन में राम और कृष्ण का भेद ही मिट गया, ये राम है ये कृष्ण ये नहीं, कैसे कहोगे। तो जो श्रुति का निचोड़ है सार है उसको मीरा आगे कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन ये राम रतन धन क्या है, वस्तु मोलक दी मेरे सदगुर कृपा कर अपनायो, ये वस्तु सामान्य वस्तु नहीं, वस्तु शब्द का प्रयोग किया, अमूल्य है जिसका कोई मूल्य आंका ही नहीं जा सकता, जो अनंत है जिसे ब्रह्म को अनंत कहा जाता, ऐसे ही अनंत से निप्त। और इतना ही नहीं कहा, जो श्रुति में अप्रमेय है अव्यय आदि शब्दों का प्रयोग किया, मीरा ने सामान्य शब्दों में उनको कहकर बतला दिया, कहा यह वस्तु कैसी है, खर्च न होवे, क्या मतलब, मनुष्य में व्यय कभी हो ही नहीं सकता, परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता, न्यूनता कभी आई नहीं, खर्च न होवे और चोर न लेवे। चोर क्या करेगा, एक देश से दूसरे देश में ही तो ले जाएगा, तो देशगत परिच्छिन्नता भी जिसमें नहीं है और वस्तुगत परिच्छिन्नता भी जिसमें नहीं, खर्च न होवे चोर न लेवे और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने। और ये तो कहते हो भृंगत्वात् भृंगत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, ऐसी स्थिति में मीरा पहुंच जाती। तो यहां पर जो चर्चा की जा रही है, यहां पर संकेत किया कि हमारे जीवन में जब आचार्य आदि का के माध्यम से हम श्रवण करते हैं, शास्त्रों का हम आश्रय लेते हैं, और शास्त्रों का आश्रय लेकर के और आचार्य आदि के द्वारा हम जब उन युक्तियों को श्रवण करते हैं तो हमारे में रुचि होती है, और रुचि जब हम उसको आगे लेकर के चलते हैं तो जीवन में वैराग्य आदि आता है, मोक्षता आदि आती है, और ये सब आते हुए हमें वह श्रद्धा से युक्त करके अधिकारी बना देती है, और अधिकारी बनने पर हमें उसकी प्राप्ति हो जाए। ऐसा जो सार तत्व है वो इस उपनिषद के अंतर्गत है, और वो हम जो है संप्रयण करने जा रहे हैं, ये यहां चर्चा है। अब फिर कभी होगा भगवान की कृपा। ओम शांति शांति।
1: नारायण नारायण नारायण। सही माने में हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे संत स्वामी प्रेमपुरी जी की कृपा से यहां पधारते हैं। अद्भुत वाणी, ज्ञान बरस रहा है यहां पर, श्रवण करते रहें यह इच्छा होती रहती है, स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है। और मैं तो कहता हूं कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसे संतों के दर्शन, इनकी वाणी, इनका ज्ञान हमें यहां प्रसाद के रूप में मिल रहा है। स्वामी जी ने बताया हमें कि सोने के पात्र में चंदन की लकड़ी जलाकर यदि हम उसमें लहसुन पैदा करते हैं तो हमारे समान मूर्ख और कौन होगा। और सही माने में हम वही कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें इतना दुर्लभ दे दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, अमूल्य सांसें दी हैं, अमूल्य समय दिया है। मरते वक्त हम करोड़ों रुपए खर्च कर भी एक सांस नहीं पा सकते। उन सांसों को, उन समय को, इस दुर्लभ मनुष्य देह को हम किन बातों में बर्बाद कर रहे हैं? असत पदार्थों के जमा करने में, असत भोगों के, नाशवान भोगों के भोगने में हम अपना सारे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो उस प्राणी में जो सोने के बर्तन में चंदन की लकड़ी जलाकर लहसुन का साग बना रहा है, उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हिरण होता है उसके अंदर कस्तूरी होती है, वो कस्तूरी की वो समस्या है कि मुझे बाहर से आ रही है और वाकई में कस्तूरी उसके भीतर है। वही हालत हमारी है, आनंद हमारे भीतर है और आनंद हम बाहर संसार में सोचते हैं, ढूंढते हैं, और संसार में आनंद है नहीं, आनंद तो हमारे भीतर है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो बातें स्वामी जी ने हमें कही हैं उनको हमें आचरण में लाना है। हमें हमारे जीवन में जो असत वस्तुएं हैं उनका त्याग करके सत्य क्या है, केवल ईश्वर सार एक ही है, वासुदेव है सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसके अलावा और कोई सार नहीं है। जो आनंद है, जो तत्व है, वो हमारे भीतर है। स्वामी जी ने बड़ी कृपा की है, अगले वर्ष के लिए स्वामी ने समय दिया है, लेकिन अभी दिन और महीना की नहीं हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं कि जुलाई या अक्टूबर में स्वामी जी पधारेंगे, उसकी तिथि अभी नक्की हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी का स्वागत करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगबरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्यग्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपरः सरञ्च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंदयोगींद्रमतास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमतास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओ ओ ओ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर विचार कर रहे हैं। विचार के लिए अभ्यास के लिए 12वां श्लोक। गुहायां गेहे वा बहिरपि बने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम् सदा यस्यैवान्तः करुणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निज भजन दूरे जड़ धिया भ्रमन्तं मामन्धं परम कृपया पातु मुचितम् मदन्यः को दीनः तव कृपण रक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभोस्त्वं दीनानां खलु परम बंधु पशुपते प्रमो

शंकराचार्य जी की दूसरी दृष्टि है, तुम करो उस शरीर को ठीक करने के आसन है। ध्यान देना, ये इनकी निंदा नहीं है, करो शरीर को ठीक करने के आसन है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो शरीर ठीक होगा नहीं है। शरीर तो बड़ा वो अड़ियल घोड़े की तरह है, मारो चाबुक तो थोड़ी देर चले, चाबुक मारना छोड़ा तो खड़े हो गया है, अड़ियल घोड़ा है ये है। तब सबसे बढ़िया आसन बता रहे हैं, सबसे बढ़िया योग है शिव योग। वाह, अब शिव योग के बारे में यहां बता रहे हैं। शिव योग का अर्थ होता है मन को ठीक करना, तन को ठीक करना नहीं। ध्यान देना, शरीर पर जो ध्यान देगा, शरीर ठीक रहे ये ध्यान देगा, वो क्रिया योग करे, हठ योग करे, शीर्षासन करे, वीरासन करे, मयूरासन करे, मेंढकासन करे, मंडुकासन करे, कौन कौन से आसन है कर लो, सब हजार आसन कर लो, लेकिन अपने को ठीक रखना चाहते हो, अपने को इतना तो ख्याल रखने चाहिए जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को, शरीर और मैं हम अलग अलग हैं, शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। शरीर चाहे जितना ही ठीक करोगे वह खराब होगा ही होगा, और शरीर जितना भी ठीक होगा उससे शिव योग से कोई संबंध नहीं है। मन जितना ठीक होगा उसी से शिव योग सिद्ध होगा। इसलिए यहां शिव योग आंतरिक है, हठ योग बाह्य है, हठ योग क्रिया साध्य है, शिव योग भाव साध्य है। शिव योग भावना से सिद्ध होता है, क्रिया से कुछ नहीं। शिव योग बुढ़ेवती में भी कर सकते हो, रोगी हो तो भी कर सकते हो, भोगी हो तो भी कर सकते हो, लेकिन हठ योग रोगी में नहीं कर सकते। तुम रोगी हो गए तो क्या हठ योग कर लोगे, बूढ़े हो गए तो क्या हठ योग कर लोगे। लेकिन शास्त्र में अनेक प्रकार से हठ योग करने वालों का उल्लेख है, करते हैं, किया हुआ उल्लेख आता ही है। उनके तरफ व्यंग कर रहे हैं शंकराचार्य। कुछ लोग योग करने के लिए गुफा में चले जाते हैं, है ना, सुना है आप लोगों ने, घर बार छोड़ छाड़ कर पहाड़ में जंगल में जाकर गुफा और कंदराओं में बैठ जाते हैं, कंदमूल खाकर और योग साधना करते हैं, बहुत लोग करते हैं। आप लोगों ने भागवत के प्रसंग में सुनाई है, मांडव्य ऋषि है, मांडव्य ऋषि पहाड़ के कंदरा में गुफा में रहकर योग अभ्यास करके योग साधना में थे, और उसी समय में उस राज्य का जो राजा था उसके खजाने में चोरी हो गई। आप लोगों ने सुना है ना, और चोरों ने वो सारी राजकोष को चोरी करके ले जाकर उसी गुफा के अंदर रख दिया, जहां मांडव ऋषि पहले से ही समाधि में, निर्विकल्प समाधि में योग अभ्यास करके निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए थे। तो राज आज्ञा हो गई कि चोरी हुई है, संपत्ति कहां रखा है, किसने चोरी की है, चोरों को पकड़ो, संपत्ति को खोजकर पता लगाओ, ले आओ। तो राजधानी में, शहरों में, गांव में, कस्बों में सब जगह खोजा गया, कहीं कुछ पता नहीं चला। तब जंगलों में जब गए तो पहाड़ के एक गुफा के अंदर वो चोरी किया हुआ संपत्ति भी सुरक्षित वहीं रखा हुआ था, चोरों ने ले जाकर रख दिया वहां।

माये बुद्धि निवेशाय निवेशेश्वरी मयेव अत ऊर्धम न संशय। तो फिर आप कैसे पार करोगे? यदि ज्ञान से या आपके शरण में आने से ही मुक्ति हो जाए तो ज्ञान की जरूरत क्या है? तो भगवान ने कहा, मैं पहले तो बताया तेरे को, ज्ञान न तदज्ञानम जैसा नाशित आत्मनः, ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नाश हुआ उसको उद्धार करता हूं। तो ज्ञान कैसे जैसे ढंग से समिद्योग ने भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा अभिचेत से पावेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्व ज्ञान प्लबे नृजिनम संतरिष्यसी। तो बतलाया कि नहीं अवला, तो पापे से पापी कहता है आपने को, कौन नंबर का पापी है, कौन से नंबर का पापी है? एक नंबर का पापी है। यह नंबर पापियों पे भी नंबर लगता है, याद रखना। हाँ, पापियों भी नंबर होता है ना महाराज, हम तो महापापी है बोलते नहीं, पापा आत्मा हम, पापा कर्मा हम, पापा संभव हम बोलते कि नहीं। कर्मकांड में जो अंतिम में पंडित लोग कराते हैं कि नहीं, पाप आत्मा हम, पाप कर्मा हम, पाप संभव हम बोलते हैं ना। पाप पुण्य आदि आत्मा में नहीं है, याद रखना, ये भावना में है नहीं बात। तो वहां भगवान ने बोला, आप ही सीधे से पापेभ्यो पापकृतम, पापकृत पापकृतर पापकृतम, ये तीन प्रत्यय व्याकरण में होता है। व्याकरण में तीन प्रत्यय होता है, पापकृत पाप करने वाला, पापकृत तरह उससे ज्यादा पाप करने वाला, पापकृत तमह। जैसे आप लोगों को यहाँ है ना, इंग्लिश में भी है ना ऐसे शब्द, क्या तो गुड बेटर बेस्ट अच्छा के लिए है, मंद के लिए क्या है? हाँ होता है कि नहीं, बेट वर्स्ट बस, हाँ हो गया ना, तीसरा नंबर का है। हाँ गुड बेटर बेस्ट हुआ अच्छा के लिए, पुण्य पुण्यात्मा, पुण्य न पुण्यम कर्म नहीं थी, पापे न पापम लोकम नहीं थी, आने बात। तो तीन नंबर के जो पापी है, तीसरा नंबर का डरना नहीं, हमारे नौका में बैठ जा। कौन सा नौका? ज्ञान रूपी नौका। सर्वम ज्ञान प्लवे ने भी ब्रिजिनम संतरिष्यसी, ब्रिजिनम पापम तरिष्यसी, तर जाएगा कब? ज्ञान रूपी नौका में बैठेगा तो। सर्वम ज्ञान प्लवे ने भी ब्रिजिनम पापम संतरिष्य, सम्यक तर जाएगा। तो मतलब है भगवान कहते, मैं ज्ञान रूपी नौका संसार में छोड़ा हूं, इस ज्ञान रूपी नौका में जो भी बैठ जाएगा वो पाप रूपी संसार रूपी, हाँ इसीलिए विवेक सुरामणि में है शंकराचार्य लिखा है, क्या पापी लोग जो है ना संसारी लोग प्रार्थना करते गुरु के पास जाकर, कथम तरेयम भव सिंधु मेतम कावा गतिर में कथम अस्थि उपाय जाने न किंचित कृपया भवम हो संसार सिंधु स्तरण अस्थि उपाय। हे गुरु जी बताओ, कथम तरेयम भव सिंधु मेतम, एतम भव सिंधुम संसार को क्या बोलते हैं? सागर, संसार सागर, भव सागर, भव सिंधु, भव कानन, महाकानन, संसार कानन, इसका बहुत से नाम है। तो शिष्य कहते, कथम तरेयम भव सिंधु मेतम, हे गुरु जी ये संसार सागर को मैं कैसे पार जाऊं? जाने न किंचित, मुझे कुछ भी पता नहीं, इस संसार सागर से तैरने का रास्ता क्या है कुछ भी पता नहीं, कैसे मैं संसार सागर से पार जाऊंगा? जाने न किंचित कृपया अवमान भो, कृपा करके मेरी की रक्षा कीजिए। गुरु जी क्या होता है, मां भिष्ट विद्वान तव नास्ति अपाय, आश्वासन देते निर्भय बना देते हैं गुरु जी, मत डर, भयभीत मत होना। मां भिष्ट विद्वान तव नास्ति अपाय, तेरा नाश नहीं होगा, संसार सिंधु स्तरण अस्ति उपाय, संसार सागर से पार करने के उपाय है, साधन है। जिन्हें भी जाता है जतैश्य पारम, जति लोग जिस रास्ता से गया वो रास्ता मैं तेरे को बताऊंगा, तू भी पार चले जाएगा। देखा, तो पार जाने का रास्ता क्या है? भव सिंधु।

करने का रास्ता क्या है? संसार कारण को पार करने का क्या है? ज्ञान रूपिनु का हाँ, कर्म भी साधन है। कर्म साधन है चित्त शुद्धि के लिए। चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। योग है, कर्म है, ये सब अंतकरण की शुद्धि के लिए। चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। वस्तु शुद्धि विचार है ना, तत्व ज्ञान होगा विचार से, और कोई रास्ता नहीं है, याद रखना ना। तो वेदांत में श्रवण प्रधान है, श्रवण प्रधान। वेदांत में सुना सुना इसीलिए पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है, परोक्ष ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिका पूर्वकम बुद्धि पूर्वम कृतम पापम कृष्णम दहति बन्निवत। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, ये जो ज्ञान की बात सुनते हो, रोज सुनते हो, ये ब्रह्म है, कुटस्थ है, साक्षी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, तत्त्वमसि महावाक्य जो सुनते हो, इसका क्या फल है? ये परोक्ष ज्ञान, अस्ति ब्रह्म इति परोक्ष ज्ञानम एतत्। ब्रह्म है ये जो हम लोग चिल्लाते हैं ना, इसका नाम परोक्ष ज्ञान तुम रोज सुनते हो। अस्ति ब्रह्म इति सिद्ध ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम एतत्, ये परोक्ष ज्ञान। अब तुम किसी महापुरुष से सुना, अपने गुरु से सुना, किसी संतों से सुना, तो सुनने का फल क्या है? ब्रह्म विज्ञानम बुद्धि पूर्वम कृतम पापम, जान बुझ करके तुमने जो पाप किया, तमाम पापों को जला करके भस्म कर देगा, याद रखना। तो कहते हम इतना दिन सुनते पाप जलाता है कि नहीं जलाता, तुमको क्या मालूम जलाया कि नहीं जलाया? अगर नहीं जला तुम यहां नहीं आते, यहां आते हो इसीलिए जलाया है, आनी बात शब्द ज्ञान होते ना। हमारे एक न्याय दर्शनकार था बंगाल का, गदाधर भट्टाचार्य, अचिंत्य शब्द शक्ति ही, शब्द के अंदर शक्ति है कि वो तू शक्ति को विषय में तुम विचार नहीं कर सकते हो। अचिंत्य है, इसका चिंतन का विषय नहीं है, शब्द के अंदर शक्ति है। ये जो शब्द है ना, ये शब्द सामान्य शब्द नहीं है, एटम बम है, एटम बम। ये एटम बम है, भीतर जला कर जा करके अपने पापों को, दुष्ट कर्मों को, अनंत कर्मों को जला करके भस्म करता, समझेंगे नहीं? ये वेदांत वाक्य सामान्य वाक्य नहीं समझना, सुनने के लिए भी समझना। जन्मांतरीय पुण्य उदय हुआ हो तब सुनने को मिलता है, इसीलिए स्वामी जी कहते देखो शब्द के अंदर से शक्ति है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए प्रत्यक्ष सिद्ध है। यदि आपके स्तुति करे कोई तो आपको मन कैसा हो जाता है? कान के देखो शब्द तो हमारे मुंह में है, आपके कान में पड़ा, कान से आपके भीतर गया, भीतर गए मन रूपी कमल को खिला दिया कि नहीं? यदि आपकी स्तुति किसने किया तो आपका चित्त कैसा हो जाता है? खिल जाता कि नहीं? तो यदि किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपकी गाली दी, तो आपका चित्त कैसा हो जाएगा? गाली तो हमारे मुंह में है, निंदा हमारे मुंह में है, आपका चित्त क्यों सिकुड़ गया, मुरझा गया? चित्त रूपी कमल, माने रूपी कमल क्यों मुरझा गया, ये बताओ। क्यों? शब्द तो हमारे मुंह में है, आपका चित्त क्यों बिगड़ गया? क्योंकि वो शब्द को आपने मान लिया कि मेरे लिए बोल रहा है। दस आदमी के बीच में एक आदमी का चित्त मुरझा गया, वो शब्द के साथ उसका संबंध हुआ, आने बात। शब्द आकाश का गुण है,
आकाश का गुण होने पर भी जो जिस शब्द के साथ संबंध बना रखा है ना, उसके शब्द को विक्षिप्त अथवा प्रफुल्लित करेगा, सबका नहीं करेगा। आनी बात, अब जब ये शब्द हमारे मुंह से निकाल करके आपके कान के द्वारा क्यों कर्ण सस्कुली अवच्छिन्नम नभः, आकाश शब्द आकाश का गुण है, आकाश हुआ तुम्हारे कान के द्वारा तुम्हारा हृदय आकाश में गया और तुम्हारे हृदय आकाश में जाकर तुम्हारे हृदय रूपी कमल को खिला दिया था, मुरझा कर दिया है, इसके मतलब क्या है? इस शब्द के अंदर शक्ति है। यदि आपका हृदय कमल मुरझा गया हो तो खुल गया खिल गया हो कमल, तो कैसे मालूम पड़े? तो मुख कमल खिल जाएगा, हृदय कमल खिलने से मुख कमल खिल जाएगा, प्रसन्नता हो गई। तो तुम क्या करोगे? आपने बत्तीसी देखा होगा हमको, और हम भी आपने बत्तीसी आपको देखा, ही आई आई आई आई, सज्जन से सज्जन मिले तो क्या होगा? 64 के लिए, 10 से 10, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले खिल जाए 7 करोड़, 4 मिले दो दो दो मित्र है तो ये दुआ किधर होगा? दुआ के बाद 4 हो गया, 4 मिले 64 खिले, 64 किधर आए? डॉक्टर के पास होगा। चार मिले 64 खिले, 20 रहे करज और हाथ जोड़ करके एक दूसरे के स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ करके एक दूसरे का स्वागत कर दे, सज्जन से सज्जन मिले खिले 64 करोड़। ये रोए रोए 64 करोड़, खिल जाए 64 करोड़। तो कहने का मतलब ऐसा हुआ क्या? एक शब्द से हुआ, और 64 करोड़ मुरझा जाए तो किससे? कोई शब्द से आने बात। तो शब्द के अंदर असीमित शक्ति है। ये वेदांत वाक्य जो श्रवण करता था तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य जाता है, आगे नहीं 4 सूत्र याद करा दिया था, याद है कि नहीं? याद नहीं है? नहीं, वेदांत ब्रह्म सूत्र का जो 4 सूत्र चतुर्सूत्र याद कराया था, और अपना हाँ शास्त्र नेत्वात् जन्माद्य जाता है तत्व समन्वय याद, हाँ इतना भी याद नहीं है? तो इतना याद किया पर सब याद करा करके दिया था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

ఆచార్య శంకర్ గురు చరణాంబుజ, గురు చరణ కమల్ కు ఆశ్రయ కర్కే నిర్భర్ హో జావ్. నిర్భర్ అగర్ ఆప్ గురు చరణ మే హోతే హై, గురుదేవ్ మే హోతే హై, తో ఆప్ నిర్భయ కు ప్రాప్త కర్ సక్తే హై. ఐసా తో కోయి వ్యక్తి హో జీవన్ మే జిన్కే పాస్ ఆప్ పూర్ణ రూప్ సే खुल सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, बता सकते हैं. हमारे जीवन में जो भी न्यूनता है उसको ऐसा कोई सत्ता हो, व्यक्ति हो, जिनके पास हम रख सकते हैं. और जिस दिन हम उस प्रकार से व्यक्तित्व को अर्पण कर सकते हैं जीवन को, तो वो जो गुरु है जिसको हमने चयन किया बनाया, उनके द्वारा ही इस जीवन के परम रहस्य को प्राप्त कर सकते हैं. उस दिन शंकर जयंती के दिन वही विचार हम लोगों ने किया कि बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बहुत विद्या एजुकेशन की जरूरत नहीं है. अगर जीवन में बहुत आवश्यक और जरूरी है तो एक समर्पण. नारायण, कई बार लगता है कि शायद पढ़ करके जीवन में जो सरलता वो हमने गवा दी है, अध्ययन करके और डिग्रियों के द्वारा जो सरलता, ऋजुता, जो समर्पण की एक संभावना वो शायद हमने गवा दी है. और जिनके जीवन में वो नहीं है, डिग्री नहीं है, अध्ययन नहीं है, परंतु उनके जीवन में एक समर्पण है, एक त्याग है, एक अर्पण है, वो जीवन बड़ा मधुमय हो जाता है. जितने भी आचार्य हुए हमारे, चाहे तुकाराम, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, आनंदमयी मां, वर्तमान में आनंदमयी मां, रामकृष्ण, विवेकानंद, विवेकानंद जी को तो फिर भी पाश्चात्य ज्ञान थे, रामकृष्ण कौन से ज्ञान में, वो सेगांव के महाराज जी कौन से विद्वान थे, कौन सी डिग्री थी उनके, परंतु उन्होंने जीवन में प्राप्त कर लिया. क्यों? क्योंकि किसी के पास वो खुद को अर्पण कर दिए. इसलिए भगवत भक्तजन, अध्ययन अध्यापन सब ठीक है, अगर जीवन में समर्पण हो तो. अगर समर्पण ही नहीं है तो जीवन, आप कितना भी डिग्री लेकर के चले, उस डिग्री के भार से आप बोझिल होते गए, परंतु जीवन में जो हल्का होना था, ताप रहित होना था, व्यथा रहित बनना था, वो नहीं बन पाए. इसलिए व्यक्ति जीवन में ऐसा कोई व्यक्तित्व के पास अर्पण करे कि सारा ईगो, सारा अहम जो है एक तरफ रख करके उस गुरु के चरणों में खुद को सौंप दे, अर्पण कर दे. और जिस दिन इस प्रकार से अर्पण कर सकते हैं, उनके पूरा दायित्व जो है गुरु ले लेते हैं. इसलिए आचार्य शंकर बारंबार कह रहे हैं कि बस चाहे वो चांडाल क्यों ना हो, अगर उनके प्रज्ञा उस चैतन्य में है, दृढ़ प्रज्ञा वाला है, तो वो चांडाल क्यों ना हो, मेरे गुरु है. इसलिए भगवत भक्तजन टीकाकार लिखते हैं, गुरु की महिमा आचार्य शंकर के जीवन में एक अमौलिक तत्व है. अध्यात्म जीवन में गुरु की आवश्यकता है. गुरुम तम ददर्श, आनंद गिरी जी इस श्लोक के व्याख्यान में, टीका में लिखते हैं, गुरु ही वो तत्व को दिखला सकते हैं. इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता. ये जो उस दिन हमने बताया, मई एवं मना याधत्सो भगवान कृष्ण के वाणी को, तो ये हम भी चाहते कि हमारा मन और बुद्धि अर्पण हो, परंतु कैसे अर्पण हो ये कौन बतलाने वाला है? एकमात्र गुरु है जो अपने जीवन में जो भी त्रुटि है उसको दूर करते हुए उस परम तत्व को
अर्पण करने की विधि को सिखलाते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन अध्यात्म जीवन में गुरु की एक महिमा है। आचार्य शंकर के जीवन में भी जैसे वो गुरु के प्रति समर्पित थे, उसी प्रकार उनके जीवन में तोटक नाम के जो शिष्य हुए, तोटकाचार्य, उस दिन जो स्तुति हम लोगों ने सब मिलकर के पढ़ा, उनके जीवन में भी हमने वही देखा। कुछ भी नहीं है, परंतु गुरु कृपा के द्वारा वो शास्त्र के निर्यास को प्राप्त किया, और वो स्तुति के द्वारा, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो स्तुति के द्वारा उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन, जब हमने गुरु बनाया किसी को, उस अस्तित्व के प्रति किसी भी प्रकार के संशय न रखो। कई बार ऐसा लगता है कि उनके व्यवहार, उनके आचार देख करके लगता है कि कैसा लग रहा है, परंतु वो हम निर्णय नहीं कर सकते कि उनके आचार आचरण कैसा है। दुर्वासा मुनि को देखते हैं तो कितना क्रोधा आविष्ट है चित्त उनके, परंतु क्या वो सचमुच उस क्रोध से युक्त थे, अथवा किसी और के लिए क्रोध को एक अवलंबन बनाए रखे थे। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में कभी भी गुरु अगर किसी को अपने बनाया, तो उस गुरुदेव के प्रति मन में किसी भी प्रकार के संशय न रखे, गुरु के प्रदत्त मंत्र पर विश्वास करके नित्य निरंतर उस देव के आराधना करें। गुरु वो है जो आपके अतीन्द्रिय अस्तित्व से परिचय करा देते हैं, उस ईश्वर तत्व तक पहुंचने का मार्ग बतला देते हैं, चलना आपको है। इसलिए कई बार हम सोचते गुरु कर लिए और न तो मंत्र की चैंटिंग की जरूरत है, न साधना की जरूरत है, न संशोधन की जरूरत है। भगवत भक्तजन, गुरु की आवश्यकता केवल मात्र उस तत्व से, उस चैतन्य से, उस भगवान से परिचय कराना, परंतु परिचय कराने के बाद उस भगवान तक पहुंचना तो आपको है। इसीलिए पथ प्रदर्शक के रूप में गुरु को निर्णय देते हैं, निश्चय करते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन जीवन में ऐसा एक गुरु आवश्यक है जो हमारे प्रत्येक जीवन में आध्यात्मिक विकास करना जो चाहते हैं उनके लिए जरूरी है। और जिस दिन हम गुरु को ग्रहण करते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को अनुसरण करते हैं साधना के लिए, उस दिन से हमारा आध्यात्म जीवन का शुरुआत होता है। इसलिए जीवन में गुरु तत्व की आवश्यकता है। भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी उसी को कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी जोनी में क्यों ना हो, अगर चैतन्य प्रज्ञा ज्ञान वो है उनमें, तो वो हमारे गुरु है। अब गुरु कौन ज्ञान से युक्त है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणिम, ये जो शास्त्र वचन है, इस पर आनंद गिरि जी कुछ प्रकाश देते हैं, कल उस पर विचार करेंगे।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।

0: बाधिता शक्तिः इत्यादिकं भवति. तत्र सामर्थ्यम् उत्पाद्यते, उत्पाद्यमानं सामर्थ्यं स्वाभाविक आधेयशक्ति आधीयमाना शक्तिः. आधीयते इत्युक्ते कोण्डुवर्धनर्थं तद् अदृष्टमपि आधेयशक्तिः इत्यनेन मीमांसकैः व्यवह्रियते. व्रीह्यादौ प्रोक्षणेन अदृष्टं जायते इति, व्रीह्यादौ प्रोक्षणेन अदृष्टं जायते. इदम् अदृष्टं पूर्वं नास्ति नासीत्, तर्हि प्रोक्षणेन उत्पन्नम् अदृष्टं, तद् आधेये अदुरु शक्ति अदु कुरु सामर्थ्यं कडकिरुद् अन्त प्रोक्षणेन जायमानम् अदृष्टं वर्तते चेदेव तस्य अग्रे उपयोगः. अन्यथा तस्य इप इन्द संस्कारङ्गळं सोडतु इल्लया, एतनेव संस्कारङ्गळ बहुविधा संस्काराः क्रियन्ते. प्रथमतः எந்த கர்மா பண்றதா இருந்தாலும் அந்தந்த திரவியங்களுக்கு சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் தேன கஷ்டன சக்தி விசேஷா தத்ர உற்பத்தி அதிருஷ்ட ரூபா. இதன் சர்வம் ஆதே சக்தி இது மீமாம்சகேன உச்சதே. தது ரெண்டு விதமான சக்தி, துவயமபி உற்பத்தியமானமேவ, சகஜ சக்தியா இருக்கட்டும் ஆதே சக்தியா இருக்கட்டும், தது இதானி வன்னவு சகஜ சக்தி உச்சதே. பரந்து ததபி உற்பத்தியதே கலு, இது வன்னீர் உற்பத்தியதே, வன்னேரேவ உற்பத்திரஸ்தி. அஸ்மாகம் இதானி அஸ்மாகமபி ஆத்மனி அநேகே संस्काराः क्रियन्ते, तेन शक्तयः उत्पद्यन्ते, सा सर्वापि आधेयशक्तिः. कर्मानुष्ठानेन आत्मनि अदृष्टं जायते इत्युक्ते आधेयशक्तिः सा. अन्त अदृष्टतुक् आधेयशक्तिः मीमांसकाल पेरुवचिका. षोडश संस्काराः क्रियन्ते, तेन आत्मा संस्क्रियते इति. इदेपडि वन्दना आधेयशक्तिः इति वन्द वन्दिरुककुलीय शक्ति तिरुपि पोयिडुम्. इदं सर्वं मया प्रसङ्गात् उक्तं तावदेव, अयम् अनेके विषयाः अवगन्तव्याः इति कृत्वा अत्र अपेक्षा नास्ति. अस्य परमात्मनः या शक्तिः सा आधेयशक्तिर्नास्ति, स्वाभाविकी शक्तिः. तत्र स्वाभाविकी शक्तिः इति वक्तुं शक्यते, दोषो नास्ति. परन्तु स्वाभाविकी शक्तिः अपि जन्या भवति वह्नेः, कुतः वह्निरेव स्वाभाविकी नास्ति खलु. वह्नेर्जन्यत्वात् वह्नेर्शक्तिरपि जन्या भवति, यद्यपि सा स्वाभाविकी परन्तु जन्या भवति, कुतः वह्नेः जन्यत्वात्. अत्र तु परमात्मनः शक्तिः स्वाभाविकी परन्तु न जन्या, कुतः परमात्मनः अजन्यत्वात्. परमात्मनः अजत्वात् तच्छक्तिरपि अजा. अग्रे ज्ञानबलक्रिया च स्वाभाविकं ज्ञानं, स्वाभाविकं बलं, स्वाभाविकी क्रिया वर्तते. सर्वम् इच्छा ज्ञानं कृतिः सर्वं स्वाभाविकमस्ति.
1: इत्यादि चिदचित् प्रपञ्चरूप शक्तिविशिष्टत्वं स्वाभाविकमेव ब्रह्मणः.
0: चिदचित् प्रपञ्चरूप शक्तिविशिष्टत्वं इन्द विशिष्टत्वं, तद् विशिष्टत्वमपि स्वाभाविकमेव ब्रह्मणः.
1: कदाचिदपि न निर्विशेषत्वम् इत्यनेन
0: अनेन किं सूचितम्? अद्वैतमतं उत्कृतलै निर्विशेषत्वं कदापि नेष्यते अस्माभिः इति सिद्धम्. चिदचित् प्रपञ्च विशिष्टत्वमेव परमात्मनः स्वरूपम् इति स्वीक्रियते.
1: अपरिच्छिन्न शक्तिविशिष्टत्वम्
0: तत्र एकं क्षणं. चिदचित् प्रपञ्चरूपशक्ति इल्लया, प्रपञ्च अनुकूलशक्ति शृणम्. शक्तेः परिणामः इति कृत्वा परिणामपरिणामिनोः अभेदम् आलोच्य एवं व्यवहारः कृतः. चिदचित् प्रपञ्च एव शक्तिः इत्युक्ते तत्कथं भोः? प्रपञ्चः शक्तेः कार्यं खलु, अतः तर्हि प्रपञ्च अनुकूलशक्तिः इति लेखनीयमासीत् इति अस्माकं शङ्का भवति. सत्यं, परन्तु एवमपि लिखितुं शक्यते. परिणामपरिणामिनोः अभेदम् आलोच्य तथा लिखितम् इति मन्तव्यम्. परिणामः सर्वोऽपि प्रपञ्चः इति अस्ति.
1: सा शक्तिः चिदेव, शक्तिः चित्,
0: शक्तिः चिद्रूपा इत्यपि अस्ति. परन्तु तत्र अचिदात्मकत्वमादाय परिणामः वक्तव्यः. तद्विषये किञ्चित् शास्त्रविचारः अग्रे भविष्यति. कथं परिणामः इत्यादिकं न उपपादितम् एतावता, तत् पश्यामः, अग्रे आगमिष्यति.
1: अपरिच्छिन्न शक्तिविशिष्टत्वम् अनन्तशक्ति,
0: अद् रण्डुं शेर्त चोलनं पुलर्क. अचिदंशोऽपि कश्चन अपेक्षते तत्र
1: माया
0: परिणामार्थं मायाया. अद्वैतरीत्या तु अस्माकं जडरूपा एव मायायाः सर्वथा चैतन्यं नेष्यते. मायायाः जडशक्तिरेव सा. परमात्मनः शक्तिः इत्युच्यते, परन्तु जडात्मिका एव. आकरेषु सर्वं एल्लामे तेरियो, अद् नम्मळे अद् अन्दन्द दर्शनत्तुक्कु यद् शरिया इरुक्कुमो अप्पडि अद् सेट्टिंग् पण्णनुम. अद् इन्द ललितासहस्रनाम स्तोत्रं पर चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर् जडात्मिका, रेण्डुमे सेर्त्तु पोट्टिरुक्क. சிச்சக்தின்னு இருக்கு, ஜடசக்தின்னு இருக்கு. என்ன பண்றது? சிச்சக்தி சேதனா ரூபா.

0: జడశక్తి జడాత్మిక దృఢం యొక్క
1: అపరిచ్ఛిన్న శక్తి విశిష్టత్వం అనంత శక్తిత్వం
0: அத இப்ப ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் இந்த சக்தியே ஒரு ஸ்திரீ ரூபமாக வர்ணனம் பண்ணி உபாசனைக்காக அப்படி பண்றது அது இருக்கட்டும், ஒரு தேவியாக வர்ணனம் பண்றது அதுன்னு வேற என்ன இதெல்லாம் அவ்வளவுதான். இந்த ஒரு சக்தியே ஒரு ஸ்திரீ ரூபேண பிரகல்பிய ஆராதனார்த்தம் வர்ணியது ஸ்தோத்ரேஷு, அதான் விவிதம் வர்ணனம் பவதி. அகே அகிரே பட்டாமல் அது சமாபனியம் இது அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்துவம். அபரிச்சின்னா இயம் சக்தி, அதுக்கு பரிச்சேதம் கிடையாது. பரிச்சேதம்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது ஒண்ணுமே கிடையாது, இதனாலயும் பரிச்சின்னம் இல்லை. அத்தக அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்துவம் அனந்த சக்தி மற்றும் அனந்த சக்தி. அனந்தம்னா அனந்தம்னா அசங்கியாகம் இத்தியர்த்தே பிரயோகம் அஸ்தி அனந்த சப்தசிய, எவ்வளவு சொல்ல முடியாது. அப்ப அனந்தம் இது பத பிரயோகம் அஸ்தி, பரந்து அத்த தஸ்மின் அர்த்தேன அந்தோ நாம பரிச்சேத நவித்யதே அந்தஹ யஸ்ய சஹ அனந்தஹ அபரிச்சின்னம் இத்யர்த்தே. சத்யம் ஞானம் அனந்தம் ப்ரஹ்ம இத்யத்ராபி ததேவ. அன்யதா அன்யதா ஏகத்வம் அநேகானி ப்ரஹ்மாணி இது கலு உத்தம் ஸ்யாத். அனந்தா அனந்தத்வம் நாம அசங்கியாகத்வம் இத்யர்த்தஸ்சேத் ஏகம் ப்ரஹ்ம இது தியக்தம் ஸ்யாத். அதஹ ததஹ ஸஹ அர்த்தா தத்ர நாஸ்தி.
1: பரந்து அத்ரது சக்திரேவ ததஹ உத்தம் ஸ்யாத்
0: பதாந்திரேன உக்தம் கலு தத்ராபி வியாக்யானம் ததா நாபேக்ஷதே ஏனா அத்ர விசித்ர சப்தேன தத்ர அநேகத்வம் அநேகத்வம் யதி விவக்ஷிதம் ததானீம் அபி விசித்ர இதி உக்தம் கலு
2: தத்ர
0: அனந்தாபிரேவ சக்திபிஹி ஜகதஃ ஜனகம் சாஸகம் ச ப்ரஹ்ம பவதி சாசகஞ்ச பிரம்ம பவதி சிருஷ்டி கர்த்த பரிபாலன கர்த்த ச பவதி. சாசகம் பரிபாலன கர்த்த சாசகம் சாசகா இல்ல சாசகம் பிரம்மா நபும்சகலிங்கம். அதனால ததாஹி
1: ததாஹி ஸ்ரூயதே ஏக ஏவ ருத்ரோ ந த்விதீயாய தஸ்துஹ ய இமா லோக
0: தஸ்துஹ ந சாந்தச பிரயோகம் தஸ்தௌ ந வரணம் தஸ்துஹ இதி சாந்தசம் ரூபம் தப்பு இல்ல பகுவச்சனம் அந்த பதம் சரியா தான் இருக்கானா அங்க சரியா வராது தஸ்தௌ இது ஏகவச்சனம்
1: தஸ்தூ
0: பகுவச்சனம் ஏக ஏவ ருத்ரோ ஏகவச்சனம் அதெல்லாம் தஸ்துஹு
1: இமான் லோகா நீஷதா ஈஷினிபிஹி எஸ் சர்வான் லோகா நீஷதா
2: உபனிஷத்
0: அதர்வசிராஹ இது உபனிஷத் அஸ்தி, அதுல இருந்து நிறைய எடுத்திருக்கா இதுல திரஷ்டவியம் தத்ரஸ்யா ஈஷனீயுஹு ஜனனீயுஹு துரியம் இமம் லோகம் ஈஷதே ஈஷனீயுஹு ஜனனீயுஹு. ஈஷனீயுஹு இது சுபந்த பதம், அது திகந்தம் இல்ல. ஈஷனீயுஹு அஸ்தி இது பதி பதம் அத்தை வியாக்கியானம் கிருதம் அஸ்தி வியாக்கியாக்காரை ஆச்சாரியை. இமம் லோகம் சுத்தம் சுத்தமிஸ்ர அசுத்தாத்மரூபம் லோகத்ரயம் துரியம் உக்தலோகத்ரயாபேட்சையா சதுர்த்தம் லோகத்ரயம் இத்தியாபி கிஞ்சித் வியாக்கியானம் கிருதம். இமம் லோகம் சுத்த மிஸ்ர அசுத்த அத்வரூபம் லோகத்ரயம் சுத்தவும் மிஸ்ரவும் அசுத்தவுமா இருக்கக்கூடிய லோகத்ரயம் ததோபேட்சையா அந்நத துரியம் உக்தலோகத்ரயாபேட்சையா சதுர்த்தம் அத்வநாம் அத்வபதே ஸ்ரேஷ்டஸ்ய அத்வநஹ பாரமசீயே பாரமசீயேதி சர்வாதிக ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯತ್ವೇನ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧಂ ಅಧ್ವನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಯ ಶುದ್ಧಾಧ್ವನಃ ಅಪ್ಯುಪರಿ ಸ್ಥಿತಂ ಪರಮಾಕಾಶ ರೂಪಂ ಪರಮಪದಂಚ ಇದು ಅಸ್ತು ಈಶದೆ ಈಷ್ಟೇ ಈಶನೀಯುಃ ಇದು ಪದಂ ಗೃಹೀತಮಸ್ತಿ ಇತೈಃ ಈಶನೀಯುಃ ಈಶನಾನುಕೂಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಜನನೀಯುಃ ಜನನಾನುಕೂಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಈಶನಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಜನನಂ ಜನೈತೃತ್ವಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕೃತಮಸ್ತಿ ತರ್ಹಿ ತತ್ ಪದಂ ವರ್ತತೆ ಇತ್ಯೇವ ಜ್ಞಾಯತೆ ಅಸ್ತು ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾಮಿಕರದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಎಡ್ತಿರ್ಕಾರ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ
1: ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನಃ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ
0: ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ ಇತಿ ತು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಇತ್ಯರ್ಥೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತಿ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಕುತಃ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರ ಸ್ವರೂಪೇಣ ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ನೇಷ್ಯತೆ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಅತಃ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರಾ ಪರಿಣಾಮ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ತದುಕ್ತಂ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಮಾನ ಪ್ರಪಂಚಂ ಪ್ರಪಂಚವು ಬಹು ವಿಸ್ತೃತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಃ ವರ್ತತೆ ಅದು ಅದು ತತ್ ತತ್ ಪ್ರತಿ ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಿದ್ಧಿ
1: ಬ್ರಹ್ಮಣ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣತ್ವಂ ಸಮವಾಯಿ ಸಮವೇತತ್ವ ಸಂಬಂಧ ಇದು
0: ಸಮವಾಯಿನೀಕ ಸಂಶಕ್ತಿ ಭವತಿ ಸಮವೇತಾ ಖಲು ತರ್ಹಿ ಬೋಧೀಯ ಭಾಷೆಯ ಉಚ್ಯತೆ ಚೇತ್ ತಥಾ ಸಮವೇತಾ ಇತಿ ಖಲು ವಕ್ತವ್ಯಂ ಅಸ್ತು ತತ್ರ ಸಮವೇತಂ ಸಮವಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಾಃ ವಸ್ತುಗತ್ಯ ಕದಾ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧತೆ ವೆಚ್ಚಂತ ನಮ್ಮ ವೇಳೆ ಪಂಡ್ರದಂತ ಎಡಕಣ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧತೆ ಒತ್ತುಕಿರಲಿಲ್ಲ ತರ್ಹಿ
1: ಶಕ್ತಿ ತರ್ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವಂ ತತ್ವಂ ಕೇನ ಸಂಬಂಧ
0: ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಇತಿ ವದಂತಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತತ್ ಸಮವಾಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಯೋಃ ಕೋ ಭೇದಃ ಇತಿ ಅನಂತರಂ ವದಾಮಿ
1: ಇದನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ
0: ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಂ ಸತ್ಯಂ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಂ ಮಟ್ಟುಮಿಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಂ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತೃತ್ವೇನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಂ ಉಪಾದಾನತ್ವಂ ಚ ಅಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಂ ಚ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ವೇನ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಂ ಭೇದ ಸಹಿಷ್ಣು ಅಭೇದಸ್ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮತೋಃ ಅಭೇದ ವಕ್ತವ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದ ಸುಲಭ್ಯದ ಅತಃ ಭೇದ ಸಹಿಷ್ಣು ಅಭೇದ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮತೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದ ಸುಲಭ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ತಸ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಖಲು ಮಮ ಏತಾದೃಶ ವಿಷಯ ಶಕ್ತಿರಸ್ತಿ ಮಮ ಶಕ್ತಿ ಯದೋರ್ಭೇದಂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲಯಾ ಅನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ವೇರ ಪಾಕ ಮುಡಿಯದ ಅತಃ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮತೋಃ ಅಭೇದ ಇದೆ ನೈಯಾಯಿಕೈ ತತ್ರ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧಸ್ಯ ಸ್ಥಳಾನಿ ಯಾನಿ ಉಚ್ಯಂತೆ ತತ್ರ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮೇವ ಗುಣಗುಣಿನೋಃ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಕ್ರಿಯಾವತೋಃ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥತೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನೈಯಾಯಿಕಾಳು ಸಮವಾಯತ್ವಕ್ಕೆ ಎಂತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾರೋ ಅಂದ ಇಡದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಎಂದು ಸುಳ್ಳ ಅದರ್ಥ ಮುಕ್ತ
1: ಅಷ್ಟಾಭಿಧಾನಾಧಿಕರಣಮಿತಿ ಭವ ಸರ್ವೇ
0: ಇತಃಪರಂ ಅಷ್ಟಾಭಿಧಾನಾಧಿಕರಣಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ತಾವದ ಅಧಿಕರಣಂ ಸಮಾಪ್ಯತೆ ಎಟ್ಟು ಪೇರ್ ಸುನ್ನರ್ಲಿಯ ತಸ್ಯ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣಂ ಕ್ರಿಯತೆ ತಾವದ ಅಧಿಕರಣಂ ಸಮಾಪ್ತ
3: ಅಪಾನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಶೈವಂ ಅಟ್ ಶೈವಂ ಡಾಟ್ ಆರ್ಗ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಸರ್ವೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೂವ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ therefore please contact us immediately at shaivam@shaivam.org thank you om namah shivaya
4: om ramsarathena parihinjame sidayam parihinjame satyam dasena parihinjame ratraha adyavadaram pravaritra satyam arjame avadana vichera sadayam parihinjame అగ్నినా నిత్యం ప్రాదస్థావోరాత్రే భవత్యోకస్నాపర్యంతోత్రేతం విగతోహోత్రం జుక్వే ప్రభుత్వం వేద
3: అపాన్ హియరింగ్ దిస్ అనౌన్స్మెంట్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్ ఇమీడియట్లీ అట్ శైవం అట్ శైవం డాట్ ఆర్గ్ This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு shaivam.org ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் shaivam.org. ஓம் நம சிவாய.
6: ஓம் நம சிவாய. You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
3: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. ओम नमः शिवाय.
7: तो वे ढूंढते ढूंढते महर्षि कपिल के आश्रम में जाते हैं. वहां एक खंभे से बंधे हुए अश्व को देखकर इन्हें बहुत क्रोध आता है और महर्षि के आश्रम में उत्पात शुरू कर देते हैं. इधर महर्षि समाधि में बैठे हुए हैं. उत्पात से उनकी समाधि भंग हो जाती है. उन्हें बड़ा क्रोध आता है. उनके क्रोधाग्नि से महाराज सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं. इधर दूत ने महाराज सगर को समाचार सुनाया कि महर्षि कपिल के आश्रम में आपका यज्ञीय अश्व बना हुआ है और महर्षि के कोप से 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए हैं. सगर के दूसरे पुत्र अंशुमान जाते हैं, जाकर महर्षि की प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हमारे भाइयों से भूल हो गई, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए. महर्षि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुम याज्ञीय अश्व को ले जाओ और अपने यज्ञ को संपन्न करो. अंशुमान ने पूछा कि जो हमारे भाई जलकर राख हो गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? महर्षि कहते हैं कि ब्रह्म साप से दग्ध हुए लोगों का उद्धार केवल गंगा ही कर सकती है. तुम भगवती गंगा की तपस्या करो. गंगा प्रसन्न होकर जब धरती पर आएगी तभी तुम्हारे भाइयों का उद्धार होगा. अंशुमान अश्व को ले जाते हैं, याज्ञ कर्म संपन्न करते हैं, तदनंतर तपस्या करने लग जाते हैं. तीन पीढ़ी तपस्या की इसके बाद गंगा का अवतरण होता है. जैसे हम कोई जैसे किसी के दादा दुकान खोले, उसके बाद पिता फैक्ट्री खोलता है और जो पुत्र होता है उस फैक्ट्री के द्वारा संसार में विस्तार करता है. इसी प्रकार से महाराज अंशुमान तपस्या करते करते शरीर पूरा हो गया. उनके पुत्र महाराज दिलीप ने तपस्या की. दिलीप के सुपुत्र जब महाराज भगीरथी ने तपस्या करी तब जाकर भगवती गंगा प्रसन्न होकर दर्शन दिया. गंगा ने कहा तुम वरदान मांग लो. गंगा के कहने से ये पुनः प्रार्थना की कि मां मैं अपने भाइयों को उद्धार के लिए तुम्हें धरती पर आमंत्रित करता हूं। भगवती गंगा ने कहा, मैं तो पृथ्वी पर चलने को राजी हूं, परंतु हमारे वेग को कौन रोकेगा, हमारे प्रवाह को कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी से मंत्रणा करते हैं, मंत्रणा करने के बाद इन्हें मालूम पड़ा कि भगवान शंकर ही केवल गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। दोबारा पुनः हिमालय जाते हैं, वहां एक शिव की पिंडी बना करके भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं। भगवान शिव महाराज भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं, वरम ब्रूही, वरम ऋणिस्व। महाराज भगीरथी हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान शंकर दिव्य मुद्रा में बरहस्त होकर दर्शन दे रहे हैं। महाराज भगीरथी ने कहा कि भगवती गंगा ने कहा है, मैं पृथ्वी लोक पर आने के लिए राजी हूं, परंतु हमारे वेग को कौन संभालेगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवती गंगा के वेग को संभालने के लिए पधारिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कर दिया। इधर प्रसन्न होकर भगीरथी आते हैं, जैसे ही ब्रह्मांड को भेदन करती हुई गंगा जी धरती पर पधारती है, उसी गंगा जी का चित्रण इस 17वें श्लोक में किया गया है कि जो गंगा आकाश को व्याप्त करके रखी है, उस गंगा की शोभा कैसी है। तो जिस प्रकार से जल में सूर्य चंद्र तारा प्रतिबिंबित होते हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है, इस तरह से तारा गण के समुदाय से उनके प्रतिफलन से भगवती गंगा की शोभा उज्जवल फेन के समान बहुत ही सुंदर लग रही है। वही गंगा जब भगवान के सिर में आती है तो वह गंगा जी मानो चमकती हुई एक सुनहरा लकीर के समान भगवान शंकर की जटा में समा जाती है। जटा में भगवान शंकर उसको लपेट लेते हैं। भगवान शंकर में के जटा में जब गिरती है तो प्रीखत लघुदृष्ट शिरसिते, बहुत छोटी सी तारा के समान वह टिमटिमाने लगती है। वही गंगा के द्वारा जिस सागर को कुपित होकर अगस्त ऋषि ने पी लिया था, जो सागर खाली हो गया था, उसी गंगा के प्रवास से पूरा सागर भर जाता है और उस समुद्र के द्वारा ये जगत दीपाकार रूप में परिणत हो जाता है। तव दिव्य अपुह धृत महिमम, आपके महिमा के विषय में क्या कहना, आपकी बड़ी दिव्य महिमा है। यह तो एक ऐतिहासिक पौराणिक तथ्य है। इधर हम विचार करें कि जो ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा का जब अवतरण हुआ, ज्ञान गंगा का अवतरण श्रुति के अनुसार ज्ञानम इच्छित शंकरा, भगवान शंकर से ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। ये सगर जीव ही सगर है, गरेण सहित सगर, गर बोलते हैं जहर को, वासनाओं का जो जहर है जिससे मनुष्य पीड़ित रहता है, यह विद्या कामना वासना ही तो जहर है। इसके साथ यह जीवात्मा पैदा होता है। ये 60,000 पुत्र ये हमारे मन की अनंत वृत्तियां हैं, इन अनंत वृत्तियों से मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं, योगश्चित वृत्ति निरोधः, सारे कृत्यों को के निरोध से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। जो अनादिकाल से जीव और ब्रह्म के बीच में वासनाओं का खाई बना हुआ है, उस खाई को यह वेदांत जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान पाटने का काम करता है। यह जीव ही सगर है कि मन के अनंत वृत्तियां ही 60,000 पुत्र हैं। और जब मनुष्य ऋषि महर्षियों का आश्रय लेता है, सदगुरु का वही कपिल महर्षि है, उनसे प्रेरित होकर के भगवान शंकर से दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। श्रेष्ठाचार्य जी कहते हैं, श्रेष्ठाचार्य जी महाराज का यह कथन है, तत्मस्यादिवाक्योत्थम सम्यक जन मात्रतः अविद्या सहकारेण नासीद अस्ति भविष्यति। तत्मस्यादि से उत्थ जो ज्ञान है, वह ज्ञान अविद्या को समाप्त करके स्वरूप को प्रकाशित करता है। यह जो ज्ञान है, इसी ज्ञान के द्वारा जीव परम शांति को उपलब्ध होता है। दूसरा कोई भी साधन नहीं है जो परम शांति को उपलब्ध करा सके। आगे विचार करते हैं दूसरे श्लोक के ऊपर।
8: रथक्षोणीयन्ता सतधृतिरगिन्द्रो धनुरथो रथांके चंद्रार्को रथचरण पाणीशर इति दिधोस्ते कोयम् त्रिपुण तृणमाडंबर विधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुधिय।
7: रथक छोणी यंता, अब यहां पर ज्ञान गंगा के महिमा को बतला रहे हैं। ज्ञान होने पर क्या होता है? इधर एक बड़ा भारी त्रिपुरासुर है, भोगी और योगी दोनों ही तपस्या करते हैं।
9: भोगी की तपस्या का लक्ष्य होता है शक्ति संचय करके भोग करना, साम्राज्य को बढ़ाना। और योगी तपस्या करता है, वह तपस्या से ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है। जैसे किसी के पास बहुत धन हो, यदि वह सत्संगी है, विवेकी है, ज्ञानी है, तो उस धन का सदुपयोग करता है, सुंदर धर्मशाला बनवाता है, स्कूल बनवाता है, मठ मंदिर संतों के सेवा में लगाता है, और वह उस धन के द्वारा दिवाचन करके परम गति को प्राप्त करता है। और वही धन किसी अविवेकी के पास, नासमझ के पास है, तो वह अय्याशी पूर्वक जीवन बिताता है और भोगे रोग भयम, अनेक प्रकार के रोगों में उसके धन खर्च होते हैं, केस मुकदमे में खर्च होते हैं, जुआ शराब में खर्च होता है, क्लेश में, कलह में, लड़ाई झगड़े में खर्च करता है। कोई दान के लिए आए तो एक कौड़ी नहीं दे पाता है, परंतु ये काले कोट वाले को ये मथाज के दूत है, इनको जो है हमेशा वह अपने धन को उसी में खर्च करता है, अर्थात दुरुपयोग में अपने धन को लगा देता है। एक ही धन है, ज्ञानी सदुपयोग करता है, धन से परमार्थ को सिद्ध करता है, परमार्थ के साधन में लगाता है, और जो अज्ञानी है उस धन के द्वारा अय्याशी पूर्वक जीवन बिताता है। स्वयं वेदव्यास भगवान कहते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहे न। धन ही नहीं, अपने आयु का ज्ञानी सदुपयोग करता है तो अज्ञानी दुरुपयोग करता है, निद्रिया कलहे न। आप लोग भगवान कृपा से मुक्त हैं,
7: चार बजे उठ जाते हैं, उठकर जल्दी स्नान करके नित्य कर्म करके 7 बजे प्रेमपुरी पधार जाते हैं। अन्यथा विवेक न होता तो आप 8 बजे तक सोते और 9 बजे तैयार होके सीधा ऑफिस में दौड़ते। जैसे एक मुमुक्षु तपस्या करता है वैसे एक व्यापारी भी करता है। जो व्यापारी तपस्या करता है उस व्यापारी की तपस्या का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक धन कमाना। व्यापार ही बड़ा भारी कष्ट होता है, पर वो जो कष्ट तपोमय है उसके द्वारा मात्र धन संचय करता, धन भी भोग के लिए, न वह उससे दान करता है न दीन दुखी गरीब की सेवा करता है। तो दोनों में इतना ही फर्क है। इधर यहां पर भी एक बड़ा भारी जो असुर है जिसका नाम है त्रिपुरासुर, त्रिपुरासुर तपस्या करता है और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है। उसके वरदान का एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य वह यह है कि मुझे तीनों लोकों पर शासन करना है। परंतु वह तपस्या करके जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो प्रसन्न कर लेने के बाद ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तू वरदान मांग। तो ब्रह्मा जी से वरदान में वह मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरे किसी से मौत न हो। आसुरी प्रकृति वाले को मौत से बहुत भय लगता है। सबसे पहला उनका मांग होता है अमरता का। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स, अमर बनाना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अमर तो केवल तत्व ज्ञान से हो सकते हैं, क्योंकि जो जन्मता है वह मरता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो मरेगा तो जन्मेगा, जो जन्मता है सो मरता है, इसलिए तू दूसरा वरदान मांग ले। त्रिपुरासुर विचार कर अमर के समान वरदान मांगता है कि आप कृपा से हमें ऐसा 3 महल दीजिए, विमान बनाइए, जो देवताओं से मनुष्यों से असुरों से अभेद हो और उसका भेदन भी हो, तो तीनों एक साथ हो तभी जाके भेदन हो सके। एक लौह में विमान, दूसरा चांदी में, तीसरा स्वर्ण में, 3 विमान वरदान में मांगता है। उस विमान पर सवार होकर त्रिपुरासुर तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देता है। सारे देवता भाग खड़े हुए, कंदराओं में जाकर तपस्या करने लगे। एक छत्र ब्रह्मांड में साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता लोग भग कर कैलाश जाते हैं, भगवान के चरणों में जी कर प्रार्थना करते हैं, महादेव त्राही माम त्राही माम। त्रिपुरासुर पूरे संसार में आतंक मचा दिया है, आप कृपा करके इसका बल कीजिए, इससे हमें निजात दिलाइए। त्रिपुरासुर सबसे पहले देवताओं की, ब्राह्मणों की पूजा बंद करा दी, यज्ञ याग बंद करा दिया और कहा कि मत्तः परतरम को अन्य, मेरे से भिन्न दूसरा कोई नहीं है, मैं ही एक सबकी आत्मा ब्रह्म ईश्वर हूं, मेरे से भिन्न दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। सबको ऐसा उपदेश करके यज्ञ याग सत्कर्म से सबको निवृत्त करा दिया। जब देवताओं ने अपनी पीड़ा महादेव को सुनाई तो महादेव देवताओं को आश्वासन देकर विदा करते हैं और स्वयं ही त्रिपुरासुर के संहार के लिए पधारते हैं। रथ छोड़ी यंता, त्रिपुरासुर के संहार के लिए, क्योंकि उसका विमान कभी भी कहीं भी जाता है, सबसे अभेद है, इसलिए उसके अनुरूप ही एक जो है रथ की तैयारी करते हैं। पृथ्वी को तो रथ बनाया, ब्रह्मा जी सारथी बने, सुमेरु को धनुष बनाया और रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य हुए। रथचरण पाणी जो भगवान विष्णु है वे सर बने। इस प्रकार से त्रिपुरा टू तिनके को भगवान ने आडंबर खेल खेल में ही समाप्त किया। भगवान स्वतंत्र है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी अन्य देवताओं को, पृथ्वी को महत्व देने के लिए, ब्रह्मा जी को, विष्णु को, सूर्य चांद को महत्व देने के लिए ही इस प्रकार से लीला की। जब भगवान अट्टहास किया, उनके अट्टहास से ही तीनों पुर खलक्कत एक हो गए। जैसे एक हो गए वैसे भगवान शंकर ने तत्काल बाण का अनुसंधान किया और उसे विद्ध होकर तीनों पुर में आग लग गई, त्रिपुरासुर का नाश हुआ। या तो एक पौराणिक तथ्य है, आई विचार करते हैं आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर। ये जीव ही त्रिपुरासुर है, ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है यही समझो तीन पूर है, और इसमें जो भोग बुद्धि रखता है वही भोगाभिमान जीव त्रिपुरासुर है, और इसका नाश तभी होता है जब तीनों एक सीधे लाइन में हो, मतलब मनसा वाचा कर्मणा। ये तीन पूर है, कर्मणा अपने शरीर से निष्काम कर्म करें या जो है भगवत भक्ति करें, देवाचरण करें, माता की पार्वती के समान सेवा करें, पितृ देव भव पिता को साक्षात महादेव माने, आचार देव भव गुरु आचार को देवता समझें। इस प्रकार से शरीर के द्वारा क्रिया निष्पन्न करता है। यत् कर्म करो में तत् तद अखिलम शंभु तवाराध, और मन से भी तदनुसार ही स्मरण करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करना, मन से चिंतन करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, प्रवचन करना। जब मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाता है तब जाकर के इस तीनों पूर्व का भगवान शंकर ज्ञान के द्वारा भेदन कर देते हैं। देहत्रय के नाश से ही हमेशा के लिए ये मुक्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक त्रिपुरासुर का रहस्य है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक बड़े भारी करोड़पति थे, उन्होंने एक बड़ा सुंदर धर्मशाला बनवाया, अन क्षेत्र खोले, एक विद्यालय भी खोला, उसमें ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ा करते थे, वेदाध्ययन चलता था। कोई भी दरवाजे पर आता था वह खाली हाथ नहीं लौटता था, यह सनातन धर्म है, अतिथि आए तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, अतिथि देवो भव। यदि अतिथि घर से लौट जाता है तो पापम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति, अतिथि अग्नि रूप से घर में प्रवेश करता है, अतिथि का स्वागत नहीं किया गया तो आपके सुकृत को ले जाता है और दुष्कृत को छोड़कर जाता है। इसलिए अतिथि को देवता मान करके हमेशा सेठ जी पूजा किया करते थे। कुछ काल तक चलता रहा, जैसे ही पिताजी का शरीर छूट गया सेठ जी का, कुछ काल तक बच्चों ने भी चलाया, परंतु कालांतर में बच्चों ने पुनः क्षेत्र बंद कर दिया। धर्मशाला के लिए भी कुछ उसमें भी नियम लगा दिया, रसीद काटना शुरू कर दिया कि एक कमरे का कम से कम 100 रुपया है। एक महात्मा गुजरे जो उसके पिता के गुरु लगते थे, उन्होंने पूछा कि बच्चों तुम्हारे पिता ने इतना सुंदर विद्यालय खोला, धर्मशाला बनाया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु इस धर्मशाले में तुम लोग 100 रुपये की रसीद किस बात की काटते हो, क्या कुछ व्यापार में घाटा तो नहीं लगा? बच्चों ने कहा, महाराज जी आप बात ठीक कहते हैं, कोई हमें व्यापार में घाटा नहीं, व्यापार और पहले से बढ़ गया, पैसे भी काफी हो गए, पर ये 100 रुपया जो हम लोग लेते हैं ना मेंटेनेंस के हैं, क्योंकि 100 रुपया नहीं लेंगे तो मेंटेनेंस कैसे होगा, ये व्यवस्था के लिए है। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पिता एक पैसा नहीं लेते थे, कोई भी आए उसे धर्मशाला में जगह देना, उसका स्वागत करना, उसके भोजन की व्यवस्था करना और सत्संग सुना करते थे। ये भोग वृत्ति का लक्षण है कि जब आदमी के अंदर भोग वृत्ति आती है तो वह अपने पिता पितामह पैतृक के संपत्ति का भी सदुपयोग नहीं करता है, बल्कि उसका भी वह दुरुपयोग करता है, उसमें से भी कुछ कमाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है। यही भोग और योग में अंतर है। इसलिए हमारे जीवन में ये जब तक त्रिपुरासुर रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। त्रिपुरासुर का अर्थ है भोग वृत्ति, और भोग वृत्ति को मिटाने का एक ही रास्ता है कि हम अपने जीवन में विवेक को, ज्ञान को जगह दें। और विवेक ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए कोई न कोई अवलंबन होना चाहिए। जैसे आपको विद्युत को जानना है तो विद्युत को जानने का अवलंबन है, चाहे आप ट्यूबलाइट लाइट से जाने या पंखे से जाने या कूलर से जाने या फ्रिज से जाने, जिससे सारे यंत्र संचालित हो रहे हैं, जिससे दूर दूर तक ध्वनि जा रही है, प्रसारित हो रही, वही विद्युत है। जिससे लाइट प्रकाश कर रही वही विद्युत है, जिससे पंखे चल रहे हैं वही विद्युत शक्ति है। माध्यम अनेक हो सकते हैं परंतु पावर एक है। ऐसे चाहे आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, श्याम सुंदर की उपासना करें, या भगवान शंकर की, या भगवान विष्णु की, या भगवती दुर्गा की, किसी की भी, सुधाया पानम अमितत्व से हेतु हो। सुधा का पान ही अमितत्व का हेतु है। चाहे पात्र सोने का हो, चांदी का हो या लकड़ी का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हमें उपासना करना चाहिए, साधना करना चाहिए, चाहे किसी भी देव का हो। उपासना करने से अंतःकरण निर्मल होता है। ज्ञानम उत्पयते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्म। जब पापीय कर्म उपासना से क्षीण हो जाते हैं तो अपने आप निर्मल अंतःकरण में ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, शेष बात कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
10: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
11: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Karma Shaka, Adhyayam 31.
12: Atha एकत्रिंशोऽध्यायः। ॐ

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: श्रीहिरण्ययः उभयं शृणवच्चर
1: इन्द्रो अर्वाहितं वचः
0: सत्राच्या माघवान्
1: स्वपीतये धियाशवेष्ठ आगमते
0: माहेशरत्पाद्रिवः पराशुल्काय दीयसे न सहस्राय नायुताय वज्रीवो न शताय शतामघ

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

दशबाहुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः विश्वरूपक् स्वयं श्रेष्ठो बलवीरो बलो गणः गणकर्ता।

0: शिवाय नमः सांब शिवाय नमः हरव ओम तत्सत्
1: ओम नमः शिवाय.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: On hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Anaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे और एक नायनार या संत की कहानी, जिनका नाम है अनायार। दक्षिण के तिरुचिरापल्ली के उत्तर का क्षेत्र प्राचीन काल में मलनाड कहता था। यहाँ अहिरों का एक परिवार रहता था जो गौ पालन का कार्य करते थे। अहिर वंश प्राय कृष्ण परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं, पर यह परिवार पशुपतिनाथ शिव के प्रति समर्पित था। इस परिवार में अनायार का जन्म हुआ। अनायार की रुचि वंशी वादन और शिव भक्ति में थी। उनकी बंसी सुनकर सभी को प्रसन्न होता था। गायें चराने के लिए जब अनायार चारागाहों में पहुंचते तो प्रतिदिन अपनी बंसी द्वारा शिव पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र की धुन निकालता। उसने संगीत के सप्त स्वरों में नमः शिवाय को ऐसा साधा कि वह अपनी सुध बुध भूल गया। इस अलौकिक मंत्र को जब वह भक्ति में लीन होकर बंसी के स्वर से निकालता था तो सर्वत्र संगीत के रूप में अमृत की वर्षा प्रारंभ हो जाती। वंशी की स्वर माधुरी जड़ चेतन प्रकृति को भी मंत्रमुग्ध कर देती। पशु पक्षी मानव सभी हृदय तंत्री मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गायें घास चरना बोलकर अनायार के समीप आकर खड़ी हो जाती थी। बछड़े माँ के धन से दूध पीना भूलकर खींचे चले जाते। उस बंसी में निकले ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से पक्षी जो कि आकाश में उड़ते रहते हैं उसी स्थान पर चक्कर लगाते रहते थे। हिरण समूह कुलाचे भरना भूलकर बंसी के स्वरों में स्वयं को विस्मृत कर देते। मयूर समूह नृत्य छोड़कर शांतिचित होकर उस संगीत का पान करते। सांप शेर अथवा सभी जीव पारस्परिक शत्रुता भूलकर मुठली माधुरी में विमुक्त होकर एक साथ बैठे रहते हैं। आयना की इस एकनिष्ठ सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर शिव उनके समीक्ष आ गए और उनसे कहा, वत्स इसी स्थिति में मेरे पास आ जाओ। प्रभु ने अनायार को रुद्र पशुपतियार नाम प्रदान किया, तो उनका दूसरा नाम रुद्र पशुपतियार हुआ। चित्तिलर ने कहा है कि जिस प्रकार बंसीवादन का विषय एवं सूक्ष्म वर्ग सभी को प्रसन्न कर देता था, उसी तरह विष्णुभक्त कैयालवार ने कृष्ण कन्हैया को की मुरलीवादन का वर्णन किया है। कालांतर में सूरदास ने ऐसा वर्णन उत्तरी भारत हिंदी भाषा में भी की है। ये सभी भक्त एक विशेष संकेत दे रहे हैं कि पशु पक्षी से लेकर मानव तक सभी को एक समान बांधने की क्षमता केवल संगीत में है, और जो संगीत शिव या भगवान के प्रति समर्पित हो वह सारी दुनिया को एकजुट कर सकता है। संगीत एक ऐसा सशक्त साधन है जो ऐसी समझता ला सकता है। एक कोशीय जीव से लेकर सुविकसित मानव तक सभी में जो सामंजस्यपूर्ण संबंध है उसी के आधार पर संसार टिका हुआ है। अनायार जैसे भक्त अथवा शिव श्री कृष्ण जैसे ऐश्वर्य अवतार बंसी की स्वर लहरियां वायुमंडल में दसों दिशाओं में फैलाते हैं तो जीव मात्र में व्याप्त एकात्मकता को उद्घाटित कर उनमें एक सामरस्य स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो देवलोक में व्याप्त सभी देवगण अपना अपना आविर्भाव या प्रसाद ग्रहण करना भूलकर गोकुल में कृष्ण की मुरली के रस का पान करने पहुंच जाते थे। ऐसी ही स्थिति कुछ अनायार के वंशीवादन में थी, इसलिए यह है उच्च कोटि के संत हुए।
1: ओम नमः शिवाय।
3: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो। the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya.

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Nandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: ये संकेत वहां भी ठीक इसी प्रकार से यहां भी संकेत कर रहे हैं, जो विस्पष्टार प्रकी नाम उनके लिए तो जीवन में क्या होना चाहिए, तो पहले श्रवण, श्रवण के द्वारा उसके गुणधर्मों का विवेक, गुणधर्मों का विवेक होने पर हमारी इच्छा उसमें होती है, इच्छा के अनुकूल प्रयत्न करना, और प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे वो पात्रता, वो अधिकारिता हमारे में आ जाती है, वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि प्रयत्न करते हुए तुम अधिकारी बन ही जाओ। कितने लोग जीवन में और अध्ययन करते हैं लेकिन सब जो है कंपटीशन में जाते हैं तो क्या सब अधिकारी बन जाते और सबका चयन हो जाता? यही तो शास्त्र कहता बार बार, धर्मशील कोटि न मोह को एक हो धर्म श्रद्धारी, माने करोड़ों व्यक्तियों में, अनंत व्यक्तियों में कोई विरले ही है धर्म और श्रुति के अनुकूल चलने वाले, और उन चलने वालों में भी उस प्रकार से कर्म करने वाले, प्रयत्न करने वाले उनमें भी बहुत कम, उनमें भी छटनी हो जाती और कहने लगे उससे आगे श्रेणी चलती है। तो ऐसे प्रयत्न करने वालों में कोई एक ही सिद्धि को मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत् सिद्धे, इस सिद्धि के लिए कोई एक निकलता, और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्य, कोई एक ही प्राप्त। तो ये जीवन की और सर्वत्र, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, ये नियम सर्वत्र विद्यमान, ये संकेत। इसलिए यहां कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए, और प्रयास की श्रेणी बतलाई तो श्रद्धा कब आएगी और श्रद्धा भी कैसी, इसको लेके हम दृष्टांत एक दे रहे थे। क्या अवंतिका का राजा, इन दृष्टांतों से सरल में समझ में आ जाती, अवंतिका का राजा शिकार खेलने के लिए मेदपाट के आसपास जंगल में गया और भील को वहां सहयोगी बना लिया। भील ने उसकी सेवा की, एक महीने तक रहा, और भील ने जब जो है पूरी तत्परता के साथ, पूरी संलग्नता के साथ उसका सहयोग किया तो उस पर प्रसन्न हो गया। तो उसने क्या कहा, जब चलने लगा प्रसन्न हो गया कि भाई तू हमसे कुछ, अब जो है जब उससे कहा तो उसने क्या देखा था कि वो जो है प्रातः काल बैठा हुआ और क्या कर रहा था, भगवान शिव की पूजा, और वो ही नहीं कर रहा था, करते तो सब है लेकिन करते हुए भी और जो है भूल जाते हैं, ये भूल ही तो सब काम खराब कर देती। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि इसको न करता हो, आप कहो कैसे, तो आपको एक मोटे रूप में बतलाऊं, आप पालती मार के बैठ जाओ है? अब आपके जंघाओं का जो पालती का रूप बन गया, ये क्या हो गया, मान लो एक मंदिर का चबूतरा हो गया, क्या हो गया, मंदिर का चबूतरा हो गया, ये जो आपका है वो मंदिर का पूरा जो है परकोटा बन गया, हृदय आपका गर्भग्रह हो गया और ये उसका गुम्बद हो गया, और जटाएं हो बाबा जी जैसी तो बांध लो, जूरा तो कंगूरा हो गया है ना, कंगूरा उसका बन गया। अच्छा, अब जो है वो जो इस गर्भग्रह के अंदर जो बैठा है वही क्या है, शिव विग्रह, वो आत्मा जो विद्यमान है वही क्या है, शिव विग्रह, और बंद करके चारों तरफ से बंद करके प्रत्येक प्राणी सुसुप्ति अवस्था में कहां जाता, वहीं जाता है, उसी की पूजा करता, उसको जो है वो कोई जान ही नहीं पाता, वो भी नहीं जान पाता, और उसने जो है धीरे से उसकी जब रुचि पैदा हुई और रुचि पैदा हुई तो सीमन थोड़ी हटाई और देखा कि यह जो है इसकी उपासना करता है, तो उपासना करता तो लोक से भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो। अब जब उसने देखा तो उसके हृदय में भी रुचि पैदा हो गई। रुचि ही तो पैदा हुई पहले, और कैसे हुई तो देख करके सुन करके। जीवन में जो है हम अनुभव करते यही देखना, और जब उसके अंदर रुचि हुई तो रुचि के अनुसार उसके अंदर भी आया कि मैं जो हूं भी पूजा आदि करूं। अब ये क्या है? था तो भीड़, तो ये कोई नियम नहीं। प्राणी, कोई भी प्राणी कहां है, कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं। कब परमात्मा की उस पर कृपा हो जाती है और कब उसके हृदय में वो इच्छा पैदा हो जाती है, ये कोई नियम नहीं। ये नहीं कि बाबा जी के हृदय में ही पैदा होगी, गुफा में बैठे हुए एकांत में बैठे उनके ही हृदय में पैदा होगी, ऐसा कोई नियम नहीं। वो नियम है एक बुद्धि की शुद्धि करने का नियम, अपहरे गृणाम संगमे नदीनाम विप्रो धिया अजायत। वो एक जो है हमारी विप्र बुद्धि तो प्राप्त होगी, लेकिन बुद्धि प्राप्त होने पर कोई ऐसा नियम नहीं कि एक व्हील है जो व्यवहार में लोक व्यवहार में चल रहा है और उसके अंदर नहीं होगा, उसके अंदर भी हो सकता। परमात्मा की कब किस पर कृपा हो जाती है तो तभी उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में वो दृष्टि पैदा हो जाती, वो रुचि पैदा हो जाती, और व्हील के भी रुचि पैदा हो गई। और वो राजा जाने लगा, राजा कोई दूसरा नहीं, जीव ही समझ लेना। अब जब राजा जाने लगा और पंच विषयों का उपभोग करना यही शिकार करना है, और कोई शिकार करना नहीं, लेकिन किसके सहयोग से करते हो तो बुद्धि आदि के सहयोग से ही करते हो, बगैर उसके नहीं कर सकोगे। तो ये सब सारे रूपक इसीलिए बनाए गए। तो अब जो है उस व्हील से कहा कि तू कुछ मांग ले। उसने कहा मुझे तो जो है ये विग्रह दे दो। उसने थोड़ा टालना भी चाह, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और जो है उसकी रुचि जो पक्की हो गई, और जब रुचि पक्की हो गई तो राजा ने कहा चलो ठीक, इसने सेवा की है, ये उसकी प्रसन्नता थी। अब जो है प्रसाद से, प्रसन्नता से उसने उसको दे दिया। उसने उसका नियम पूछा। राजा ने सोचा ये भील जाति का है, ये नियम को निर्वाह कर सकेगा, पवित्रता रख सकेगा या नहीं रख सकेगा, इसलिए उसने सामान्यतया उसकी विधि बतला दी। जल पुष्प पत्र आदि चढ़ा देना, ये तो जंगल में मिल ही जाते, लेकिन एक नियम बतला दिया। एक न कोई जीवन में एक हमारा निश्चय होना चाहिए, नियम होना चाहिए जिस पर हम आरूढ़ रहे, और वही नियम हमको जो है गति तक पहुंचा देता। और ऐसा ही जब जो है उससे कहा कि एक नियम रखना, कहा क्या? कहा ये जो शिव है इसे प्रिय क्या है? जल भी प्रिय, ये सब तो प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय क्या है? जिसका ही उसने आवरण बना लिया है। चिता भस्म लेप सृगप रोटी परिकर है, मने जो है अपने सारे शरीर में जिसने क्या लगा रखा, कहा भस्म। और ये भस्म किसका प्रतीक है? भस्म प्रतीक है सारी उपाधियों को नष्ट करके जो शेषतया मूल तत्व है उसका। भई जो उपाधि थी, जो नाम रूप था, और वह जल गया, लकड़ी, लकड़ी क्या एक नाम है और उसका आकार प्रकार, उसे जला दिया तो क्या रह गया? राख रह गई, भस्म रह गई। अब लकड़ी नहीं कहोगे उसे, है ना? तो वो क्या है? राख। इसी प्रकार से सारे जगत की उपाधि जो नाम रूपात्मक है, उसको जहां पर जला दिया जाता है, उसका जहां पर परित्याग कर दिया जाता है, और वो शेष जो बचता है उसका नाम है भस्म। और ऐसे शेष को धारण करने वाले कौन है? शिव, परात्पर ब्रह्म। तो अवशेष तया जो रहने वाला है, इसलिए उसे कहा जाता संगो ही अयम पुरुष। किसी भी उपाधि में उसकी आसक्ति नहीं, निरुपाधिक जो है। तो इसलिए शिव को जो है निर्गुण निराकार मानते, राम की मूर्ति होगी सगुण साकार कहोगे, लेकिन जो है शिव विग्रह को निर्गुण निराकार की उपासना माना, संकेत किया। इसलिए उपासनाओं में भी थोड़ी चर्चा आ गई, कह दो प्रकार की उपासनाएं होती हैं, ये तो सब जानते हैं, एक अहंग्रह उपासना और एक प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना क्या है? आलम्बन प्रधानत्वे सति उत्कृष्ट चिंतनम इति प्रतीकोपासनम। प्रतीक उपासना क्या? गंडकी नदी से आप जो है गोल मोल प्रस्तर लेके आए, लेकिन उसको सिंहासन बना करके रखा, और क्या कहते हो, सालिग्राम भगवान। लेकिन केवल इतना ही नहीं कहते, भोग भी लगाते सब करते हो। तो आपने उसका आश्रय लिया, एक सहारा बनाया और आलंबन बनाया उसे, और उसका आलंबन बना करके अब वहां पर वृत्ति क्या बन रही है, भाव क्या बना रहे, चिंतन क्या कर रहे हो, विचार क्या कर रहे हो, विचार कर रहे हो ये सालिग्राम है। और कौन से सालिग्राम है, का सृष्टि करने वाले, स्थिति करने वाले, लय करने वाले, सब कुछ करने में समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ऐसे ये सालिग्राम भगवान हैं, ऐसा चिंतन करते, ठीक है ना। ये तो हो गई प्रतीक उपासना, हमने एक सारा ले लिया, एक अवलंबन ले लिया, क्योंकि बगैर अवलंबन के चलना हमारे लिए कठिन है, बारहवें अध्याय में पढ़ते ही हो। तब ये तो हो गई प्रतीक उपासना, कोई भी प्रतीक, कोई भी चिन्ह, कोई भी सहारा ले लेना। आगे कहा अहंगर उपासना, अहंगर उपासना में क्या रह जाता, आलंबन त्रिस्कृत्वे सति उत्कृष्ट चिंतनम इति अहंग्रोपासनम। वहां पर आलंबन अपने आप छूट जाता है, छोड़ता है ऐसा नहीं, आलंबन क्या होता का छूट जाता है, और आलंबन जब छूट जाता है लेकिन उत्कृष्ट चिंतन छूटता, उस उत्कृष्टता का उसे बोध रहता है कि ये सारा जगत कहां से हुआ है, तो कहने लगे जिस कारण से, ये तो हुआ है मान भूतान जायन्ते, तो उसी से हुआ है, वही एक मूल तत्व है, वही एक मूल शक्ति है, और वही मेरे से भिन्न नहीं है, ऐसा चिंतन वो करता है, वही मैं हूं। और ये चिंतन करना ही क्या है, अहंगर उपासना। और अब किसकी चर्चा कर देंगे, थोड़ी सी इसको सुन लो दृष्टांत को। अब जब जो है उसने उसको दे दिया तो नियम बतला दिया कि भस्म जो है जरूर चढ़ा देना। किसकी भस्म चढ़ाना, ध्यान रखना, चिता भस्म। और चिता भस्म का मतलब जानते हो, जहां पर नाम रूप उपाधि को हटा करके जो शेष बचे उसी का नाम है चिता भस्म। नाम भी नहीं रहा, रूप भी नहीं रहा, क्या रह गया, केवल जो अवशेष तया जो सत्तात्मक है वो रह गया, उसको चढ़ा देना। उसमें भी आसक्ति मत रखना, माने उसका त्याग कर देना। चढ़ा देने का मतलब क्या, त्याग कर, ध्यान रखो। अब जब इस प्रकार से जब कहा उससे, तो उसने जो है 12 वर्ष तक इस नियम को बड़े अच्छे ढंग से निभाया। और जब वर्षा हो गई, चारों तरफ जल हो गया, चिता भस्म कहीं मिली नहीं, तो बेचारा दुखी होने लगा कि एक छोटे से नियम को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए आज तो मैं शरीर का ही त्याग कर दूंगा, धिक्कार है मेरे लिए। और जब ऐसे कहने लगा तो उसकी जो धर्म पत्नी थी आहुति, जो उसका सहयोग करने वाली थी, यासी को वृत्ति कह दो, तो उसने जो है जब उससे कहा, तो उसने जब अपनी वेदना व्यक्त की, तो उसने कहा चिंता करने की बात क्या, कहा क्या मतलब, कहा झोपड़ी है ना, कहा तो, कहा इसमें आग लगा दूंगी, अंदर सूखी है, और मैं बैठ जाऊंगी, जल जाऊंगी, चिता भस्म। कहा तू, कहा जब ये नाम रूप उपाधि जो है सब मिथ्या ही है, और इसका जाना निश्चित ही है, और ये यदि जो है जो वस्तु हमसे छूटने वाली है, तो क्यों न इसको देकर के भगवान को हम दाता बन जाए, बढ़िया श्रेय हमें मिलेगा। और ये भाव तो उसने कहा तू ठीक कह दी, और वो उसमें बैठ गई और बैठ करके आग लगा दी, और आग लगा करके चिंतन क्या कर रही, जैसे ही उसमें बैठी आग जलने लगी, यहां तक उसे बोध है, और कहने लगी

0: जीव।
1: विचार उसका क्या है, क्या विचार करने लगी? पुष्पाणि सन्तु पुष्प हैं और उन पुष्पों को मैं तुम्हारे लिए अर्पण। लेकिन पुष्प क्या है तो क्या कहने लगी? पुष्पाणि सन्तु तव देव, हे देव, हे भगवान, आज मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूं, लेकिन पूजा किससे कर रही हूं? अब वन्य पुष्पों से नहीं, वनस्पति औषधियों पर होने वाले पुष्पों से नहीं। कहा ये तो तुम्हारे द्वारा ये निर्मित हैं, हमारे द्वारा निर्मित पुष्पों से नहीं, क्या है का? कहा पुष्पाणि संत तव देव ममेन इंद्रियाणि, हमारी आंख नासिका आदि कान ये जो ज्ञान इंद्रिया हैं, इन्हीं को मैं पुष्पों की जगह पर आपको अर्पित कर रही। और कहने लगे इतना ही नहीं, आगे कहा धूपो अगर बपुरिदम, और धूप बत्ती की जगह पर ये शरीर ही मैं आपको धूप की बत्ती की जगह पर आपको अर्पित कर रही। धूपो अगर वपरिदम हृदयम प्रदीपा है दीपम दर्शयामी, और दीपक की जगह पर मैं अपने हृदय को ही आपको अर्पित कर रही। प्राण हवीस हव्य की जगह पर, आहुति की जगह पर हम अपने प्राणों की ही आहुति आपको। हम लोग भी कहते हैं प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा, लेकिन वो कहना ही कहना है। ये दृष्टि आ जाए, अब संकेत किया और कहने लगे आगे प्राणा हवीस, अंत में चाहते हो अक्षतान समर्पयामि है क्या? तो चावल जो है वो क्या है? कर्णानि तवाक्षतास्त, हमारे पैर, हमारे हाथ, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, वो हम तुम्हें अक्षत की जगह पर समर्पित कर रही हूं। और आगे कह दिया पूजा फलम व्रजत साम्प्रतमेश जीवा, यह जीव जो हमारे में जीव भाव है, यह इस पूजा के फल को प्राप्त हो और आपके चरणों को प्राप्त करे। ये संकेत कहते हुए उसने दिल दिया, भस्म तैयार हो गई, और निर्विकार भाव से वह आहुक जो है पूजा करने बैठ गया। और जब पूजा करने बैठ गया तो उसके जीवन में तत्परता थी। हम कहते तो हैं संयत इंद्रिया तत्पर, उसके जीवन में वो संलग्नता थी, पूजा करने में इतना संलग्न हो गया, इतने मन से करता था, इधर उधर उसका चिंतन नहीं होता था। और जब वो पूजा करने बैठ गया, क्रम से सारी वस्तुओं को अर्पित कर दिया, और जब पूजा में संलग्न हो गया तो उसकी वृत्ति अन्य रह नहीं गई, तो जैसे स्वभाव उसका बन गया था, रोजाना कहता था भोग का समय आया कि अरे भोग तो ले आओ, और जैसे आवाज सुनी तो वह जो है दिव्य जो है रूप में आकर के दिव्य भोग को लेकर के उसके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने देखा तो होश आया, और जैसे ही उसे होश आया कहा तू तो जल गई थी। कहा हां, आपने आवाज लगाई, मैं तो जल गई थी, बैठी तो मुझे कुछ पता नहीं, बैठी उस समय पता चला, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं चला, लेकिन आपने आवाज लगाई तो भोग तैयार रखा था और वो मैं लेके। कहने लगा धन्य है प्रभु, आप छिप करके ये सारा काम कर रहे हो, कृपा करो अब आप जो है। और भगवान ने उसे दर्शन दिया, ये साक्षात्कार हुआ। तो ये साक्षात्कार कब हुआ? ये साक्षात्कार हुआ तब जब हमने अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को और उसके समर्पित कर दिया। यही सब भगवान बार बार कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, हम तो कर्ता भोक्ता बने हुए है ना, ये साक्षात्कार की स्थिति होती तो विस्पष्ट रुचि नाम, जो साक्षात्कार करना चाहते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, इसका संप्रणयन कर रहे हैं। अब आपको एक बात और सुना दूं, अभी जो हम प्रतीक उपासना की बात करते, पहले हम प्रतीक से चलते हैं और प्रतीक से अहंग्रह में पहुंच रुचि होती है, और रुचि श्रद्धा में ले जाती है, और श्रद्धा में सत्य का साक्षात्कार करा देती है, चाहे वो कैवल्य उपनिषद हो, चाहे कोई उपनिषद हो, और चाहे सामान्य शास्त्र जो हमारे ऋषियों ने प्रेरित किए वो हो। आप मीरा की कथा सुनते हो, मीरा की जीवनचर्या भी आप जानते हो, कहानी सब जानते हो, उसके पदों को भी गाते हो। मीरा ने पहले क्या है, बचपन में ही है किसी आचार्य से कृष्ण की मूर्ति देखी और जो है उसमें प्रेम हो गया, उसकी आराधना करने लगी, और आगे चल करके और उसी का श्रवण होने लगा, तो विशेष रुचि हो गई, और विशेष जब रुचि हो गई तो रुचि कितनी हो गई, विशेष इतनी हो गई कि उसी में ही मीरा निहित हो गई और क्या कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। अब जाकर छोड़ दई कुल की कान कहा करे है मेरो कोई, ये मीरा की भावना जो मीरा जीवन भर कहती रही कि मोर मुकुट वाला मेरा पति है ना, जीवन भर क्या कहा कि मोर मुकुट वाला मेरा, तुलसीदास की भी किंवदंती आती। लेकिन आप विचार करो, अब गीता में बोलते हो अव्यविचारी भक्ति है? अब मीरा की भक्ति कैसी है? अब आप कहते तो हो लेकिन कैसे, आगे पद मीरा क्या बोलती, जीवन भर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा ये मित्र है या मेरा ये पति है, और जब प्राप्त होने का समय आ जाए तो नाम बदल दे, कहे कि देवदत्त मेरा पति है, और जब प्राप्त होने पति से मिलने का समय आ जाए तो कह दे कि नहीं नहीं धर्मदत्त मेरा पति है, तो उसे क्या कहोगे, विश्वास करोगे? जीवन भर जिसने कहा कि मोर मुकुट है वाला मेरा पति, और जब पति प्राप्त हुआ मिला साक्षात्कार हुआ तो क्या कहा, पायो जी पायो मैंने, क्या मतलब, विचार करने की बात, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, तो कहना चाहिए श्याम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो। कोई किसान कहे कि मैंने चना बोया था और काटने पहुंचे तो गेहूं मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं, तो ये बड़ी विलक्षण बात है। लेकिन क्या है, पहले थी भागो भक्ति प्रतीक भक्ति, लेकिन अब मीरा कहां पहुंची, और मीरा कौन है? जब मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखा तो तुलसीदास ने क्या लिखा था, तजोरे मन हरे विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग तजोरे मन, और मीरा ने वो मान करके छोड़ दिया है, और पहुंच गई वृंदावन, हो गई वैरागी एक संकेत मात्र से। लेकिन वो तुलसीदास तो पीछे रह गए, और मीरा उनसे गुरु तो गुड़ रह गए और चेला चक्कर हो गया। मीरा ने जो है क्या स्थिति प्राप्त की, तो यही नहीं कहा राम रतन धन पाने का मतलब क्या, मीरा के जीवन में राम और कृष्ण का भेद ही मिट गया, ये राम है ये कृष्ण ये नहीं, कैसे कहोगे? तो जो श्रुति का निचोड़ है सार है उसको मीरा आगे कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन ये राम रतन धन क्या है, वस्तु मोलक दी मेरे सदगुर कृपा कर अपनायो, ये वस्तु सामान्य वस्तु नहीं, वस्तु शब्द का प्रयोग किया, अमूल्य है जिसका कोई मूल्य आंका ही नहीं जा सकता, जो अनंत है जिसे ब्रह्म को अनंत कहा जाता, ऐसे ही अनंत से निप्त, और इतना ही नहीं कहा, जो श्रुति में अप्रमेय है अव्यय आदि शब्दों का प्रयोग किया, मीरा ने सामान्य शब्दों में उनको कहकर बतला दिया, कहा ये वस्तु कैसी है, खर्च न होवे, क्या मतलब, मनुष्य में व्यय कभी हो ही नहीं सकता, परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता, न्यूनता कभी आई नहीं, खर्च न होवे और चोर न लेवे, चोर क्या करेगा, एक देश से दूसरे देश में ही तो ले जाएगा, तो देशगत परिच्छिन्नता भी जिसमें नहीं है और वस्तुगत परिच्छिन्नता भी जिसमें नहीं, खर्च न होवे चोर न लेवे और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने, और ये तो कहते हो भृंगत्वात् भृंगत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, ऐसी स्थिति में मीरा पहुंच जाती। तो यहां पर जो चर्चा की जा रही है, यहां पर संकेत किया कि हमारे जीवन में जब आचार्य आदि का के माध्यम से हम श्रवण करते हैं, शास्त्रों का हम आश्रय लेते हैं, और शास्त्रों का आश्रय लेकर के और आचार्य आदि के द्वारा हम जब उन युक्तियों को श्रवण करते हैं तो हमारे में रुचि होती है, और रुचि जब हम उसको आगे लेकर के चलते हैं तो जीवन में वैराग्य आदि आता है, मोक्षता आदि आती है, और ये सब आते हुए हमें वह श्रद्धा से युक्त करके अधिकारी बना देती है, और अधिकारी बनने पर हमें उसकी प्राप्ति हो जाए। ऐसा जो सार तत्व है वो इस उपनिषद के अंतर्गत है, और वो हम जो है संप्रणयन करने जा रहे हैं, ये यहां चर्चा है, अब फिर कभी होगा भगवान की कृपा। ओम शांति शांति,
0: नारायण नारायण नारायण। सही माने में हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे संत स्वामी प्रेमपुरी जी की कृपा से यहां पधारते हैं, अद्भुत वाणी ज्ञान बरस रहा है यहां पर, श्रवण करते रहें यह इच्छा होती रहती है, स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है। और मैं तो कहता हूं कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसे संतों के दर्शन, इनकी वाणी, इनका ज्ञान हमें यहां प्रसाद के रूप में मिल रहा है। स्वामी जी ने बताया हमें कि सोने के पात्र में चंदन की लकड़ी जलाकर यदि हम उसमें लहसुन पैदा करते हैं तो हमारे समान मूर्ख और कौन होगा। और सही माने में हम वही कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें इतना दुर्लभ दे दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, अमूल्य सांसें दी हैं, अमूल्य समय दिया है। मरते वक्त हम करोड़ों रुपए खर्च कर भी एक सांस नहीं पा सकते। उन सांसों को, उन समय को, इस दुर्लभ मनुष्य देह को हम किन बातों में बर्बाद कर रहे हैं? असत पदार्थों के जमा करने में, असत भोगों के, नाशवान भोगों के भोगने में हम अपना सारे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो उस प्राणी में जो सोने के बर्तन में चंदन की लकड़ी जलाकर लहसुन का साग बना रहा है, उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हिरण होता है उसके अंदर कस्तूरी होती है, वो कस्तूरी की वो समस्या है कि मुझे बाहर से आ रही है और वाकई में कस्तूरी उसके भीतर है। वही हालत हमारी है, आनंद हमारे भीतर है और आनंद हम बाहर संसार में सोचते हैं, ढूंढते हैं, और संसार में आनंद है नहीं, आनंद तो हमारे भीतर है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो बातें स्वामी जी ने हमें कही हैं उनको हमें आचरण में लाना है। हमें हमारे जीवन में जो असत वस्तुएं हैं उनका त्याग करके सत्य क्या है, केवल ईश्वर, सारे की है, वासुदेव है सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसके अलावा और कोई सार नहीं है। जो आनंद है, जो तत्व है, वो हमारे भीतर है। स्वामी जी ने बड़ी कृपा की है, अगले वर्ष के लिए स्वामी जी ने समय दिया है, लेकिन अभी दिन और महीना नक्की नहीं हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं कि जुलाई या अक्टूबर में स्वामी जी पधारेंगे, उसकी तिथि अभी नक्की हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी का स्वागत करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगबरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणिर्व्यग्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपरः सरञ्च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओ ओ ओ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर विचार कर रहे हैं। विचार के लिए, अभ्यास के लिए 12वां श्लोक। गुहायां गेहे वा बहिरपि बने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वस

गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं वद फलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी गुहायां गेहे वा। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज भगवान शिव की भक्ति के बारे में, शिव भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय को भगवान शिव के साथ जोड़ लेता है, फिर संसार में उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कल बताया था कि अपना हृदय परमात्मा में लगा दोगे तो परमात्मा खुद उसके योगक्षेम का भी वहन कर लेते हैं। गीता में भी भगवान यही कहते हैं और आदिगुरु शंकराचार्य जी भी भगवान के बारे में यही कहते हैं कि हे शिवा, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति अपने हृदय को आपके चरण कमल में लगाएगा उसके सारे योगक्षेम का आप अवश्य वहन करते हैं। भगवत भक्ति से विमुख होकर अन्य अन्य साधनों को अपनाने वालों के प्रति ये व्यंग करते हैं शंकराचार्य जी। जिस सहज साधना के द्वारा अपना प्रयोजन पूरा कर सकता है जीवात्मा, उस सहज साधना को तो करता नहीं और साधन के नाम पर, योग के नाम पर पता नहीं क्या क्या करता है। तो शिव योग को छोड़कर अन्य योग के प्रति प्रवृत्त हुए हुए उन योगियों के प्रति यह व्यंग है। सबसे बड़ा योग है शिव योग। शिव योग का अर्थ होता है कि अपने चित्त की वृत्ति शिव के प्रति जुड़ जाना, यही परम शिव योग है। उसके बाद और कोई करते हो तो वो सब हठ योग है, क्रिया योग है, फिर पता नहीं कौन कौन से योग हैं, उन योग के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। कहीं सिर नीचे करेंगे, टांग ऊपर करेंगे, कहीं टांग ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई मुर्गा बनेंगे, कहीं कुकुड़ बनेंगे, कहीं सर्प बनेंगे। योग के नाम पर आसन हजार है, नहीं बहुत से आसन है, सर्प आसन है, मंडूक आसन है। मंडूक माने डेढ़को, गुजराती में डेढ़को बोलते हो ना, हिंदी में मेंढक बोलते। मंडूक आसन करेंगे, अरे भाई तुम हजार बार मंडूक बन चुके हो, हजार बार सर्प बन चुके हो, अभी भी तुम्हारे मंडूक बनने की आकांक्षा पूरी नहीं हुई क्या है? योग के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या है। पेट ठीक रखने के लिए मयूर आसन करो, कहते हैं नहीं, क्या है मयूर आसन? अब बढ़ोती में क्या करोगे मयूर आसन? मंडूक आसन किया है, मंडूक आसन करो, मयूर आसन करो, क्या क्या नाम रखा है। वृश्चिक आसन करो, वज्रासन करो, ताड़ासन करो, शवासन करो। अरे कितनी बार शवासन किया है बोलो, हिसाब है तुमने कितनी बार शवासन की है? रोज भी करते हो शवासन, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर रामदेव कहेंगे तो शवासन से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? शंकराचार्य जी की दूसरी दृष्टि है, तुम करो उस शरीर को ठीक करने के आसन है,
ध्यान देना, ये इनकी निंदा नहीं है, करो, शरीर को ठीक करने के आसन है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो शरीर ठीक होगा नहीं है। शरीर तो बड़ा वो अड़ियल घोड़े की तरह है, मारो चाबुक तो थोड़ी देर चले, चाबुक मारना छोड़ा तो खड़े हो गया है, अड़ियल घोड़ा है ये है। तब सबसे बढ़िया आसन बता रहे हैं, सबसे बढ़िया योग है शिव योग। बस हाँ, अब शिव योग के बारे में यहां बता रहे हैं। शिव योग का अर्थ होता है मन को ठीक करना, तन को ठीक करना नहीं, ध्यान देना। शरीर पर जो ध्यान देगा, शरीर ठीक रहे ये ध्यान देगा, वो क्रिया योग करे, हठ योग करे, शीर्षासन करे, वीरासन करे, मयूरासन करे, मेंढकासन करे, मंडुकासन करे, कौन कौन से आसन है कर लो, सब हजार आसन कर लो, लेकिन अपने को ठीक रखना चाहते हो, अपने को इतना तो ख्याल रखना चाहिए जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को, शरीर और मैं हम अलग अलग हैं, शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। शरीर चाहे जितना ही ठीक करोगे वह खराब होगा ही होगा, और शरीर जितना भी ठीक होगा उससे शिव योग से कोई संबंध नहीं है। मन जितना ठीक होगा उसी से शिव योग सिद्ध होगा। इसलिए यहां शिव योग आंतरिक है, हठ योग बाह्य है, हठ योग क्रिया साध्य है, शिव योग भाव साध्य है। शिव योग भावना से सिद्ध होता है, क्रिया से कुछ नहीं। शिव योग बुढ़ेवती में भी कर सकते हो, रोगी हो तो भी कर सकते हो, भोगी हो तो भी कर सकते हो, लेकिन हठ योग रोगी में नहीं कर सकते। तुम रोगी हो गए तो क्या हठ योग कर लोगे, बूढ़े हो गए तो क्या हठ योग कर लोगे। लेकिन शास्त्र में अनेक प्रकार से हठ योग करने वालों का उल्लेख है, करते हैं, किया हुआ उल्लेख आता ही है। उनके तरफ व्यंग कर रहे हैं शंकराचार्य। कुछ लोग योग करने के लिए गुफा में चले जाते हैं, है ना, सुना है आप लोगों ने, घर बार छोड़ छाड़ कर पहाड़ में जंगल में जाकर गुफा और कंदराओं में बैठ जाते हैं, कंदमूल खाकर और योग साधना करते हैं, बहुत लोग करते हैं। आप लोगों ने भागवत के प्रसंग में सुनाई है, मांडव्य ऋषि है, मांडव्य ऋषि पहाड़ के कंदरा में गुफा में रहकर योग अभ्यास करके योग साधना में थे, और उसी समय में उस राज्य का जो राजा था उसके खजाने में चोरी हो गई, आप लोगों ने सुना है ना, और चोरों ने वो सारी राजकोष को चोरी करके ले जाकर उसी गुफा के अंदर रख दिया, जहां मांडव्य ऋषि पहले से ही समाधि में, निर्विकल्प समाधि में योग अभ्यास करके निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए थे। तो राज आज्ञा हो गई कि चोरी हुई है, संपत्ति कहां रखा है, किसने चोरी की है, चोरों को पकड़ो, संपत्ति को खोज कर पता लगाओ, ले आओ। तो राजधानी में, शहरों में, गांव में, कस्बों में सब जगह खोजा गया, कहीं कुछ पता नहीं चला। तब जंगलों में जब गए तो पहाड़ के एक गुफा के अंदर वो चोरी किया हुआ संपत्ति भी सुरक्षित वहीं रखा हुआ था, चोरों ने ले जाकर रख दिया वहां। उन्होंने विचार किया कि यहां कोई आएगा नहीं, यहीं रखते हैं, जब चाहेंगे हम लोग ले लेंगे। और वहीं हुआ मांडव्य ऋषि
ध्यानमग्न होकर बैठे, उनको कुछ पता नहीं है। तब राजा के जो राजसेवक थे, आज की भाषा में आप लोग पुलिस कहते हो, है? तो उन्होंने देख लिया, कहा कि यही चोर है, ये पकड़े जाने के डर से ये आंख बंद करके बैठा है, पाखंडी कर रहा है। ये यदि चोर नहीं होता तो ये संपत्ति यहां कैसे आ गई? चोर होगा या चोर का भी सरदार होगा यही। तो राजा को संदेश भेजा गया कि आपका संपत्ति राजकोष जो संपत्ति था वो भी पता चल गया और चोर भी पता चल गया। राजा ने विचार किए बिना ही कह दिया, उसको सूली में चढ़ा दो। देव जी, चोर को तो सूली में चढ़ा दो और जब वो मर जाए, खत्म हो जाए, तो संपत्ति लेकर आ जाओ। उन्होंने चढ़ा दी सूली में, लेकिन सूली में चढ़ाने पर भी मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। तो उन लोगों का आश्चर्य लगा कि अरे ये क्या बात है, मरा नहीं है, तो ये साधारण व्यक्ति तो नहीं है, साधारण व्यक्ति होता तो मर जाता, ये कोई असाधारण पुरुष है। वास्तव में ये कोई योगी पहुंचा हुआ योगी था और हमने भ्रांति से ये चोर कह दिया और राजा आज्ञा हो गई, हमने सूली में लगा दी, उसको उतारा। राजा को संदेश भेजा गया कि भाई वो तो मरा नहीं, सूली में चढ़ाने पर भी नहीं मरा। राजा डर गया, कहीं वास्तव में चोर के संदेह में किसी महान योगी को सूली में तो नहीं चढ़ाया गया, खुद जाना चाहिए। राजा खुद आकर देखता है, वो तो उनको तो कुछ पता ही नहीं, समाधि में है। उतरवाया सूली से, बैठा प्रार्थना करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा कि कब इनकी समाधि टूटे और हम इनसे क्षमा प्रार्थना करें।

ये पता लगा के बताओ, मैं जानना चाहता हूं। तब चित्रगुप्त को बुलाया और सारी रिकॉर्ड खोजी गई, एक जन्म पहले, दूसरे जन्म पहले, तीसरे जन्म पहले, 100 जन्म पहले तक का हिसाब देखा, लेकिन मांडव्य ऋषि का कहीं ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जिस कर्म का फल उनको जीवनते ही सूली में चढ़ना पड़े, ऐसा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो मांडव ऋषि ने कहा कि जब कोई कर्म ही नहीं है तो सूली में क्यों चढ़ाया गया। तो फिर 101 जन्म पीछे का रिकॉर्ड जब खोला तो वहां लिखा हुआ मिला कि बचपन में 101 जन्म पहले मांडव्य ऋषि मनुष्य हुए थे। उस समय में बचपन में खेल खेल में एक कीड़े को पकड़ लिया और एक कांटा उसको चुबो दिया था। बस उसका परिणाम 101 जन्म के बाद मनुष्य योनि में ही सूली में चढ़ना पड़ा। तो आगे की कहानी आप लोगों से पता है कि यमराज को श्राप दे दिया मांडव्य ऋषि ने, अनजान में किए हुए इतना बड़ा कर्म को फल को तुम इस तरह सूली में चढ़ा दिया, सही रूप में न्याय करने नहीं जानते हो। न्याय सही रूप में निष्पक्ष न्याय न करने वाले तो मनुष्य ही होते हैं, इसलिए तुम मनुष्य योनि में जाओ, देव योनि में नहीं रह सकते। श्राप दे दिया। तो 100 वर्ष तक के लिए यमराज विदुर होकर पैदा हुए, ये सारी कहानी आप लोगों को पता है। ये कहानी में हम क्यों गए गुहायाम। लोग गुफा में जाते हैं हजारों वर्ष अष्टांग योग साधना करके हठ पूर्वक समाधि में चले जाके जाते हैं और समाधि करते हैं, जैसे मांडव्य ऋषि। गुहायाम गेहेवा बहिरपि, अब कुछ लोग घर में ही तपस्या करते हैं, और घर में ही तपस्या करने वालों का भी शास्त्रों में बहुत उदाहरण है। घर गृहस्थी में ही रहते हुए अपने सारा कर्म करते हुए भी वह साधना करते हैं, योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, ऐसे बहुत से शास्त्रों में भी उदाहरण है। जैसे जनक को आप कहोगे, जनक क्या है, घर गृहस्थी में रहते हुए वो साधना करे हुए हैं और वहीं उनकी सिद्धि भी मिल गई, घर छोड़ना भी नहीं पड़ा, साधना भी कर ली और सिद्धि भी मिल गई, जीवन मुक्त भी हो गए, उनको घर छोड़ना नहीं पड़ा, पहाड़ में जाना नहीं पड़ा, गुफा में जाना नहीं पड़ा। तो ये भी एक उदाहरण है। बहिरपि, और कुछ लोग जो है घर छोड़ते हैं, गुफा में तो नहीं जाते हैं, डरते हैं, लेकिन जंगल में रहते हैं, उसको यहां वही कह दिया, उसी को वानप्रस्थ कह दो, है वही, घर तो छोड़ दिया और घोर गुफा में नहीं गए, एकांत जगह में कहीं बैठ गए। बने वाद्रि शिखरे, कुछ लोग वन में चले जाते हैं और कुछ लोग आर्द्रि शिखरे, बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में चले जाते हैं, पहाड़ की चोटी में बैठकर वहां योग अभ्यास करते हैं, योग साधना करते हैं, करते हैं भले करें। जलेवा वन्नौवा, और कुछ लोग पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं और बहुत हजारों वर्ष तक योग साधना करते हैं और निर्विकल्प समाधि में बैठे रहते हैं, जैसे आप लोगों ने भागवत में सुना ये सौवरी ऋषि है ना, सुना है नहीं, कहां तपस्या किया सौवरी ऋषि ने, जले पानी के अंदर, कब तक साधना की, 10,000 वर्ष, बोलो 10,000 वर्ष तक पानी के अंदर रहकर उन्होंने योग साधना की, उसी के बल पर वह योग अभ्यास के द्वारा पानी के अंदर निर्विकल्प समाधि में रहते थे, न भूख सताती थी, न प्यास सताती थी, न जरा सताती थी, न रोग न व्याधि,
क्योंकि योग अभ्यास में निर्विकल्प समाधि में बैठोगे

0: On hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, you are about to listen Periya Puranam Discourse in Kannada. The title is Gananatha Nayanar Puranam, presented by Sri H.S. Thyagarajan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Gurubhyo Namaha. Ella Mahaniyarigaligoo Namaskara. Gananatha Nayanar. Avara Charitre Enu Anta Nodana. Gananatha Nayanar Avara Bagge ನಮ್ಮ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ನಾಯನಾರವರು ಕಡರ್ಕಾಳಿ ಗಣನಾಥನ್ ಅಡಿಯಾರ್ಕು ಮಡಿಯೇನ್. ಕಡರ್ಕಾಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಶೀರ್ಗಾಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಶೀರ್ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಏನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಶಿವಭಕ್ತರು, ಅದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವಭಕ್ತರಂದರೆ ಬಹಳ ಶಿವಭಕ್ತರೇ. ಇವರಿಗೆ ಜನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಈ ಶಿವಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶಿವನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಶಿವಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಿವಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಶಿವಭಕ್ತರಾದವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವರಂತಂದರೆ, ತಿರುಮುರೈಗಳನ್ನು ಬರೆಸೋದು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರೀರಿ, ನೀವು ಬರೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಹೀಗೆ ತಿರುಮುರೈಗಳನ್ನು ಬರೆಸೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ, ಹಾಡೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಡ್ತಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ, ಹಾಡೋರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಹೂಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ತೋಟಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಕೆಲಸ. ಹೂಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಮಾಲೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ದೀಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ತರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಗುಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಒರೆಸುವುದು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ದೇವರ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು, ಈ ಥರ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದೈವಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಿವಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಗೊಂಡು ನಾವು ಧನ್ಯರಾದವು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತಾವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಇವರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈ ಗಣನಾಥ ನಾಯನಾರ್ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
0: ಅಪಾನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: हाँ तो पेट पहले भर गया फिर खाओगे क्या, खाने की जरूरत क्या है? दिया जलाओगे अंधकार को मिटाने के लिए, जो अंधकार ही मिट गया पहले तो दिया क्या जरूरत? हाँ श्रोतव्यम आत्मा का क्या लक्षण है? हर एक वस्तु का लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि रहस्य थे। लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है, अन्य बात लक्षण और प्रमाण तो श्रवण, हाँ वो तो पहले श्रवण करना ही पड़ेगा ना, साधन तो है ना, कहना पर भी तो शब्द ज्ञान है कि नहीं? शब्द ज्ञान के द्वारा ही तो आपको मालूम पड़ेगा ये वस्तु ऐसी है, परंतु सुनने मात्र से नहीं होता है ना, फिर जानना पड़ता है ना, क्यों? आत्मा सिद्ध वस्तु है, आत्मा सिद्ध वस्तु, साधन सज्ज नहीं है, याद रखना आप, साधन सज्ज नहीं है। जो वस्तु साधन सज्ज होता है ना, उसके लिए आप आपकी बात है। हाँ हाँ प्राणायाम करते रहो, अंतकरण शुद्ध करते रहो, हमारे यहाँ उसका नहीं है, हमारे यहाँ श्रवण से अंतकरण शुद्ध हो जाता है, वेदांत में श्रवण से अंतकरण शुद्ध होता है, इसीलिए भक्ति दर्शन में भी कहेगा, क्या कहेगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम श्रीकम आत्मा निवेदन, पहले श्रवण आता है, वेदांत वाक्य भी श्रवण आता है, संख्या में भी श्रवण आता, तो ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ भी पहले श्रवण आता है, ब्रह्म जिज्ञासा करने से पहले करना चाहिए, यानी बस श्रवण प्रधान होता है वेदांत में, क्रिया है क्रिया, आवे आवे आवे आवे वाय ना, क्या नाम वो रामदेव, रामदेव तो लाखों को सिखाया है प्राणायाम करो, सबका चित्त शुद्ध हो गया, बोल सबका चित्त शुद्ध हो गया, सबको सबका ईश्वर दर्शन हो गया, कब ज्ञान हो गया सबको, बोलो प्राणायाम क्या किए? चित्त को शुद्ध करने के लिए, प्राणायाम चित्त को स्थिर करने के लिए, स्थिर करने के लिए, हाँ तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान आने क्रिया योग है, सब ये सब क्रिया योग है, हाँ हाँ बस इसमें लगा रखो, तो कल बोला था ना, कल बोला था आपको क्रिया योग, भक्ति क्रिया योग है, उपासना क्रिया योग है, कर्म क्रिया योग है, ज्ञान योग है केवल द्वारा वेदांत वाक्य का श्रवण करते करते करते, श्रोतम श्रुतम श्रुति वाक्यभ्य, हाँ श्रवण करो, किससे श्रवण करे? वेदांत वाक्यों का श्रवण करो, वेदांत क्या चीज है? तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का श्रवण करो, श्रवण करने मात्र से तुमको जो बोध हो जाएगा, हानि बात जीव है ब्रह्म की जो एकता के ज्ञान है ना, वो ज्ञान तुम्हारा अज्ञान का नाश करेगा, अज्ञान के नाश करने के लिए ना योग है, ना उपासना, ना भक्ति है, ना कलना है, कुछ भी नहीं है, क्यों? किसी शास्त्र ने नहीं कहा अज्ञान को नाश करने के लिए उमुक चाहिए, और आप कहोगे कि भगवान ने तो गीता में बतलाया कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश होता है, तो ये तो ठीक है, पर अज्ञान का नाश मैं करूंगा, तुम्हारे अंदर अज्ञान जो है, अज्ञान का नाश भगवान करेगा, गीता में बतलाया कि नहीं? नहीं बतलाया, 18वां अध्याय में देखना, 9वां अध्याय में देखना, परंतु भगवान कब करेगा? जब 12वां अध्याय में बतला दिया भगवान ने, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निशे मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य योग पूर्वक
3: मेरा ध्यान करता है। केशा महाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवा विना श्रीरात पार्थ मैयाभिषित चेतसम। इसीलिए मय बुद्धि निवेशय निवेशिष्य मय ऊर्धम न संशय। तो फिर आप कैसे पार करोगे? यदि ज्ञान से या आपके शरण में आने से ही मुक्ति हो जाए तो ज्ञान की जरूरत क्या है? तो भगवान ने कहा मैं पहले तो बताया तेरे को ज्ञान न तदज्ञानम जैसा नाशित आत्मना हो, ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नाश हुआ उसको उद्धार करता हूँ। तो ज्ञान कैसे जैसे ढंग से समिध्योग ने भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा अभिचेत से पावेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्व ज्ञान प्लबे नृजिनम संतरिष्यसि। तो बतलाया कि नहीं अवला तू पापे से पापी कहता है आपने को कौन नंबर का पापी है? कौन से नंबर का पापी है? एक नंबर का पापी है या नंबर पापियों पे भी नंबर लगता है याद रखना। हाँ पापियों भी नंबर होता है ना महाराज, हम तो महापापी है बोलते नहीं। पापा आत्मा हम पापा कर्मा हम पापा संभव हम बोलते कि नहीं। कर्म कांड में जो अंतिम में पंडित लोग कराते हैं कि नहीं, पापा आत्मा हम पापा कर्मा हम पापा संभव हम बोलते हैं ना। पाप पुण्य आदि आत्मा में नहीं है याद रखना, जो भावना में है नहीं बात। तो वहां भगवान ने बोला आप ही सीधे से पापेभ्यो पापकृतम पापकृत पापकृतर पापकृतम। ये तीन प्रत्यय व्याकरण में होता है, व्याकरण में तीन प्रत्यय होता है पापकृत पाप करने वाला, पापकृतर उससे ज्यादा पाप करने वाला, पापकृतम। जैसे आप लोगों को यहां है ना इंग्लिश में भी है ना ऐसे शब्द क्या? तो गुड बेटर बेस्ट अच्छा के लिए है, मंद के लिए क्या है? हाँ होता कि नहीं बेट बस बस हाँ हो गया ना। तीसरा नंबर का है गुड बेटर बेस्ट हुआ अच्छा के लिए। पुण्य पुण्यात्मा पुण्य न पुण्यम कर्म नहीं थी, पापे न पापम लोकम नहीं थी आनी बात। तो तीन नंबर के जो पापी है तीसरा नंबर का डरना नहीं, हमारे नौका में बैठ जा। कौन सा नौका? ज्ञान रूपी नौका। सर्वम ज्ञान प्लवे ने भी ब्रिजिनम संतरिष्यसि, ब्रिजिनम पापम तरिष्यसि तर जाएगा कब? ज्ञान रूपी नौका में बैठेगा तो। सर्वम ज्ञान प्लवे ने भी ब्रिजिनम पापम संतरिष्य सम्यक कर जाएगा। तो मतलब है भगवान कहते मैं ज्ञान रूपी नौका संसार में छोड़ा हूं, इस ज्ञान रूपी नौका में जो भी बैठ जाएगा वो पाप रूपी संसार रूपी हाँ। इसीलिए विवेक सुरामणि में है शंकर आचार्य लिखा है क्या पापी लोग जो है ना संसारी लोग प्रार्थना करते गुरु के पास जाकर कथम तले यम भव सिंधु मेतम कावा गतिर्मेय कथम अस्ति उपाय जाने न किंचित कृपया भवम मो संसार सिंधु स्तरणे अस्ति उपाय। हे गुरु जी बताओ कथम तले यम भव सिंधु मेतम एतम भव सिंधु संसार को क्या बोलते हैं? सागर संसार सागर भव सागर भव सिंधु भव कानन महाकानन संसार कानन इसका बहुत से नाम है। तो शिष्य कहते कथम तरेयम भव सिंधु मेतम हे गुरुजी ये संसार सागर को मैं कैसे पार जाऊं? जाने न किंचित मुझे कुछ भी पता नहीं, ये संसार सागर से तैरने का रास्ता क्या है कुछ भी पता नहीं, कैसे मैं संसार सागर से पार जाऊं? जाने न किंचित कृपया अवमान भो कृपा करके मेरी की रक्षा कीजिए। गुरु जी क्या होता है महाभिष्ट विद्वान तव नास्ति अपाय, आश्वासन देते निर्भय बना देते हैं गुरु जी। मत डर भयभीत मत होना, महाभिष्ट विद्वान तव नास्ति अपाय तेरा नाश नहीं होगा। संसार सिंधु स्तरण अस्ति उपाय, संसार सागर सो पार करने के उपाय है, साधन है। जेने भी जाता है जतैश्य पारम, जति लोग जिस रास्ता से गया वो रास्ता मैं तेरे को बताऊंगा, तू भी पार चले जाएगा। देखा तो पार जाने का रास्ता क्या, भव सिंधु पार करने का रास्ता क्या, संसार कानन को पार करने का क्या है, ज्ञान रूपिनों का। हाँ, कर्म भी साधन है, कर्म साधन है चित्त शुद्धि के लिए। चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। योग है, कर्म है, ये सब अंतकरण की शुद्धि के लिए। चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु शुद्धि विचार है ना, है ना। तत्व ज्ञान होगा विचार से, और कोई रास्ता नहीं है, याद रखना ना। तो वेदांत में श्रवण प्रधान है, श्रवण प्रधान वेदांत में सुनो सुनो। इसी पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है, परोक्ष ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम बुद्धिपूर्वम कृतम पापम कृष्णम दहति बन्निवत। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं ये जो ज्ञान की बात सुनते हो, रोज सुनते हो, ये ब्रह्म है, कुटस्थ है, साक्षी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, तत्त्वमसी महावाक्य जो सुनते हो, इसका क्या फल है? ये परोक्ष ज्ञान अस्ति ब्रह्म इति परोक्ष ज्ञानम एतत्। ब्रह्म है ये जो हम लोग चिल्लाते हैं ना, इसका नाम परोक्ष ज्ञान तुम रोज सुनते हो। हाँ, अस्ति ब्रह्म इति सिद्ध ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम एतत्, ये परोक्ष ज्ञान। अब तुम किसी महापुरुष से सुना, अपने गुरु से सुना, किसी संतों से सुना, तो सुनने का फल क्या है? हाँ, ब्रह्म विज्ञानम बुद्धिपूर्वम कृतम पापम, जान बुझ करके तुमने जो पाप किया तमाम पापों को जला करके भस्म कर देगा, याद रखना। तो कहते हम इतना दिन सुनते हैं पाप जलाता है कि नहीं जलाता, तुमको क्या मालूम जलाया कि नहीं जलाया? अगर नहीं जला तुम यहां नहीं आते, यहां आते हो इसीलिए जलाया है, आनी बात। शब्द ज्ञान होते ना,

कर्मों को अनंत कर्मों को जला करके भस्म करता, समझे कि नहीं? ये वेदांत वाक्य सामान्य वाक्य नहीं समझना, सुनने के लिए भी समझना। जन्मांतरीय पुण्य उदय हुआ हो तब सुनने को मिलता है, इसीलिए स्वामी जी कहते देखो शब्द के अंदर से शक्ति है ये आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सिद्ध है। यदि आपको स्तुति करे कोई तो आपको मन कैसा हो जाता है? कान के देखो शब्द तो हमारे मुंह में है, आपके कान में पड़ा, कान से आपके भीतर गया, भीतर गया के मन रूपी कमल को खिला दिया कि नहीं? यदि आपकी स्तुति किसने किया तो आपका चित्त कैसा हो जाता है? खिल जाता कि नहीं? तो यदि किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपकी गाली दी, हाँ, तो आपका चित्त कैसा हो जाएगा? गाली तो हमारे मुंह में है, निंदा हमारे मुंह में है, आपका चित्त क्यों सिकुड़ गया, मुरझा गया? चित्त रूपी कमल, मन रूपी कमल क्यों मुरझा गया ये बताओ? हाँ, क्यों? शब्द तो हमारे मुंह में है, आपका चित्त क्यों बिगड़ गया? क्योंकि वो शब्द को आपने मान लिया कि मेरे लिए बोल रहा है। दस आदमी के बीच में एक आदमी का चित्त मुरझा गया, वो शब्द के साथ उसका संबंध हुआ, शब्द आकाश का गुण है। आकाश का गुण होने पर भी जो जिस शब्द के साथ संबंध बना रखा है ना, उसके शब्द को विक्षिप्त अथवा प्रफुल्लित करेगा, सबका नहीं करेगा। आनी बात, अब जब ये शब्द हमारे मुंह से निकाल करके आपके कान के द्वारा क्यों करना सस्कुली अवच्छिन्नम नभा, आकाश शब्द आकाश का गुण है, आकाश हुआ तुम्हारे कान के द्वारा तुम्हारा हृदय आकाश में गया और तुम्हारे हृदय आकाश में जाकर तुम्हारे हृदय रूपी कमल को खिला दिया था, मुरझा कर दिया, हाँ, इसके मतलब क्या है? इस शब्द के अंदर शक्ति है। यदि आपका हृदय कमल मुरझा गया हो तो खुल गया, खिल गया हो कमल, तो कैसे मालूम पड़े? तो मुख कमल खिल जाएगा, हृदय कमल खिलने से मुख कमल खिल जाएगा, प्रसन्नता हो गई। तो तुम क्या करोगे? आपने बत्तीसी देखा होगा हमको, और हम भी आपने बत्तीसी आपको देखा, ही आई आई आई आई, सज्जन से सज्जन मिले तो क्या होगा? 10 से 10 चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले खिल जाए 7 करोड़, 4 मिले 2 मित्र है तो ये दुआ किधर होगा? दुआ के बाद 4 हो गया, 4 मिले 64 खिले, 64 किधर है? डॉक्टर के पास होगा। चार मिले 64 खिले, 20 रहे करज और हाथ जोड़ करके एक दूसरे के स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ करके एक दूसरे का स्वागत कर दे, सज्जन से सज्जन मिले खिले 64 करोड़, ये रोए रोए 64 करोड़, हाँ, खिल जाए 64 करोड़। तो कहने का मतलब ऐसा हुआ क्या? एक शब्द से हुआ, और 64 करोड़ मुरझा जाए तो किससे? कोई शब्द से आने बात। तो शब्द के अंदर असिंत्य शक्ति है। ये वेदांत वाक्य जो श्रवण करता था तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यश जाता है, आगे नहीं 4 सूत्र याद करा दिया था, याद है कि नहीं? याद नहीं है? नहीं, वेदांत ब्रह्म सूत्र का जो 4 सूत्र चतुर्सूत्र याद कराया था, और अपना हाँ शास्त्र नेतृत्व जन्माद्यश जाता है।

तत्व समझ नहीं आता। हाँ इतना भी याद नहीं है तो इतना याद किया पर सब याद करा करके दिया था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: Vinayagavratam 21 days and Sabarimala until the pilgrimage is completed. The vows mentioned so far are all taken privately by oneself, usually at a temple or in the home shrine room. Another type of vow is taken before family and community. This is for vows that are longer lasting or lasting for a lifetime, where community support is needed to help us live up to our commitments. Examples of a vow with community support is the Brahmacharya Vrata, pledging to maintain virginity until marriage. The Vivaha Vrata, marriage vows, are also taken before community. Taking a vow before family and community is a sacred trust between yourself, your outer self, your inner self, your loved ones, and closest friends. It would be difficult to look them straight in the eye if you yourself know that you have let yourself down, and this helps you hold to the vow during difficult times. Brihadeva describes this as vratas give the strength to withstand the temptations of the instinctive forces that naturally come up as one goes on through life. Not to suppress them, but to rechannel them into a lifestyle fully in accord with the yamas and niyamas. A vow that Gurudeva describes as the most obvious and important vow is the yama and niyama vow. It can be taken most readily and renewed once a year on a day which you consider your most sacred day, such as Maha Shivaratri, Ganesha Chaturthi, Skanda Shashti, or Deepavali. The idea is to vow to uphold the yamas and niyamas for the coming year to the best of your ability, at least 50%. Then each subsequent year you can increase the percentage until finally it is at 100%. It is important to mention that many people feel that if they don't fulfill their vrata, they have failed. Gurudeva comments on this by saying, the only failure is that experienced by the one who quits and gives up without trying again. The wiser response to failure is to immediately renew the vrata and try again. There are more advanced vows, such as those taken with a guru for a lifetime. Gurudeva established three such vows for his shishya to fulfill: the Shakahara or vegetarian vrata, which governs diet; the Parampara or lineage vrata, which governs spiritual studies; and the Dasamabhaga or tithing vrata, which governs finance. The vegetarian vow builds character through the control of appetite, which is control of the instinctive mind. In other words, as our control of appetite increases, the control over the other instinctive emotions, such as anger and jealousy, also improves. It all moves along together. Shakahara Vrata, of course, starts with avoiding the non-vegetarian foods. It also includes eating a healthy, balanced diet, thus avoiding chemically adulterated foods and minimizing junk foods and even frozen foods. The vow also includes the virtues of mittahara, moderate appetite, not eating too much, and it includes not eating between meals. The parampara, or lineage vow, builds character through control of mental and philosophical ramification, which is control of the intellect. Traditionally, giving all loyalties to a lineage precludes all extraneous training and requires closing off intellectual inroads to other lineages, not reading their books, not taking their courses. This vow harnesses the tendency to jump from teacher to teacher in search of new studies and techniques, rather than staying with one's current study and set of techniques and perfecting it. Gurudeva insightfully describes this vow when he says that it is a total focus demanded of the shishya by the shishya himself, so that learning of one unique path may mature past intellectual states into completely experiential knowing. The tithing vow builds character through control of money, which is the control of desire. Lots of desires are fulfilled by spending money to acquire possessions. As soon as we get our paycheck, we rush out to the store to buy something we just can't live without. After a few months, we stop using it altogether and find something else we just can't live without and buy that. In fulfilling the Dasamabhaga Vrata, whenever we receive money, the first thing to do is to give 10% of it to God. This practice spiritualizes the remaining 90% and helps us use it wisely. An additional step in fulfilling the Dasamabhaga Vrata is to develop a household budget and then spend the month's income according to the agreed upon plan. In conclusion, embrace religious vows, rules, and observances, and never waver in fulfilling them. Honor vows as spiritual contracts with your soul, your community, with God, gods, and guru. Take vows to harness the instinctive nature. Fast periodically, pilgrimage yearly, uphold your vows strictly, be they marriage, monasticism, non-addiction, tithing, loyalty to a lineage, vegetarianism, or non-smoking. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Manisha Panchakam, presented by Swami Sri Avadesh Chaitanyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Isili Bhagavad Bhaktajan, Jivan me Guru bahut avashyak hai. Evam Guru kyo aisa अध्यात्म विकास के लिए गुरु आवश्यक है। कई बार हम जो है भौतिक उन्नति, सुख सुविधा, समृद्धि के लिए गुरु निश्चय करते हैं, परंतु भगवत भक्तजन गुरु की आवश्यकता है अध्यात्म विकास के लिए। भौतिक विकास के लिए पुरुषार्थ की प्रयोजन है। प्रारब्ध से जो आपको मिला है, पुरुषार्थ के द्वारा जो आप कर सकते हैं वो आप प्राप्त करें, परंतु अध्यात्म विकास, अध्यात्मक अगर चेतना का विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। और वो गुरु कौन हो सकते हैं? गुरु कौन है? शास्त्र का निश्चय है, एको देवो नास्ति ततद् द्वितीयः योजत् हृदय सयाति। एको देव नास्ति ततद् द्वितीयः। जिनको आप गुरु रूप से वरण किए हैं उनके हृदय में वही सत्ता है जो आपके हृदय में है। विषयों के वासना से, कर्मों के संस्कार से आप उस हृदयेश्वर से बेखबर है। गुरु जो है उस हृदय के ईश्वर से आपको संबंध बना देता है, परिचय करा देते हैं। इसलिए जो उपदेशता है, जो मार्गदर्शन कराते हैं, वो गुरु है। गुकार अंधकार स्यात् रुकार तन निरोधक। इस अंधकार संसार में जो आपको मार्ग दिखलाते हैं वो है गुरु। पातंजलि ऋषि लिखते हैं सूत्र, स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वही एकमात्र गुरु है, और जिसको आप गुरु रूप में मान रहे हैं, ये सब सुनकर कैसा लगता है, वही जब गुरु है तो उन्हीं को क्यों ना पकड़ लिया जाए। नारायण, शास्त्र पढ़ करके, किसी मंत्र को आप चयन करके नित्य निरंतर श्रद्धा और विश्वास के साथ आप उसका जप कर सकते हैं, परंतु वही मंत्र जब किसी दैवी व्यक्तित्व के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो उस मंत्र में एक सौकर्ज सुकरता और एक उत्कर्षता आ जाती है। कल हम लोगों ने यही विचार कर रहा था कि मंत्र अनेक प्रकार का हो सकता है, चेतन, अर्धचेतन, मृत, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। जब आप किसी ग्रंथों के द्वारा ग्रंथ अध्ययन करते हुए किसी मंत्र को आपने उठा लिया और उस मंत्र को आप जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उस मंत्र में शक्ति नहीं है, परंतु उस मंत्र को चैतन्य, चेतना युक्त बनाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। शास्त्र कहते हैं विधि विधान से कोट्यातु मंत्र चैतन्यम। एक करोर अगर जप किया जाए विधि पूर्वक, जैसा शास्त्र में विधि है, तब जाकर के वो मंत्र चैतन्य विशिष्ट होते हैं और जब मंत्र चैतन्य विशिष्ट होता है तब जाकर के वो मंत्र हमारे जीवन को कुछ कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। और जब हम किसी दैवी व्यक्तित्व के पास वो मंत्र को लेते हैं तो उस मंत्र में वो चैतन्य को प्रकट करके वो देते हैं। और इसीलिए गुरु परंपरा में उस मंत्र की एक मौलिकता, एक महत्व है, क्योंकि गुरु जब उस मंत्र को हमें देते हैं तो उस मंत्र में एक चैतन्य, मंत्र को चैतन्यवान बना करके अर्पण करते हैं। और उस मंत्र के साथ जब अपना संबंध हम जोड़ते हैं तो उस मंत्र के द्वारा जीवन, अर्थात आप पढ़ करके ऐसे प्राप्त करने से आपकी साधना, आपकी चेष्टा, आपकी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और जब गुरु से वो मंत्र मिलते हैं तो उतना साधना तो है, साधना की जरूरत तो है, परंतु चूंकि मंत्र चैतन्य विशिष्ट है तो उस मंत्र में एक प्रकार की तृप्ति, शांति, प्रशांति वो आपको मिलती है। इसलिए भगवत भक्तजन, जीवन में गुरु की आवश्यकता है। ईश्वर के अस्तित्व को निर्णय देने वाला गुरु है और गुरु के अस्तित्व को निर्णय करने वाला वो हृदयेश्वर है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि देखो, इस जीवन के नाव को, जीवन नैया को अगर पार लगाना है तो एकमात्र गुरु चरणाश्रित होकर के ही जीवन को पार कर सकते हैं।

ఆచార్య శంకర్ గురు చరణాంబుజ, గురు చరణ కమల్ కు ఆశ్రయ కర్కే నిర్భర్ హో జాఓ. నిర్భర్ అగర్ ఆప్ గురు చరణ మే హోతే హై, గురుదేవ్ మే హోతే హై, తో ఆప్ నిర్భయ కు ప్రాప్త కర్ సక్తే హై. ऐसा तो कोई व्यक्ति हो जीवन में जिनके पास आप पूर्ण रूप से खुल सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, बता सकते हैं. हमारे जीवन में जो भी न्यूनता है उसको ऐसा कोई सत्ता हो, व्यक्ति हो जिनके पास हम रख सकते हैं. और जिस दिन हम उस प्रकार से व्यक्तित्व को अर्पण कर सकते हैं जीवन को, तो वो जो गुरु है जिसको हमने चयन किया बनाया, उनके द्वारा ही इस जीवन के परम रहस्य को प्राप्त कर सकते हैं. उस दिन शंकर जयंती के दिन वही विचार हम लोगों ने किया कि बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बहुत विद्या एजुकेशन की जरूरत नहीं है. अगर जीवन में बहुत आवश्यक और जरूरी है तो एक समर्पण. नारायण कई बार लगता है कि शायद पढ़ करके जीवन में जो सरलता वो हमने गवा दी है, अध्ययन करके और डिग्रियों के द्वारा जो सरलता, ऋजुता, जो समर्पण की एक संभावना वो शायद हमने गवा दी है. और जिनके जीवन में वो नहीं है, डिग्री नहीं है, अध्ययन नहीं है, परंतु उनके जीवन में एक समर्पण है, एक त्याग है, एक अर्पण है, वो जीवन बड़ा मधुमय हो जाता है. जितने भी आचार्य हुए हमारे, चाहे तुकाराम, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, आनंदमयी मां, वर्तमान में आनंदमयी मां, रामकृष्ण, विवेकानंद जी को तो फिर भी पाश्चात्य ज्ञान थे, रामकृष्ण कौन से ज्ञान में, वो सेगांव के महाराज जी कौन से विद्वान थे, कौन सी डिग्री थी उनके, परंतु उन्होंने जीवन में प्राप्त कर लिया. क्यों? क्योंकि किसी के पास वो खुद को अर्पण कर दिए. इसलिए भगवत भक्तजन, अध्ययन अध्यापन सब ठीक है, अगर जीवन में समर्पण हो तो. अगर समर्पण ही नहीं है तो जीवन, आप कितना भी डिग्री लेकर के चले, उस डिग्री के भार से आप बोझिल होते गए, परंतु जीवन में जो हल्का होना था, ताप रहित होना था, व्यथा रहित बनना था, वो नहीं बन पाए. इसलिए व्यक्ति जीवन में ऐसा कोई व्यक्तित्व के पास अर्पण करे कि सारा ईगो, सारा अहम जो है एक तरफ रख करके उस गुरु के चरणों में खुद को सौंप दे, अर्पण कर दे. और जिस दिन इस प्रकार से अर्पण कर सकते हैं, उनके पूरा दायित्व जो है गुरु ले लेते हैं. इसलिए आचार्य शंकर बारंबार कह रहे हैं कि बस चाहे वो चांडाल क्यों ना हो, अगर उनके प्रज्ञा उस चैतन्य में है, दृढ़ प्रज्ञा वाला है, तो वो चांडाल क्यों ना हो, मेरे गुरु है. इसलिए भगवत भक्तजन टीकाकार लिखते हैं, गुरु की महिमा आचार्य शंकर के जीवन में एक अमौलिक तत्व है. अध्यात्म जीवन में गुरु की आवश्यकता है. गुरुम तम ददर्श, आनंद गिरी जी इस श्लोक के व्याख्यान में टीका में लिखते हैं, गुरु ही वो तत्व को दिखला सकते हैं. इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता. ये जो उस दिन हमने बताया, मई एवं मना याधत्सो भगवान कृष्ण के वाणी को, तो ये हम भी चाहते कि हमारा मन और बुद्धि अर्पण हो, परंतु कैसे अर्पण हो ये कौन बतलाने वाला है? एकमात्र गुरु है जो अपने जीवन में जो भी त्रुटि है उसको दूर करते हुए उस परम तत्व को
अर्पण करने की विधि को सिखलाते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन अध्यात्म जीवन में गुरु की एक महिमा है। आचार्य शंकर के जीवन में भी जैसे वो गुरु के प्रति समर्पित थे, उसी प्रकार उनके जीवन में तोटक नाम के जो शिष्य हुए, तोटकाचार्य, उस दिन जो स्तुति हम लोगों ने सब मिलकर के पढ़ा, उनके जीवन में भी हमने वही देखा। कुछ भी नहीं है, परंतु गुरु कृपा के द्वारा वो शास्त्र के निर्यास को प्राप्त किया, और वो स्तुति के द्वारा, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो स्तुति के द्वारा उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन, जब हमने गुरु बनाया किसी को, उस अस्तित्व के प्रति किसी भी प्रकार के संशय न रखो। कई बार ऐसा लगता है कि उनके व्यवहार, उनके आचार देख करके लगता है कि कैसा लग रहा है, परंतु वो हम निर्णय नहीं कर सकते कि उनके आचार आचरण कैसा है। दुर्वासा मुनि को देखते हैं तो कितना क्रोधा आविष्ट है चित्त उनके, परंतु क्या वो सचमुच उस क्रोध से युक्त थे, अथवा किसी और के लिए क्रोध को एक अवलंबन बनाए रखे थे। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में कभी भी गुरु अगर किसी को अपने बनाया, तो उस गुरुदेव के प्रति मन में किसी भी प्रकार के संशय न रखे, गुरु के प्रदत्त मंत्र पर विश्वास करके नित्य निरंतर उस देव के आराधना करे। गुरु वो है जो आपके अतीन्द्रिय अस्तित्व से परिचय करा देते हैं, उस ईश्वर तत्व तक पहुंचने का मार्ग बतला देते हैं, चलना आपको है। इसलिए कई बार हम सोचते गुरु कर लिए और न तो मंत्र की चैंटिंग की जरूरत है, न साधना की जरूरत है, न संशोधन की जरूरत है। भगवत भक्तजन, गुरु की आवश्यकता केवल मात्र उस तत्व से, उस चैतन्य से, उस भगवान से परिचय कराना, परंतु परिचय कराने के बाद उस भगवान तक पहुंचना तो आपको है। इसीलिए पथ प्रदर्शक के रूप में गुरु को निर्णय देते हैं, निश्चय करते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन जीवन में ऐसा एक गुरु आवश्यक है, जो हमारे प्रत्येक जीवन में आध्यात्मिक विकास करना जो चाहते उनके लिए जरूरी है। और जिस दिन हम गुरु को ग्रहण करते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को अनुसरण करते हैं साधना के लिए, उस दिन से हमारा आध्यात्म जीवन का शुरुआत होता है। इसलिए जीवन में गुरु तत्व की आवश्यकता है। भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी उसी को कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी जोनी में क्यों ना हो, अगर चैतन्य प्रज्ञा ज्ञान वो है उनमें, तो वो हमारे गुरु है। अब गुरु कौन ज्ञान से युक्त है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणिम, ये जो शास्त्र वचन है, इस पर आनंद गिरि जी कुछ प्रकाश देते हैं, कल उस पर विचार करेंगे।